सुप्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप एफएम केंद्र शिमला का प्रसारण सुन रहे हैं। आज रविवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 7वीं तिथि, तदनुसार 28 जून 2026। समय मिलाइए, इस समय प्रातः के 5:58 और 28 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभी श्रोताओं का स्वागत।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे समाचार जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, एआईआर न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी ये कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हमानी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर

0: राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर टेकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे, जिससे कल्याणकारी योजनाओं की ट्रैकिंग और स्वास्थ्य सेवा पहुंचाने के कार्य को बेहतर बनाया जा सके। इस कार्यक्रम से पहले गृहमंत्री अहमदाबाद के चांदलोडिया में साबरमती विधानसभा क्षेत्र के बूथ अध्यक्षों और शक्ति केंद्र प्रभारियों के साथ विचार विमर्श करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वह सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर था उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। मंत्रालय ने यह भी बताया कि 12,000 से ज्यादा शटल उड़ानों के जरिए 67,000 से ज्यादा तीर्थयात्रियों ने यात्रा की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली के कोचिंग सेंटरों को चेतावनी दी है कि अनिवार्य सुरक्षा मानकों का पालन न करने पर उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जल्द ही एक मजबूत नियामक कानून लाएगी, जिससे कड़ी निगरानी, अधिक जवाबदेही और छात्रों की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि छात्रों को अपने कोचिंग सेंटर में किसी भी प्रकार की लापरवाही या सुरक्षा उपायों की कमी की रिपोर्ट ईमेल, संदेश या फोन से करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। गोवा में 14 वर्षीय एथन वॉज ने बोस्निया और हर्जिगोविना में आयोजित सराजेवो जीएम मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नाम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इस उपलब्धि के साथ ही एथन अनुराग महामल और लियोन मेंडोगा के बाद गोवा से तीसरे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। एथन ने 10 ग्रैंड मास्टरों को पीछे छोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने आज सुबह पनामा को 2-0 से हरा दिया। अमेरिका के न्यू जर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगम में और हैरी केन ने एक एक गोल किया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से हराया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे जबकि घाना तीसरे स्थान पर रहा। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। देश में 68,000 से अधिक लोगों के लापता होने की भी खबर है। लागुएरा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने कहा है कि शुक्रवार को एक तेलवाहक जहाज कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Shagun Chopra. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today. Both leaders will review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. We have a report.
2: Today, Prime Minister Modi is scheduled to address the National Assembly of Seychelles and interact with members of Indian diaspora. Later, Prime Minister Modi will participate in the National Day celebration at Roche Kemen. The ministry said that a contingent of the Indian Defence Forces, along with two Indian Navy ships, will also take part in the celebrations. Prime Minister Narendra Modi is on a three-day visit to Seychelles to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honor. This visit reaffirms the

देव जिनकी जटाओं में पावन गंगा विराजमान है, जिनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित है, जिनके कंठ में नील का वैराग्य और हृदय में समस्त सृष्टि के प्रति असीम करुणा समाई है। भोलेनाथ का स्मरण ही मन को शांति, साहस और नई ऊर्जा से भर देता है। आइए इस पावन सुबह अपने तन मन को शिवमय बनाते हैं और भोले शंकर की महिमा का गुणगान करते हैं।

श्रोता साथियों, जीवन में सच्चा सुख केवल धन या वैभव से नहीं बल्कि संतोष, श्रद्धा और विश्वास से मिलता है। मां संतोषी का संदेश भी यही है कि जो मन संतुष्ट है वही वास्तव में सबसे समृद्ध है। उनकी कृपा से जीवन में शांति, परिवार में सुख और हर कदम पर नई आशा का संचार होता है। तो आइए इस पावन बेला में अपने मन की सभी चिंताओं को मां के चरणों में अर्पित करें और श्रद्धा के साथ उनका स्मरण करें।

भक्ति रस से सराबोर कार्यक्रम हिमांजलि अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए एक और भक्तिमय प्रस्तुति मानस गान, आइए सुने।

ने योगाग्नि में अपने को भस्म कर डाला था। आत्मदाह के समय उन्होंने भगवान से ये वर भी मांगा था कि जन्म जन्मांतर शिव के चरणों में उनका अनुराग बना रहे तथा अगले जन्म में पति रूप में उन्हें शिव की ही प्राप्ति हो। इसी इच्छा के फलवती होने के लिए उन्होंने हिमाचल के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। माता मैना के संशय के बावजूद पार्वती ने हजारों वर्ष तक कठोर तपस्या की। स्वामी के चरणों में नित्य नया अनुराग उत्पन्न होने लगा। तपस्या में ऐसा मन लगा कि शरीर की सुधि बिसर गई। 1000 वर्ष तक उन्होंने कंदमूल खाए, फिर 100 वर्ष साग खाकर बिता दिए। कुछ दिन मात्र जल और वायु का भोजन किया, फिर कुछ दिन कठोर उपवास किया।

मानस का अन्न भी आप सुन रहे थे। गायक कलाकार थे लता मंगेशकर, सुधा मल्होत्रा और राम कृष्ण चंदेश्री। संगीत सतीश भाटिया का था। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। लीजिए अब पेश है देशगान।

0: 103.7 MHz पर लीजिए पेश है एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हेमंत शर्मा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान किया है। उन्होंने कल बड़ा बंगाल में लोगों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याएं सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा बंगाल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाए जाएंगे और बच्चों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 135वीं कड़ी होगी। आज पोलियो रविवार है। प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान उपप्रधान चुनाव जीते हैं। शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकायों में भी भाजपा का दबदबा है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर जिला परिषद, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव टाल रही है। प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं व संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। हमीरपुर में कल एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों को उनके अधिकारों से वंचित रखना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने हमीरपुर के बहुतकनीकी महाविद्यालय बड़ू में रोजगार मेले के उद्घाटन अवसर पर बताया कि शिक्षण संस्थाओं में रोजगार परक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। न्यूज हेडलाइंस में अभी इतना ही। नमस्कार।
2: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 7 बजने को हैं, समाचार अब आप सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे हैं। प्रतीक्षा करें।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हेलमाइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग के व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम

प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम में 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने अपने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है। उन्होंने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को विश्व के सबसे बड़े स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमों में से एक बताया, जिसमें लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा है कि वैध दस्तावेज के बगैर या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद में यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। रक्षा मंत्रालय ने मीडिया और सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिनमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा है कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए, जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के 2 शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। भारत के किदाम्बी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमेरिका में कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान की योदायु कीमोतो को पराजित किया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ले युंग के होगा। फीवा फुटबॉल विश्व कप में इंग्लैंड ने पैनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक गरीब ब्राह्मण था। उसको अपनी कन्या का विवाह करना था। उसने विचार किया कि कथा करने से कुछ पैसा आ जाएगा तो काम चल जाएगा। ऐसा विचार करके उसने भगवान राम के एक मंदिर में बैठकर कथा आरंभ कर दी। उसका भाव यह था कि कोई श्रोता आए चाहे ना आए, पर भगवान तो मेरी कथा सुनेंगे ही। पंडित जी की कथा में थोड़े से श्रोता आने लगे। एक बहुत कंजूस सेठ था। एक दिन वो मंदिर में आया। जब वो मंदिर की परिक्रमा कर रहा था तब उसको मंदिर के भीतर से कुछ आवाज आई। ऐसा लगा कि कोई दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं। सेठ ने कान लगाकर सुना। भगवान राम हनुमान जी से कह रहे थे कि इस गरीब ब्राह्मण के लिए 100 रुपयों का प्रबंध कर देना, जिससे कन्यादान ठीक हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है महाराज, इसके 100 रुपए पैदा हो जाएंगे। सेठ ने

सुना तो वो कथा समाप्ति के बाद पंडित जी से मिले। उनसे कहा, महाराज कथा में रुपए पैदा हो रहे हैं कि नहीं? पंडित जी बोले, श्रोता लोग बहुत कम आते हैं, रुपए कैसे पैदा हो? सेठ ने कहा, मेरी एक शर्त है, कथा में जितना रुपया आए वो मेरे को दे देना, मैं आपको 50 रुपए दे दूंगा। पंडित जी ने शर्त स्वीकार कर ली। उसने सोचा कि कथा में इतने रुपए तो आएंगे नहीं, पर सेठ जी से 50 रुपए तो मिल ही जाएंगे। पुराने जमाने में 50 रुपए भी बहुत ज्यादा होते थे। इधर सेठ की नियत ये थी कि हनुमान जी भगवान की आज्ञा का पालन करके इसको 100 रुपए जरूर दिलाएंगे, वो 100 रुपए मुझे मिल जाएंगे और 50 रुपए मैं इसे दे दूंगा, तो बाकी 50 रुपए मेरे हो जाएंगे। जो लोभी आदमी होते हैं वे सदा रुपयों की ही बात सोचते हैं, इसीलिए भगवान और हनुमान जी की बातें सुनकर भी सेठ में भगवान के प्रति भक्ति उत्पन्न नहीं हुई, उल्टे उसने लोभ को ही पकड़ा। कथा की पूर्णाहुति होने पर सेठ पंडित जी के पास आया। उसको आशा थी कि आज 100 रुपए भेंट में आए होंगे। पंडित जी ने कहा, भाई आज तो भेंट बहुत थोड़ी ही आई, बस 5-7 रुपए आए हैं। अब सेठ बेचारा क्या करे? उसने अपने वायदे के अनुसार पंडित जी को 50 रुपए दे दिए, लेने के बदले देने पड़ गए। सेठ को हनुमान जी पर बहुत गुस्सा आया कि उन्होंने पंडित जी को 100 रुपए नहीं दिए और भगवान के सामने झूठ बोला। वो मंदिर में गया और हनुमान जी की मूर्ति पर घूंसा मारा। घूंसा मारते ही सेठ का हाथ मूर्ति से चिपक गया। अब सेठ ने बहुत जोर लगाया पर हाथ छूटा नहीं। जिसको हनुमान जी पकड़ ले वो भला छूट कैसे सकता है? सेठ को फिर आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान से सुना, भगवान हनुमान जी से पूछ रहे थे, तुमने ब्राह्मण को 100 रुपए दिलाए कि नहीं? हनुमान जी ने कहा, महाराज 50 रुपए तो दिला दिए हैं, बाकी 50 रुपयों के लिए सेठ को पकड़ रखा है, वो 50 रुपए देगा तो छोड़ देंगे। सेठ ने सुना तो विचार किया कि मंदिर में लोग आकर मुझे देखेंगे तो बड़ी बेइज्जती होगी। चिल्लाकर बोला, हनुमान जी महाराज मुझे छोड़ दो, मैं 50 रुपए दूंगा। हनुमान जी ने सेठ का हाथ छोड़ दिया। सेठ ने जाकर पंडित जी को 50 रुपए दे दिए।

0: चिंतन आप सुन रहे थे, प्रस्तुति डॉक्टर हुकुम शर्मा की थी। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण 103.7 MHz पर।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 MHz FM शिमला सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। 103.7 MHz FM शिमला।
0: आकाशवाणी FM शिमला पर अब जानते हैं आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम रूपरेखा के अंतर्गत सबसे पहले आपको बताएं, आज प्रातः 11 बजे आज आप सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम। जी हां, 11 बजे सुनना ना भूलें माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात। अब से कुछ ही देर बाद 7:15 पर सुनिएगा हमारा दैनिक कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। 8 बजे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली आपको लेकर चलेंगे समाचार प्रभात, और उसके बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज के लिए। प्रातः 8:32 पर सुनिएगा लोक संगीत।

प्रातः 9:30 पर सुनिएगा कुदरत के रंग कार्यक्रम। पुरानी और नई फिल्मों पर केंद्रित कार्यक्रम झंकार सुनिएगा 10:00। फिर से याद दिलाना चाहेंगे, आज प्रातः 10:55 पर सुनिएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात। 12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम पेश होगा। म्यूजिक मस्ती का समय रहेगा 1:10। 2:00 सुनिएगा सबरंग कार्यक्रम। लोक संगीत पर केंद्रित कार्यक्रम शिखरों के स्वर का समय रहेगा 2:30। युवा दोस्तों के लिए युवाणी कार्यक्रम 3:30 पर लेकर आएंगे। फिल्म संगीत सुनिएगा 4:00।

0: 4:20 से हिमाचल प्रदेश की विभिन्न बोलियों के कार्यक्रमों के तहत सबसे पहले सिरमौरी कार्यक्रम पेश होगा। मासवी कार्यक्रम का समय रहेगा 4:50। 5:20 पर किन्नौरी कार्यक्रम पेश किया जाएगा। 6:05 पर सुनिएगा बिलासपुरी कार्यक्रम और लाहौली कार्यक्रम का समय रहेगा 6:35। किसानों और बागवानों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम लेकर आएंगे 7:10 पर। रात्रि 8:00 सुनिएगा भूले बिसरे गीत। फिल्म संगीत का लुत्फ उठाइएगा रात्रि 8:30 पर। रात्रि 9:15 पर एक फिल्म से कार्यक्रम पेश होगा। ईमेल पर केंद्रित फिल्मी गीतों का फरमाइशी कार्यक्रम दिल की आवाज भी सुनना ना भूलें रात्रि 9:30 से। गजलें सुनिएगा रात्रि 10:00 से। और 10:30 से 11:00 के मध्य सुनिएगा सदाबहार नगमे। ये रहेंगे वो मुख्य आकर्षण कार्यक्रमों के जिन्हें आज आप सुन पाएंगे आज दिन भर आकाशवाणी FM शिमला 103.7 MHz पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। अगले कार्यक्रम के लिए कीजिए कुछ पलों का इंतजार।
1: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, FM

कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला सुनने वाले सभी श्रोता मित्रों का स्वागत। 28 जून रविवार है आज। जी हां श्रोता साथियों, सुनहरी सुबह अपने साथ एक अलहदा एहसास लेकर आई है। न किसी मंजिल तक जल्दी पहुंचने की हड़बड़ी, न समय से आगे निकल जाने की चिंता, बस ताजी हवाओं की ठंडक, पक्षियों का सुमधुर कलरव, चाय की मीठी

अच्छी सी खुशबू और मन को सुकून देने वाला संगीत। श्रोता मित्रों, जिंदगी की भागदौड़ के बीच ऐसे पल बहुत अनमोल होते हैं जब हम कुछ देर ठहर कर अपने मन की आवाज सुन सकें, अपनों के साथ मुस्कुरा सकें। यही तो है रविवार की अलहदी पहचान। सुकून, अपनापन और नई ऊर्जा। तो आइए इस सुहानी सुबह को खास बनाते हैं मधुर गीतों, प्रेरक बातों और ढेर सारी सकारात्मक ऊर्जा के साथ। कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग शिमला, मैं हूं वीरेंद्र शर्मा आज आपके साथ।

कहते हैं समय दिखाई नहीं देता, लेकिन यही समय हमारी पूरी जिंदगी की तस्वीर दिखा देता है। हर रोज हमारे हाथों में 24 घंटों की एक नई सौगात होती है। हम इन घंटों का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यही तय करता है कि हमारा कल कैसे होने वाला है। जो लोग समय को योजनाबद्ध ढंग से जीते हैं, वे छोटी छोटी कोशिशों से बड़े सपनों को सच कर देते हैं। वहीं समय की अनदेखी अक्सर अच्छे अवसरों को भी हाथ से निकल जाने देती है। तो आइए आज से हर पल को एक नई शुरुआत माने, सीखने के लिए समय निकालें, अपनों के लिए समय निकालें, अपने सपनों के लिए समय निकालें और खुद के लिए भी इन्हीं में से कुछ पल जरूर चुराएं, क्योंकि समय का सदुपयोग ही जीवन को उद्देश्य, दिशा और पहचान प्रदान करता है। वक्त, यही वो अनमोल दौलत है जो हर किसी को बराबर मिलती है, लेकिन उसकी कीमत हर कोई बराबर समझ कहाँ पाता है। जो हर पल को मुस्कुराकर जीना सीख लेता है, वही जिंदगी की असली धुन सुन पाता है। हम अक्सर बीते हुए पलों में अफसोस में या आने वाले कल की चिंता में इतना उलझ जाते हैं कि आज की खूबसूरती को जीना ही भूल जाते हैं। सच तो यही है कि समय का सबसे सही इस्तेमाल वर्तमान में जीने और हर पल को सार्थक बनाने में है, क्योंकि आज का किया गया छोटा सा प्रयास ही आने वाले कल को सुनहरा बना सकता है।

0: गुड मॉर्निंग शिमला कार्यक्रम चल रहा है, एक अंतराल के बाद जारी रहेगा।
1: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है? भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
2: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में छठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल तीसरे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
3: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: एक बार पुनः स्वागत। आकाशवाणी FM शिमला से चल रहा है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला। 28 जून है आज और आज के इतिहास का जिक्र कार्यक्रम में कर लेते हैं। 1712 में आज के दिन फ्रांसीसी दार्शनिक ज्यां जाक रूसो का जन्म हुआ था। 1838 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का राज्याभिषेक हुआ था। 1914 में आज के दिन ऑस्ट्रिया के आर्क ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड और उनकी पत्नी सोफी की वोस्निया के सायायेवो में हत्या हुई थी और आखिरकार इसी घटना ने प्रथम विश्व युद्ध की भूमिका तैयार की थी, उसकी शुरुआत की। 1919 में आज के दिन वर्साय की संधि पर हस्ताक्षर हुए थे जिसने औपचारिक रूप से प्रथम विश्व युद्ध का अंत किया था। 1921 में आज के दिन भारत के पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्ह राव का जन्म हुआ था और 2004 में इराक में सत्ता का हस्तांतरण अंतरिम सरकार को किया गया।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सबर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: श्रोता साथियों, स्वस्थ बचपन ही सशक्त भविष्य की पहचान है और इसी संकल्प को मजबूत करने के लिए आज यानी 28 जून को पल्स पोलियो अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को पोलियो की 2 बूंदें पिलाई जा रही है। राज्य भर में हजारों पोलियो बूथ

स्थापित किए गए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने सभी पात्र बच्चों तक पहुंच सुनिश्चित करने की तैयारी भी पुख्ता की हुई है। याद रखिए, दो बूंद जिंदगी की केवल एक नारा नहीं बल्कि हर बच्चे के स्वस्थ, सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का वादा है। यदि आपके परिवार या आसपास में 5 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा है तो उसे आज निकटतम पोलियो बूथ पर अवश्य ले जाएं, क्योंकि एक छोटी सी सावधानी जीवन भर की सुरक्षा बन सकती है। इसी जन जागरूकता के संदेश के साथ अब बढ़ते हैं गीत संगीत की ओर। स्वस्थ बचपन के इस सुंदर कामना के साथ पेश है कार्यक्रम का अगला गाना।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
2: हमारी जनगणना, हमारा विकास।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण और कार्यक्रम चल रहा है गुड मॉर्निंग शिमला। खेल जगत की ओर रुख करते हैं दोस्तों। आप जानते हैं फीफा विश्व कप 2026 इन दिनों चल रहा है। फुटबॉल के मैदान पर चमत्कार तो अक्सर होते हैं, लेकिन फीफा विश्व कप 2026 में जो कैप वर्डे ने कर दिखाया है वो किसी भी खेल प्रेमी के लिए एक जादुई कहानी से कम नहीं है। अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बसा मात्र 5,25,000 की आबादी वाला ये छोटा सा द्वीपीय देश वर्ल्ड कप के नॉकआउट चरण में पहुंचने वाला दुनिया का सबसे छोटा देश बन गया है। सऊदी अरब के खिलाफ खेले गए मुकाबले में कैप वर्डे ने 0-0 से ऐतिहासिक ड्रॉ खेला। ये इस टूर्नामेंट में उनका लगातार तीसरा ड्रॉ था। इससे पहले इस टीम ने 2010 की चैंपियन स्पेन को 0-0 पर रोका था और फिर दो बार की चैंपियन उरुग्वे के खिलाफ 2-2 से ड्रॉ खेला था। आज प्रातः खेले गए मुकाबले में इंग्लैंड ने पनामा को 2-0 से हराया, जबकि क्रोएशिया ने घाना को फीफा विश्व कप 2026 के लीग मुकाबले में 2-1 के अंतर से हरा दिया है। महिला 2020 वर्ल्ड कप भी इन दिनों खेला जा रहा है। भारतीय टीम महिला 2020 वर्ल्ड कप 2026 में आज 6 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया से भिड़ने वाली है। मुकाबला शाम 7 बजे से लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर खेला जाएगा। ग्रुप एक के इस मुकाबले में सेमीफाइनल का टिकट दांव पर लगा रहेगा। दोनों टीमों को नॉकआउट में जाने के लिए जीत जरूरी है। हालांकि भारतीय टीम के लिए जीत ज्यादा अहम है, क्योंकि हार उसे टूर्नामेंट से बाहर होने के कगार पर पहुंचा सकती है। दूसरी ओर लगातार 4 मैच जीत चुकी ऑस्ट्रेलियाई टीम अजेय रहते हुए सेमीफाइनल का टिकट पक्का करना चाहेगी। उधर आयरलैंड और भारत के बीच भी जो दो 2020 सीरीज के मुकाबले खेले जा रहे हैं, उसका दूसरा मुकाबला आज शाम 6 बजे से बेलफास्ट के मैदान पर शुरू होगा। भारतीय टीम पहला मुकाबला हारकर सीरीज में 0-1 से पिछड़ रही है, इसलिए वर्ल्ड चैंपियन टीम इंडिया के सामने सीरीज बचाने की चुनौती रहेगी।

0: चलते चलते मौसम का जिक्र भी कर लेते हैं। आज दिन की जो मौसम की शुरुआत है शिमला शहर में तो खिली खिली हल्की पीली चटकीली धूप के साथ हुई है। खुशगवार है मौसम, थोड़ी गर्मी ज़्यादा रहने वाली है दिन में, तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए और लुत्फ उठाते रहिए आकाशवाणी FM शिमला से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का, गीत संगीत की सुरमई तरंगों के साथ। कार्यक्रम गुड मॉर्निंग शिमला में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहें आकाशवाणी FM शिमला के साथ। आकाशवाणी FM शिमला पर अब वक्त हो चला है FM न्यूज हेडलाइंस का, आइए सुने।
1: नमस्कार, FM न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हेमंत शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम

0: की ये 135वीं कड़ी होगी। आज पोलियो रविवार है। प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने चंडीगढ़ से ओमान के लिए चेरी व पल्म की निर्यात खेप को हरी झंडी दिखाकर हवाई मार्ग से रवाना किया। इनमें शिमला जिले के जड़ोल टिक्कर व बागी क्षेत्र के 6 प्रगतिशील किसानों द्वारा उगाई गई 400 किलो चेरी व 400 किलो पल्म शामिल हैं। सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चंबा में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। राजीव भारद्वाज ने लोक निर्माण विभाग को 56 सड़क परियोजनाओं की DPR जल्द तैयार करने को कहा। लारजी जल विद्युत परियोजना के जलाशय में जलस्तर व गाद की मात्रा बढ़ गई है। राज्य बिजली बोर्ड ने बताया कि लारजी पावर स्टेशन के लारजी स्थित बांध से आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक गाद की निकासी की जा रही है। बोर्ड ने क्षेत्र के लोगों से एहतियात बरतने और ब्यास नदी के समीप न जाने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे कई भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। मंत्रालय ने कहा कि वैध दस्तावेज के बिना या आवश्यक दस्तावेज प्राप्त होने की उम्मीद से यात्रा शुरू करने से परेशान होने की संभावना बढ़ जाती है। ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम ने ग्रुप ए में 4 मैच खेले हैं और 3 में जीत के साथ वह ग्रुप में दूसरे स्थान पर है। न्यूज़ हेडलाइंस में अभी इतना ही। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 8 बजने वाले हैं। अब हम आपको लेकर चलेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र, जहां से आप सुनेंगे 8 बजे समाचार प्रभात और उसके बाद 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज। प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी है। अमेरिकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 1430 हो गई है और किदांबी श्रीकांत अमेरिकी ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्माइनी के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को संबोधित करेंगे और वहां रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकेमन में आयोजित राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार समारोह में भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस और स्वतंत्रता के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो रहे हैं। यह यात्रा भारत और सेशल्स के बीच मजबूत और लंबे समय से चले आ रहे मित्रतापूर्ण संबंधों को और मजबूत करने का प्रतीक है। साथ ही यह दोनों देशों की हर क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग और संबंधों को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करें।

0: ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा है कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति की है और वो सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज के व्यापक लक्ष्य की ओर अग्रसर है। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए सुलभ, किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है। एक निजी मीडिया चैनल के कार्यक्रम के 9वें डॉक्टर्स डे कॉन्क्लेव में सुश्री पटेल ने कहा कि सरकार ने स्वास्थ्य दृष्टिकोण को बीमारों की देखभाल से उनके बेहतर स्वास्थ्य की ओर तथा उपचारात्मक देखभाल से मरीजों के व्यापक कल्याण की ओर मोड़ दिया है।
1: Today we have a new national health policy.
2: आज हमारे पास एक नई राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति है। यह रोग के उपचार से स्वास्थ्य सुरक्षा की ओर एक परिवर्तनकारी कदम है, जिसमें बीमारी की रोकथाम को केंद्र में रखा गया है। भारत सरकार ने इन 12 वर्षों में कई योजनाएं शुरू की हैं। इनमें सबसे परिवर्तनकारी योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इसे दुनिया का सबसे बड़ा स्वास्थ्य कार्यक्रम माना जाता है, जिसके दायरे में लगभग 62 करोड़ लोग शामिल हैं।
1: 62 करोड़ इंडिविजुअल्स।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा TET पेपर लीक मामले की जांच के लिए विशेष जांच दल बनाने का आदेश दिया है। इस टीम की अगुवाई ठाणे के संयुक्त पुलिस आयुक्त पंजाब राव उगले करेंगे। मुख्यमंत्री ने स्कूल शिक्षा मंत्री दादा भूसे और पुलिस महानिदेशक सदानंद दाते से भी बातचीत की और गिरोह में शामिल सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मुंबई अपर आयुक्त अशोक दुबे ने बताया कि पेपर लीक मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।
3: महाराष्ट्र में जो TET की एग्जाम होने वाली है, उस एग्जाम में जो पेपर आने वाले थे वो पेपर भिवंडी में बेचने के लिए कुछ लोग आने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन यहाँ के DCP जोन 2 पवन बंसोड़ इनको मिले थे। वहाँ पे 3 लोगों को टीम ने हिरासत में लिया। उनके पास से कुछ मोबाइल, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कुछ पैसे बरामद किए। कल इस्तेमाल होने वाले TET के 4 पेपर जब्त किए हैं। आगे की जाँच हमारी चल रही है।
0: इस घटना के बाद आज होने वाली TET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। परीक्षा की नई तारीख की घोषणा बाद में की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करें। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रालय ने ये परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है। मंत्रालय का कहना है कि इस सलाह का उद्देश्य श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित, सुगम और परेशानी से मुक्त बनाना है। रोहन के साथ अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: चार धाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का पहला चरण पूरा हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बताया कि इस दौरान हर दिन लगभग 400 हेलीकॉप्टर उड़ानें भरी गईं। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली 57 दिन की वार्षिक अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू के पुरानी मंडी स्थित श्रीराम मंदिर अमरनाथ यात्री आधार शिविर से में साधुओं का आगमन शुरू हो गया है। इससे पहले सुरक्षा एजेंसियों ने बहुस्तरीय व्यापक सुरक्षा व्यवस्था का अभ्यास किया। हमारी विशेष श्रृंखला प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ के अंतर्गत आज हम छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी के साथ परिचर्चा प्रसारित कर रहे हैं। अंबिकापुर नगर निगम द्वारा संचालित इस कैफे में प्लास्टिक कचरे के बदले में भोजन उपलब्ध कराया जाता है।
5: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा? उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो

0: गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए। हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया है। सबसे महत्वपूर्ण पहलू होता है प्लास्टिक रिसाइकलिंग का, कि प्लास्टिक की गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। प्लास्टिक यदि नालियों में चला गया, मिट्टी में चला गया या वो खाद्य पदार्थ से मिक्स हो गया, तो उसकी रिसाइकलिंग करना कठिन हो जाती है।
1: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
2: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड 100.1 MHz पर प्रसारित किया जाएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापना के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। सेना ने कहा कि उसने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमरीका की सेंट्रल कमान ने कहा है कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत कीकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने के क्षमताओं को निशाना बनाया। वेनेजुएला में भूकंप में से मरने वालों की संख्या 1,430 हो गई है। वेनेजुएला में बुधवार को 7.2 और 7.5 तीव्रता के दो शक्तिशाली भूकंप आए थे, जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। देश में करीब 68,900 से अधिक लोगों के लापता होने की खबर है। लागवेरा क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज सुबह कांगो ने उज़्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इसके साथ ही कांगो की टीम इतिहास रचते हुए पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट चरण में पहुंच गई है। एक अन्य मुकाबले में आज पुर्तगाल और कोलंबिया के बीच मैच बिना कोई गोल के ड्रॉ पर समाप्त हुआ। अब राउंड ऑफ 32 में शुक्रवार को पुर्तगाल का सामना क्रोएशिया से होगा, जबकि शनिवार को कोलंबिया और घाना आमने सामने होंगे। इससे पहले अमेरिका के न्यूजर्सी में खेले गए ग्रुप एल के मैच में इंग्लैंड के जूड बेलिंगहम और हैरी केन के एक एक गोल की बदौलत आज इंग्लैंड ने भी पनामा को 2-0 से हराया। इसके साथ ही इंग्लैंड ग्रुप एल में शीर्ष पर पहुंच गया है। इसी ग्रुप के एक अन्य मैच में क्रोएशिया ने घाना को 2-1 से पराजित किया। क्रोएशिया ग्रुप में दूसरे, जबकि घाना तीसरे स्थान पर है। और अब खेल की अन्य खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: जी लवली, इन खेल खबरों में शुरुआत करते हैं बैडमिंटन से। भारत के किदांबी श्रीकांत अमरीकी ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। अमरीका के कैलिफोर्निया के टाइटन जिम में श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकोमोतो को 22-20, 15-21 और 21-19 से हराया। इस बीच पुरुष सिंगल्स के एक अन्य सेमीफाइनल में आज भारत के रौनक चौहान का मुकाबला चीनी ताइपे के सू ली यांग के साथ होगा। महिला सिंगल्स में भारत की देविका सिहाग सेमीफाइनल मुकाबले में डेनमार्क की लाइने क्रिस्टोफर सेन से हार गईं। उधर क्रिकेट का मक्का कहे जाने वाले लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में आज ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए के अपने अंतिम मैच में भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। और अगर बात करें शतरंज की बाजी की, तो गोवा के 14 वर्षीय एथन वाज ने बोस्निया और हर्जेगोविना में आयोजित साराजेवो GM मिक्स शतरंज टूर्नामेंट में तीसरा और अंतिम ग्रैंड मास्टर नॉम हासिल कर लिया है और वे भारत के 96वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
2: मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज तेज वर्षा तथा कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया गया है। दक्षिण पश्चिम मानसून गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 दिन में आगे बढ़ सकता है। आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में कल तक बिजली कड़कने और तेज़ हवा का अनुमान व्यक्त किया गया है। इस बीच दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, बिहार में आज लू चलने के आसार हैं। अमेरिका के वाशिंगटन में भारतीय दूतावास ने कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपिडार, वाणिज्य विभाग तथा जुपोन सर्कल बिजनेस इंप्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट के सहयोग से वार्षिक आम महोत्सव का आयोजन किया। इसमें अल्फांसो, केसर, दशहरी, लंगड़ा और बैंगनपल्ली जैसी लोकप्रिय भारतीय आम की किस्मों का प्रदर्शन किया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप

0: पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सेशल्स यात्रा को अमर उजाला ने मैत्री संबंध बताते हुए लिखा है, हिंद महासागर पर बढ़ेगा सहयोग। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सेशल्स में प्रधानमंत्री ने मेड इन इंडिया गश्ती पोत सौंपा। पत्र आगे लिखता है, श्री मोदी 194 साल के कछुए जोनाथन से मिले। अयोध्या में श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में कुछ और लोगों के इस्तीफे की खबर हिंदुस्तान सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने ट्रस्ट की तरफ से इस आश्वासन को दिया है कि श्रद्धालुओं के मूल्यवान समर्पण सुरक्षित हैं। अमेरिका और ईरान के बीच भिड़ंत शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है कि दोनों देशों के बीच शांति समझौता होने के 10 दिन के भीतर ही फिर से सैन्य झड़पें शुरू हो जाना पश्चिम एशिया और साथ ही विश्व के लिए बुरी खबर है। अफगानिस्तान में कल आए भूकंप की खबरें सभी अखबारों में हैं। देशबंधु कहता है, दिल्ली एनसीआर तक डोली धरती। उधर राजस्थान पत्रिका ने वेनेजुएला में भूकंप के बाद तबाही से जीवन की किरण शीर्षक से लिखा है, मलबे से 18 दिन के नवजात को निकाला, राहत और बचाव कार्य तेज। इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया, देशबंधु की खबर है। पत्र ने इसे भारत की अगली पीढ़ी के प्रक्षेपण यान के विकास में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए लिखा है, अब गगनयान मिशन की तैयारियां तेज। अमर उजाला की खास खबर है, सितंबर में रोशन हो जाएगा लद्दाख, सियाचिन तक पहुंची बिजली। पत्र ने इसे बुनियादी ढांचे और स्थानीय विकास के मोर्चे पर मील का पत्थर बताते हुए लिखा है कि इससे सेना और सुरक्षा बलों को मिलेगी बड़ी ताकत। राजधानी दिल्ली में शनिवार को भीषण गर्मी और उमस पर हिंदुस्तान कहता है, 51 डिग्री सेल्सियस तापमान जैसी तपिश महसूस हुई। दैनिक भास्कर की खास खबर है, इस साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बीच बाजारों में छाछ लस्सी अपना बाजार मजबूती से बना रहे हैं। पत्र कहता है, अब कोल्ड ड्रिंक्स पीछे छाछ और लस्सी की बिक्री में चौगुनी वृद्धि।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ वार्ता करेंगे। वे सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ ही कैलाश मानसरोवर की यात्रा करने की सलाह दी। अमरीकी सेना ने लगातार दूसरे दिन ईरान के कई ठिकानों पर हमले किए और किदाम्बी श्रीकांत अमरीकी बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: Papers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Naresh. News about Prime Minister Narendra Modi's Seychelles visit figure prominently on the front pages of newspapers this morning. The Times of India carries a picture of PM Modi feeding a 194-year-old giant tortoise, Jonathan, considered the world's oldest living land animal, during his visit to the National Botanical Garden there. The Ram Temple Trust has confirmed that its General Secretary Champat Rai and member Anil Mishra have tendered their resignations amid allegations of irregularities in donations, reports Hindustan Times. Iran-US trade, fresh attacks in worst escalation post-deal, writes the Financial Express, adding that each side says the other is violating the interim ceasefire. Under the headline, How Schools Breach Children's Data Privacy, the Economic Times reports that photos and videos of school children are posted on school websites and social media feeds without parental consent, potentially violating DPDP Act, exposing kids to online abuse and risks. In its editorial, captioned Plutocracy Gone Crazy, the Statesman writes that artificial intelligence has already taken away entry-level accounting, customer service, reporting and administrative support jobs. Significantly, in the first 10 months of 2025, AI was responsible for 11 lakh layoffs in the US tech sector. The paper adds that Anthropic, the present leader in AI technology, has called for stricter regulation of AI, warning of joblessness and even creation of bioweapons should AI remain unregulated, concluding that we can only ignore these warnings at our peril. And finally, arm in arm, Indians in US savor taste of home. Retailers push diaspora demand with WhatsApp alerts and neighborhood vans as mango exports from India seen rising 30% this season, notes the Economic Times. And with that, it's back to you, Naresh.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with President of Seychelles, Patrick Hermini, today, to also address Seychelles National Assembly and interact with members of Indian diaspora. Prime Minister to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashvani at 11 this morning. Ministry of External Affairs asks Indian citizens not to undertake Kailash Mansarovar Yatra without all required travel documents. US military strikes multiple targets in Iran for second day at the direction of President Donald Trump. Death toll in Venezuela's earthquakes rises to 1,430 as rescuers continue search for survivors. And India's Kidambi Srikanth enters final of men's singles event at US Open Badminton in California. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: नमस्कार, एफएम न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं हेमंत शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 135वीं कड़ी होगी। विदेश मंत्रालय ने निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक परामर्श जारी किया है। मंत्रालय ने कहा है कि उसे कैलाश मानसरोवर की यात्रा के दौरान नेपाल में फंसे कई भारतीय नागरिकों से सहायता के अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इनके पास चीन के लिए आवश्यक प्रवेश पत्र और वीजा नहीं है। मंत्रालय ने नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेज प्राप्त होने तक भारत से यात्रा शुरू न करें। जिला प्रशासन कुल्लू ने श्रीखंड महादेव यात्रा 2026 को अगली सूचना तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। ये निर्णय श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए लिया गया है। कुल्लू के जिला दंडाधिकारी अनुराग चंद्र शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान किया है। उन्होंने कल बड़ा बंगाल में लोगों से संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा बंगाल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाए जाएंगे और बच्चों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन राशि जारी की जाएगी। सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चंबा में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। राजीव भारद्वाज ने लोक निर्माण विभाग को 56 सड़क परियोजनाओं की DPR जल्द तैयार करने को कहा। आज पोलियो रविवार है। प्रदेश भर में 5 वर्ष की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को

0: पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। लारजी जल विद्युत परियोजना के जलाशय में जलस्तर व गाद की मात्रा बढ़ गई है। राज्य बिजली बोर्ड ने बताया कि लारजी पावर स्टेशन के लारजी स्थित बांध से आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक गाद की निकासी की जा रही है। बोर्ड ने क्षेत्र के लोगों से एहतियात बरतने और ब्यास नदी के समीप न जाने की अपील की है। न्यूज़ हेडलाइंस में अभी इतना ही। नमस्कार।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज FM शिमला।
2: आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। लीजिए पेश है लोक संगीत।

श्रोता साथियों, कोयल की मीठी कूक जब पहाड़ों की वादियों में गूंजने लगती है तो लगता है जैसे प्रकृति खुद कोई मधुर गीत गुनगुना रही हो। हिमाचली लोक गीतों की यही खासियत है, ये प्रकृति प्रेम और अपनत्व की भावनाओं को बड़े सहज और खूबसूरत अंदाज में बयां करते हैं।

0: लोक संगीत अभी आप सुन रहे थे। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। फिल्म संगीत आप सुनेंगे कुछ ही देर के बाद।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।
0: एफएम शिमला पर लीजिए पेश है फिल्म संगीत।

अगला गाना आइए अब सुनते हैं सनम तेरी कसम फिल्म से, आवाज किशोर कुमार की, गुलशन बावरा की तर्ज, संगीत है आर डी बर्मन का और गुलशन बावरा की शब्द रचना।

फिल्म संगीत अभी आप सुन रहे थे, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से प्राइमरी चैनल से प्रसारित होने वाले आज के मुख्य आकर्षण और उनका प्रसारण समय। प्रातः 9:30 पर सुनिएगा सुरबेला कार्यक्रम। 10 बजे से आज आप सुनेंगे लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो रिमझिम। 10:45 का समय प्रादेशिक समाचारों का रहेगा आज। 10:55 पर आज आप सुनेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात। दिन में 12:20 पर महिला सम्मेलन कार्यक्रम पेश किया जाएगा। सैनिकों के लिए कार्यक्रम का समय रहेगा दिन में 1:10। 2 बजे सुनिएगा सुनहरी किरणें कार्यक्रम। बाल सभा 2:30 पर और 2:45 से सुनिएगा फिल्म संगीत। प्रादेशिक बोलियों के कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 4:20 से। इसके अंतर्गत सबसे पहले सिरमौरी कार्यक्रम पेश होगा, समय रहेगा 4:20। 4:50 पर महासुवी कार्यक्रम पेश किया जाएगा। किन्नौरी कार्यक्रम का समय रहेगा 5:20। 6:05 पर बिलासपुरी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। 2020 की मध्य लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड लंदन से आईसीसी महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप 2026 के मैच का सीधा प्रसारण आज आप सुनेंगे 6:30 से। इस बीच रात्रि 8:15 पर सुनिएगा सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हिम बीट्स। पर समाचार संध्या और रात्रि 9 बजे News@9 आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे। पर क्रिकेट मैच का प्रसारण जारी रहेगा।

0: 10:45 पर फिल्म संगीत प्रसारित होगा। तो ये रहेंगे हमारे प्राइमरी चैनल के आज प्रसारित किए जाने वाले शेष कार्यक्रमों के मुख्य आकर्षण और उनका प्रसारण समय।
1: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।
2: ये आकाशवाणी शिमला है। 9:20 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्र के साथ ही FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।
3: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
4: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
5: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
3: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। प्रदेश में आज 5 वर्ष की आयु के लगभग 6 लाख बच्चों को पिलाई जा रही है पल्स पोलियो की खुराक। 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेले का आज होगा समापन। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे शिरकत। चंबा के चुराह उपमंडल में एक निजी वाहन दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अनुदानित मेढ़ों के प्रावधान की योजना भेड़ पालकों के आर्थिक उत्थान में हो रही कारगर। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 135वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा एआईआर न्यूज़, डीडी न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश भर में आज 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। सोलन जिले में कुल 83,836 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया कि इस कार्य के लिए लगभग 2,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
1: जिला सोलन का टारगेट हमारा बच्चों का 83,836 का है और इसके लिए हमने 441 वैक्सीनेशन बूथ पूरे जिले में बनाए हुए हैं और हमारे 6 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहां हम दूसरी स्टेट के साथ जुड़ते हैं। इन ट्रांजिट पॉइंट्स में हमने विशेष बूथ बनाए हैं ताकि कोई बच्चा जो बाहर जा रहे हैं वो छूट ना जाए और उनको पोलियो की दवा मिल जाए।
0: 3 दिवसीय राष्ट्रीय शूलिनी मेला आज संपन्न होगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या कल हिंदी, पंजाबी और पहाड़ी गायकों के नाम रही। संध्या में स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बतौर मुख्य अतिथि रूप में शिरकत की। गायक राजेश त्यागी, बीरबल किनौरा, अंजू तोमर और अंकुश भारद्वाज ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। वहीं इस अवसर पर ऐतिहासिक ठोडा प्रतियोगिता मेले के मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। प्रदेश की लोक परंपरा, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस खेल में 6 टीमों ने भाग

0: लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज, रणभेरी की धुन और खिलाड़ियों के उत्साह से माहौल उत्सवमय बना रहा। लोकसभा सांसद डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 4 के तहत जिला चंबा में सड़कों का जाल बिछाया जाएगा। जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक के बाद कल पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण योजना से लोगों की सड़क निर्माण से जुड़ी वर्षों पुरानी मांगें पूरी हो रही हैं।
1: आज दिशा कमेटी की बैठक जिला चंबा की मैंने रखी थी। इस बैठक में करीब करीब 28 विभागों की मॉनिटरिंग होती है। ये वो 28 विभाग है जहां केंद्र प्रायोजित योजनाएं केंद्र की ओर से धन उपलब्ध किया जाता है। जो केंद्र की ओर से इन योजनाओं में फंडिंग होती है उसमें हमारी जिला का प्रशासन भी और हमारे जितने विभाग हैं इस योजना के तहत उन सभी विभागों के विभागाध्यक्ष भी और उनके सबॉर्डिनेट स्टाफ भी बड़ी लगन से बड़ी मेहनत से उन परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में लगे हैं और जितनी फंडिंग आती है उसको 100% चंबा जिला में इस्तेमाल करने का काम कर रहे हैं।
0: चंबा जिला के चुराह उपमंडल के नकरोड़ हिमगिरी सड़क मार्ग पर एक निजी वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हमारे चंबा संवाददाता के अनुसार ये हादसा देर रात हुआ बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही तीसा पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव कार्य जारी है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 6 सैनिकों की शहादत को हाल ही में सार्वजनिक रूप से स्वीकार किए जाने को तथ्यात्मक रूप से गलत बताया गया है। मंत्रालय ने कहा कि जल्द से जल्द शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। मंत्रालय ने बताया कि तत्कालीन सैन्य संचालन महानिदेशक ने पिछले वर्ष 11 मई को आधिकारिक प्रेस वार्ता में 6 शहीदों को श्रद्धांजलि दी थी। इन सैनिकों को वीरता पुरस्कार भी प्रदान किए गए थे जिनकी घोषणा पिछले वर्ष 14 अगस्त को जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में की गई थी। मंत्रालय ने कहा कि सेना के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई थी। मंत्रालय ने कहा कि शहीद सैनिकों के नाम राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अंकित किए गए हैं और इस संबंध में उचित प्रक्रिया का पालन न किए जाने का दावा तथ्यात्मक रूप से गलत है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में भेड़ पालन को प्रोत्साहन देने और भेड़ों की नस्ल में सुधार के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत 30 पात्र भेड़ पालकों को अनुदानित नर भेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। भेड़ पालकों को अनुदानित मेढ़ों के प्रावधान की राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य भेड़ों की बेहतर नस्ल विकसित कर ऊन व मांस उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ भेड़ पालकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारी किन्नौर जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: जनजातीय जिला किन्नौर में भेड़ पालन को प्रोत्साहन देने और भेड़ों की नस्ल में सुधार के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत 30 पात्र भेड़ पालकों को अनुदानित रैम नर भेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। जिले के कुल 30 पात्र भेड़ पालकों को योजना का लाभ मिलेगा। किन्नौर जैसे जनजातीय जिले में भेड़ पालन लोगों की आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। ऐसे में यह योजना केवल पशुपालकों की आय बढ़ाने तक सीमित नहीं है बल्कि जिले की समृद्ध संस्कृति विरासत पारंपरिक पहनावे और स्थानीय हस्तशिल्प को भी नई मजबूती प्रदान करेगी। आकाशवाणी के लिए किन्नौर से मैं सुमेश नेगी।
0: कुल्लू जिला प्रशासन ने 10 से 23 जुलाई तक चलने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा को स्थगित कर दिया है। उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने संयुक्त विशेषज्ञ निरीक्षण दल की रिपोर्ट और संभावित प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के तहत ये निर्णय लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं। मॉनसून पूर्व भारी वर्षा से लारजी जल विद्युत परियोजना के जलाशय में जल स्तर व गाद की मात्रा बढ़ गई है। राज्य बिजली बोर्ड ने बताया कि लारजी पावर स्टेशन के लारजी स्थित बांध से आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक गाद की निकासी की जाएगी। ऐसे में लारजी बैराज के सभी गेट खोल दिए जाएंगे और जलाशय से लगभग 2000 क्यूमैक्स पानी छोड़ा जाएगा। बोर्ड ने क्षेत्र के

0: लोगों से एहतियात बरतने और व्यास नदी के समीप न जाने की अपील की है। इधर सतलुज नदी में बढ़ते जल प्रवाह के चलते नाथपा स्थित एनजेएचपीएस प्रबंधन ने आज सुबह 7 बजे से डैम के रेडियल गेटों के माध्यम से लगभग 145 क्यूमैक्स पानी छोड़े जाने की सूचना जारी की है। प्रबंधन ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से आवश्यक एहतियाती कदम उठाने का आग्रह किया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई भागों में हल्की धूप के बीच आज बादल छाए हुए हैं। चंबा में हल्की बारिश का समाचार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी रहेगा। इस दौरान ऊंची चोटियों में बर्फबारी की भी संभावना है। विभाग के अनुसार मानसून जुलाई माह की शुरुआत में प्रदेश में दस्तक दे सकता है। स्पीति हिमालयन बौद्ध स्मृति संघ द्वारा 3 से 6 जुलाई तक स्पीति में 4 दिवसीय हिमालयन बौद्ध संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का विषय स्पीति के दृष्टिकोण से मध्यम मार्ग की परिकल्पना रखा गया है। आयोजन का समापन 6 जुलाई को करुणा दिवस और 14 जुलाई को दलाई लामा के 91वें जन्मदिवस समारोह के साथ होगा। आयोजकों के अनुसार ये सम्मेलन सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, सामाजिक मूल्यों के प्रसार और युवाओं को सकारात्मक दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। दैनिक भास्कर का शीर्षक है, कृषि ऋण के ब्याज पर 50% अनुदान देगी सरकार, 6,356 किसानों को मिलेगा लाभ। पंजाब केसरी व हिमाचल दस्तक के मुताबिक 3 लाख तक के बकाया कृषि ऋणों पर 50% ब्याज देगी सरकार। दिव्य हिमाचल व पंजाब केसरी ने मुख्यमंत्री के हवाले से खबर को शीर्षक दिया है, बड़ा भंगाल की सभी पात्र महिलाओं को मिलेंगे 1,500 रुपये। दैनिक जागरण लिखता है, हिमाचल में सरिया और इथेनॉल के नए उद्योगों पर लगी रोक। अमर उजाला की सुर्खी है, 10 जुलाई से शुरू होने वाली शिखंड यात्रा स्थगित। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में साझा करेंगे अपने विचार। प्रदेश में आज 5 वर्ष की आयु के लगभग 6 लाख बच्चों को पिलाई जा रही है पल्स पोलियो की खुराक। 3 दिवसीय राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेले का आज होगा समापन, राज्यपाल कविंद्र गुप्ता करेंगे शिरकत। चंबा के चुराह उपमंडल में एक निजी वाहन दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु और राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी अनुदानित मेढ़ों के प्रावधान की योजना, भेड़ पालकों के आर्थिक उत्थान में हो रही कारगर। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं सुबह 10:45 पर। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: सुरीला सफर संगीत का, साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो, क्या कहना उस प्रीत का।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। वक्त हो चला है कुदरत के रंग कार्यक्रम का। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं का स्वागत। कार्यक्रम के साथ मैं हूं वीरेंद्र शर्मा। कुदरत के रंग, जी हाँ, कार्यक्रम जहाँ सफर सिर्फ मंजिल तक नहीं बल्कि संस्कृति, आस्था और प्रकृति के अद्भुत संगम तक जाता है।

हिमाचल, जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं, कल कल बहती नदियां मन को सुकून देती हैं और हर घाटी में किसी न किसी देवता की दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है। यहाँ के मंदिर प्राचीन संस्कृति केवल पूजा अर्चना के केंद्र नहीं बल्कि सदियों पुराने इतिहास, लोक मान्यताओं और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। वहीं हरे भरे जंगल, शांत झीलें, मनमोहक वादियां और रोमांच से भरपूर पर्यटन स्थल हर यात्री को अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। तो आइए आज निकलते हैं देवभूमि हिमाचल की एक ऐसी यात्रा पर जहां हर पड़ाव पर मिलेगा आस्था का प्रकाश, प्रकृति का अनुपम सौंदर्य और इतिहास की अनमोल कहानियां। कुदरत के रंग कार्यक्रम में रेडियो यात्रा पर आज हम आपको जिला शिमला स्थित हाटेश्वरी मंदिर माँ हाटेश्वरी हाटकोटी लेकर चलेंगे। गीत संगीत भी साथ ही साथ चलता रहेगा ताकि सफर सुहाना बना रहे।

कुदरत के रंग कार्यक्रम आकाशवाणी एफएम शिमला से आप सुन रहे हैं 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। और जैसा कि हमने कार्यक्रम में जिक्र किया कि इस कार्यक्रम में आज आपके दर्शन हम करवा रहे हैं हाटेश्वरी मंदिर के। पहले तो बताएं कि शिमला से लगभग 100 किलोमीटर दूर शिमला रोहड़ू मार्ग पर पब्बर नदी के दाहिने किनारे पर धान के खेतों के बीच माता हाटकोटी के प्रसिद्ध प्राचीन मंदिर के लिए इस क्षेत्र को जाना जाता है। लगभग 1370 मीटर की ऊंचाई पर बसा पब्बर नदी के किनारे हाटकोटी में महिषासुर मर्दनी का पुरातन मंदिर है, जिसमें वास्तुकला शिल्प कला के उत्कृष्ट नमूनों के साक्षात दर्शन होते हैं। कहते हैं कि ये मंदिर 10वीं शताब्दी के आसपास बना है। इसमें महिषासुर मर्दनी की 2 मीटर ऊंची कांस्य प्रतिमा तोरण सहित है। इसके साथ ही शिव मंदिर है, जहां पत्थर पर बना प्राचीन शिवलिंग है। द्वार को कलात्मक पत्थरों से सुसज्जित किया गया है। छत लकड़ी से निर्मित है, जिस पर देवी देवताओं की अनुकृतियां बनाई गई हैं। मंदिर के गर्भगृह में लक्ष्मी, विष्णु, दुर्गा, गणेश की प्रतिमाएं हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ मंदिर के प्रांगण में देवताओं की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। बताया जाता है कि इनका निर्माण पांडवों ने करवाया था।

कुदरत किरण कार्यक्रम में आज आपके हम दर्शन करवा रहे हैं माँ हटेश्वरी मंदिर हाटकोटी में जो स्थित है उसके। इसके आसपास के परिवेश का जिक्र भी अगर करें तो बताएं आपको कि पब्बर घाटी में स्थित हाटकोटी मंदिर एक ऐसा पावन स्थल है जहां कल कल बहती पब्बर नदी, दूर दूर तक फैले हरे भरे धान के खेत, सेब के बाग, देवदार और चीड़ के वृक्ष और चारों ओर फैली हिमालय की शांत वादियां मन को एक अनोखी शांति से भर देती है। लगता है मानो प्रकृति ने इस स्थान को बेहद खूबसूरत रंगों को चुन चुन कर इसे सजाया है। सुबह की सुनहरी किरणें जब मंदिर के शिखर को स्पर्श करती है और पब्बर नदी की लहरें मधुर संगीत छेड़ती है, तब हर आने वाला श्रद्धालु और पर्यटक इस अनुपम सौंदर्य में निसंदेह खो जाता है।

हाटकोटी स्थित माँ हाटेश्वरी मंदिर पर केंद्रित कार्यक्रम आज का कुदरत के रंग आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला से। और आपको बताएं कि यहाँ स्थापित देवी की मूर्ति बहुत अद्भुत है। कांस्य से बनी देवी की ये मूर्ति, जी हाँ, लगभग 2 मीटर ऊंची है, जिसमें उनके विश्व रूप की झलक देखने को मिलती है। मुख्य परिसर मंदिर में 5 प्राचीन शिला मंदिर है। वहाँ पर मान्यता है कि महाभारत काल में अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने यहाँ पर कुछ समय व्यतीत किया था और उन्हीं के द्वारा इन मंदिरों की स्थापना भी की गई थी। यहाँ पर चमत्कारी एक चारू यानी घड़ा स्थित है। मंदिर के प्रवेश द्वार पर लोहे की जंजीरों से बंधा एक बड़ा धातु का बर्तन रखा हुआ है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार ये एक राक्षस था जो बर्तन के रूप में घाटी से भागने की कोशिश कर रहा था, जिसे देवों ने जंजीरों से बांधकर रोक लिया था। बताएं आपको, यहाँ साल में 2 बार चैत्र और शारदीय नवरात्रि के दौरान भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों श्रद्धालु हिस्सा लेते हैं। अगर आप वहाँ पहुँचना चाहते हैं तो आपको बताएं कि सड़क मार्ग द्वारा शिमला से ठियोग कोटखाई होते हुए खड़ा पत्थर होते हुए हाटकोटी आसानी से आप पहुँच सकते हैं। यहाँ से शिमला से यहाँ पहुँचने में लगभग 4 घंटे के समय का जो अंतराल है। नियमित बस और टैक्सी सेवाएं आसानी से यहाँ पर उपलब्ध रहती है। अगर रेलवे के माध्यम से आप कहीं दूर से आना चाहते हैं तो आपको सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन शिमला ही मिलेगा और निकटतम हवाई अड्डा यहाँ के लिए शिमला एयरपोर्ट जुबरट्टी ही रहेगा।

0: तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम कुदरत के रंग में हमने सफर तय किया माँ हटेश्वरी मंदिर हाटकोटी का। कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहे एफएम शिमला के साथ। वक्त हो चला है एफएम न्यूज हेडलाइंस का, आइए सुने।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं हेमंत शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 135वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। प्रदेश भर में आज 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। कुल्लू जिला प्रशासन ने 10 से 23 जुलाई तक चलने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा को स्थगित कर दिया है। उपायुक्त अनुराग चंद्र शर्मा ने संयुक्त विशेषज्ञ निरीक्षण दल की रिपोर्ट और संभावित प्राकृतिक आपदाओं के खतरे को देखते हुए श्रद्धालुओं की सुरक्षा के तहत ये निर्णय लिया है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं। जनजातीय जिला किन्नौर में भेड़ पालन को प्रोत्साहन देने और भेड़ों की नस्ल में सुधार के उद्देश्य से पशुपालन विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 के तहत 30 पात्र भेड़ पालकों को अनुदानित नर भेड़ उपलब्ध कराए जाएंगे। भेड़ पालकों को अनुदानित मेढ़ों के प्रावधान की राज्य सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य भेड़ों की बेहतर नस्ल विकसित कर ऊन व मांस उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ

0: भेड़ पालकों की आय में वृद्धि सुनिश्चित करना है। पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मॉनसून पूर्व की भारी वर्षा से लारजी जल विद्युत परियोजना के जलाशय में जलस्तर व गाद की मात्रा बढ़ गई है। राज्य बिजली बोर्ड ने बताया कि लारजी पावर स्टेशन के लारजी स्थित बांध से आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक गाद की निकासी की जाएगी। ऐसे में लारजी बैराज के सभी गेट खोले जाएंगे और जलाशय से लगभग 2000 क्यूमैक्स पानी छोड़ा जाएगा। बोर्ड ने क्षेत्र के लोगों से एहतियात बरतने और ब्यास नदी के समीप न जाने की अपील की है। इधर सतलुज नदी में बढ़ते जल प्रभाव के चलते नाथपा स्थित NJHPS प्रबंधन ने आज सुबह 7:15 बजे से डैम के रेडियल गेटों के माध्यम से लगभग 145 क्यूमैक्स पानी छोड़े जाने की सूचना जारी की है। प्रबंधन ने जिला प्रशासन और संबंधित विभागों से आवश्यक एहतियाती कदम उठाने का आग्रह किया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई भागों में हल्की धूप के बीच आज बादल छाए हुए हैं। चंबा में हल्की बारिश का समाचार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4-5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी रहेगा। चंबा के चुराहा में एक सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मृत्यु का समाचार है। न्यूज हेडलाइंस में आज बस इतना ही। नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। अब पेश है पुराने और नए फिल्मी गीतों पर केंद्रित कार्यक्रम झंकार। जी हां झंकार, जहां सुरों की महक में घुली हैं बीते दौर की सुनहरी यादें और आज के दौर की ताजगी। यहाँ हर धुन एक कहानी है, हर गीत एक एहसास और हर पल संगीत के नाम। इस खूबसूरत महफिल में सुनेंगे वो सदाबहार नगमे जिन्होंने पीढ़ियों के दिलों पर राज किया, और साथ ही वो नए तराने जो आज की धड़कनों की आवाज बन चुके हैं। पुरानी यादों की मिठास और नए दौर की ताजगी का एक अनोखा संगम आपके सफर को खास बनाएगा, ऐसा यकीन। तो तैयार हो जाइए यादों के सुनहरे सफर और नए जमाने की मधुर धुनों के साथ झूमने के लिए। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त वीरेंद्र शर्मा।

दोस्तों, रिश्तों की असली खूबसूरती सिर्फ साथ निभाने में नहीं, बल्कि एक दूसरे के दिल के लिए समर्पित होने में होती है। प्यार वही है जो भरोसा दे, अपनापन दे और मुश्किल वक्त में भी मुस्कुराने की वजह बन जाए।

श्रोता साथियों, जब नीले आसमान का विस्तार, पर्वतों की भव्यता और बहती नदियों की मधुर कलकल एक साथ मिल जाएं, तो प्रकृति खुद एक अनसुना गीत गुनगुनाने लगती है। मनमोहक तस्वीर को सुरों में पिरोता अगला गीत।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं।
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेर चौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है।
1: सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही।

0: आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में पीजी की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
1: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
2: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: जंकार कार्यक्रम का अगला गाना आइए सुनते हैं मुस्तफा जाहिद की आवाज में। फिल्म का नाम रागिनी MMS 2।

झंकार कार्यक्रम में आज बस इतना ही। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा करें।

0: हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। लीजिए पेश है साहित्य दर्पण कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप लता शर्मा से कविता पाठ सुनेंगे। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।
1: नमस्कार, साहित्य दर्पण कार्यक्रम के आज के संक में आप सभी का स्वागत है। जीवन सलवटें गिनना नहीं, उलझनों से यूं डरना नहीं, धूप छांव के हैं ये नज़ारे, कुछ मीठे कुछ खारे। तो आइए आज के संक में सुनते हैं लता शर्मा से रचनाएं।
2: नमस्कार, मैं लता शर्मा हाजिर हूँ अपनी कविताओं के साथ। मेरी पहली कविता है जीवन एक सफर। है उलझनों से भरा ये जीवन, कभी खुशी तो कभी है गम। खुशी के पलों में लगता है बड़ा सुनहरा सा ये जीवन, और कभी जब भी हो गम तो लगता बोझिल सा जीवन। उम्र छोटी हो बड़ा लगे ये, उम्र बढ़े तो छोटा ये जीवन। इस जीवन को ऐसा बनाओ कि सुखमय हो जाए ये जीवन। कैसा भी है जैसा भी है, बस ऐसा ही है ये जीवन। चलते जाओ रुकना नहीं, चलते रहना ही है जीवन। राह में लाखों कांटे हैं, पर चलता रहता है ये जीवन। है उलझनों से भरा ये जीवन, है उलझनों से भरा ये जीवन। मेरी अगली कविता का शीर्षक है कभी ये सोचा है। क्यों है ये सुंदर नजारे, क्यों है इंद्रधनुष इतने प्यारे, क्यों बना है ये चंद्रमा, कैसे बने हैं ये सितारे। कभी ये सोचा है, गर दूर कहीं क्षितिज में मिलते ये आसमां और जमीन, फिर होते हम सब कहां। कभी ये सोचा है, कल कल करते ये झरने प्यारे, निरंतर चलती ये नदियां की धारे, देती है ये किसे सहारे। कभी ये सोचा है, घने घनघोर घन घटाओं का चलना, दम दमक दामिनी का दमकना, खगों का हर पल चहकना, और कुसुम का है नित्य महकना। क्यों करे है ये ऐसा, कभी ये सोचा है, ये दिवाकर क्यों है आता, ये दिवाकर क्यों है आता, लाख किरणों को लिए नित्य सांझ चला है जाता, खाली हाथ लिए हुए आए नगर ये उषा काल में, आए नगर ये उषा काल में, जगत फिर ये कैसे जिए। कभी ये सोचा है, ये शब ये शहर ना होती, ये गगन ये धरती ना होती, ये पवन ये फिजा ना होती, ये गुलशन ये बहार ना होती, इन सब के बिन होते हम तो क्या होता। कभी ये सोचा है, बचाना है हमें इन सभी को वर्तमान के भौतिकवाद से, नष्ट ना हो जाए ये सब धरोहरे, बना ना जाए कंगाल हमें, पर बड़ी है ये विडंबना, संरक्षण करे तो कैसे। कभी ये सोचा है। अगली कविता का शीर्षक है साल चला जाएगा। ये रात ढल गई तो साल चला जाएगा, ये रात ढल गई तो साल चला जाएगा, कोई बात टल गई तो साल चला जाएगा। एक पल के लिए ढकली जो पल के तुमने, एक पल के लिए ढकली जो पल के तुमने, तो साल चला जाएगा। यूं ना रूठो यूं ना सिसको, यूं ना रूठो यूं ना सिसको, गर रहोगे नाराज तो साल चला जाएगा। भुला दो कि क्या खोया है, याद करो क्या पाया, करोगे यूं बैर, करोगे यूं बैर, तो साल चला जाएगा। ना बुझाओ दीपक, ना बुझाओ दीपक, वरना रात के अंधियारे में ये साल चला जाएगा। रोशनी फैलाओ आंगन में, रोशनी फैलाओ आंगन में, बजाओ कोई साज नया, नहीं तो साल चला जाएगा।

आएगा, मुस्कुराओ, गुनगुनाओ, खिलखिलाओ, सब जगह रोशनी सी बिखराओ। यूं ही मुस्कुराना और गुनगुनाना, नहीं तो साल चला जाएगा, नहीं तो साल चला जाएगा। अगली कविता है व्यथा एक बागवां की। क्यों है एक बागवां ऐसा, क्यों है एक बागवां ऐसा, जो दूसरों को दे सहारा, खुद को मिटा दे वो सारा, पर उसे कर दे सब अनाथ, पर उसे कर दे सब अनाथ, कोई नहीं है उसके साथ, जो एक छोटी सी कली उगाए, जिससे वो सारा चमन महकाए। महके हुए चमन को देखो, महके हुए चमन को देखो, खुद पर वो इतना क्यों इतराए। बागवां करे जब कोई आशा, तो अपने ही दे उसे निराशा, निराभाव सा वो रह जाए, निराभाव सा वो रह जाए, सोचे क्या करे क्या किया जाए, पर करे भी तो वो क्या बेचारा, रह जाए अकेला हारा, जिसने था सारा चमन महकाया, जिसने था सारा चमन महकाया, उसी चमन ने दिया है उसे उजाड़, सोचो होगा जीवन उसका कैसा, सोचो होगा जीवन उसका कैसा, क्यों है एक बागवां ऐसा, क्यों है एक बागवां ऐसा। अगली कविता है इशारों में सब बता देना। जुबां से कुछ ना कहना ओ साथी, जुबां से कुछ ना कहना ओ साथी, इशारों में सब बता देना, पिता जो पूछे बारे में मेरे, पिता जो पूछे बारे में मेरे, इशारों में सब बता देना, जुबां से कुछ ना कहना ओ साथी, इशारों में सब बता देना। माँ जो पूछे बारे में मेरे, माँ जो पूछे बारे में मेरे, सूनी गोद दिखा देना, जुबां से कुछ ना कहना ओ साथी, इशारों में सब बता देना। भाई जो पूछे बारे में मेरे, भाई जो पूछे बारे में मेरे, सूना कांधा दिखा देना, जुबां से कुछ ना कहना ओ साथी, इशारों में सब बता देना। बहन भी पूछेगी बारे में मेरे, बहन भी पूछेगी बारे में मेरे, सूनी कलाई दिखा देना, जुबां से कुछ ना कहना ओ साथी, इशारों में सब बता देना। पत्नी जो पूछे बारे में मेरे, पत्नी जो पूछे बारे में मेरे, सूनी मांग दिखा देना, जुबां से कुछ ना कहना ओ साथी, इशारों में सब बता देना। मरा नहीं कायर की तरह, मरा नहीं कायर की तरह, वीर सिपाही कहलाया हूँ, पिता तेरा था पुत्र मैं, पिता तेरा था पुत्र मैं, आज काम देश के आया हूँ, बस इतना ही कहूँगा साथी, बस इतना ही कहूँगा साथी, इशारों में सब बता देना। पिता जो पूछे बारे में मेरे, इशारों में सब बता देना, जुबां से कुछ ना कहना ओ साथी, इशारों में सब बता देना। अगली कविता का शीर्षक है संघर्ष। मुश्किलें जो जीवन में आए, मुश्किलें जो जीवन में आए, सामना इनका करना ही होगा, काम जो अधूरा पड़ा है, काम जो अधूरा पड़ा है, पूरा उसे करना ही होगा। बाधाएं राह में आएगी लाखों, बाधाएं राह में आएगी लाखों, जूझना उनसे जरूर होगा, मुश्किलें जो जीवन में आए, सामना इनका करना ही होगा। चाह अगर है मंजिल पाने की, चंद जख्मों को तो सहना ही होगा, राह अनजानी है सफर की, राह अनजानी है सफर की, इस राह को जानना ही होगा, मुश्किलें जो जीवन में आए, सामना इनका करना ही होगा। कश्ती को अगर पा लिया है तूने, तो सागर को भी तू पा जाएगा, बवंडर में अगर फंसा है तू, बवंडर में अगर फंसा है तू, तो साहिल भी तुझे मिल जाएगा। मुश्किलें जो जीवन में आए, सामना इनका करना ही होगा, सामना इनका करना ही होगा, सामना इनका करना ही होगा। अगली कविता है ये कौन है चित्रकार। ये स्थूल धरा बनी, ये स्थूल धरा बनी, ये असीम आसमां, ये व्याप्त जगत बना, ये इहलोक बना, रात बनी ये दिन बना, रात बनी ये दिन बना, ये शब बनी ये शहर, पर किसने की है ये रचना, ये कौन है चित्रकार, ये कौन है चित्रकार। रंग भरे हर सुमन में, रंग भरे हर सुमन में, जिसने खुशबू हर जगह बिखराई, भंवरे को गुंजन मान किया, हर कली को है लचक दिलाई, गुलशन में बहार आई और बहार में रंगत समाई, गुलशन में है बहार आई और बहार में रंगत समाई, पर किसने की है ये रचना, पर किसने की है ये रचना, ये कौन है चित्रकार, ये कौन है चित्रकार। कभी मंद चले हवा तो कभी तीव्र हो इसकी गति, कृतिका बनी नक्षत्र बने और बना ये ब्रह्मांड, किसका है ये कारनामा और किसकी है ये मति, पर किसने की है ये रचना, ये कौन है चित्रकार, ये कौन है चित्रकार। नदियों का निरंतर ही बहना,

नदियों का निरंतर ही बहना, बस चलते रहो नित्य ये कहना, झरनों का ये उद्भव होना, फिर सागर में संलिप्त हो जाना, नभ से गिरना आकाश गंगाओं का, नभ से गिरना आकाश गंगाओं का, कहीं क्षितिज में फिर डूब जाना, सुंदर पावन सृष्टि का निर्माण किया, सभी को ये जीवन है दिया, पर किसकी है ये रचना, ये कौन है चित्रकार, ये कौन है चित्रकार। अगली कविता का शीर्षक है कहो ना माँ। कुछ तो कहो ना माँ, यूं चुप रहो ना माँ, कुछ तो कहो ना माँ, यूं चुप रहो ना माँ, सोचती तो होगी कभी बारे में मेरे, है ना माँ, है ना माँ, हूँ मैं एक कुमुदकली, हूँ मैं एक कुमुदकली, अभी तेरे गर्भ में पली, धीरे धीरे हो रही बड़ी, धीरे धीरे हो रही बड़ी, करती हूँ कभी अटखेली, करती हूँ कभी अटखेली, जरिए तेरे देखती हूँ जहान, जरिए तेरे देखती हूँ जहान, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, तूने दी मुझे खुद में पनाह, सच कहा ना माँ, है ना माँ, पर यह क्या, ये कहा कहा कैसा, कि सहम गई मेरी सांस, मुझे नहीं थी ऐसी आस, माँ तुम भी हो गई हो जिससे उदास, खो ना जाए तेरी मेरी वो उजास, माँ बंधाओ ना मुझे विश्वास, दूर ना करोगी तुम मुझे, दूर ना करोगी तुम मुझे, रखोगी बस अपने पास, है ना माँ, कुछ तो कहो ना माँ, कुछ तो कहो ना माँ, यूं चुप रहो ना माँ, कैसा सवाल उठा है माँ, मन में बवाल उठा है माँ, मैं एक कन्या भ्रूण हूँ, मैं एक कन्या भ्रूण हूँ, अनचाहा कोई शूल हूँ, मानो किसी की भूल हूँ, क्या मैं स्थूल हूँ, कहो ना माँ, कुछ तो कहो ना माँ, यूं चुप रहो ना माँ, संग तेरे मुझे रहना है, संग तेरे मुझे रहना है, सुख दुख संग सहना है, आना है इस दुनिया में मुझे, तुम मुझे दुनिया दिखलाओगी ना माँ, मुझे ये जहान दिखलाओगी ना माँ, है ना माँ, पर कुछ तो कहो ना माँ, कुछ तो कहो ना माँ, यूं चुप रहो ना माँ। अगली कविता का शीर्षक है कुछ हम कहे कुछ तुम कहना, कुछ हम कहे कुछ तुम कहना, रह गई है जो दरमियान बातें, रह गई है जो दरमियान बातें, जाहिर वो तमाम करना, कुछ हम कहे कुछ तुम कहना, तारीफें ना सही शिकायतों का अंबार ही करना, तारीफें ना सही शिकायतों का अंबार ही करना, दिल की गहराइयों में जो डूबी हैं बातें, उन सभी बातों का इजहार करना, कुछ हम कहे तो कुछ तुम कहना, वक्त का क्या है बहता है जो रेत की तरह, वक्त का क्या है जो बहता है रेत की तरह, वक्त के साथ ही वक्त की बात कहना, कुछ हम कहे तो कुछ तुम कहना। अगली कविता का शीर्षक दौर ये भी चला जाएगा, दौर ये भी चला जाएगा, ना रुला यूं ही इन मासूम आंखों को, ना रुला यूं ही इन मासूम आंखों को, गर दौर वो भी गया तो ये भी चला जाएगा, कोई नहीं लूट पाएगा तेरे हुनर को तुझसे, कोई नहीं लूट पाएगा तेरे हुनर को तुझसे, जरा सी कोशिश तो कर, जरा सी कोशिश तो कर, तू सब फिर से वो पाएगा, मिन्नतों से यहाँ कुछ कब मिला है किसे, मिन्नतों से यहाँ कुछ कब मिला है किसे, मेहनत कशों का ही रुतबा यहाँ चल पाएगा, अपनी लगन को तू अपनी ढाल बना, अपनी लगन को तू अपनी ढाल बना, फलक को भी तू, फलक को भी तू जमी पे ले आएगा, ना रुला यूं ही इन मासूम आंखों को, ना रुला यूं ही इन मासूम आंखों को, गर दौर वो भी गया तो ये भी चला जाएगा। अगली कविता तारे। टिमटिमाते तारों के सुंदर बड़े नजारे, टिमटिमाते तारों के सुंदर बड़े नजारे, अनंत नभ जिनसे भरा असंख्य है ये सारे, टिमटिमाते तारों के सुंदर बड़े नजारे, देखो है कितने प्यारे, देखो है कितने प्यारे, टिमटिमाते तारों के सुंदर बड़े नजारे, मयंक अपनी आभा लिए, मयंक अपनी आभा लिए, कभी जो इतराए व्यर्थ में ही आगे इनके, व्यर्थ में ही आगे इनके, अपनी शान दिखाए, कभी जो नभ में विधि के हेतु ये न आ पाए, अकिंचन तारे गगन में आफताब का मान घटाए, टिमटिमाते तारों के सुंदर बड़े नजारे, अनंत नभ जिनसे भरा, अनंत नभ जिनसे भरा, असंख्य है ये सारे, टिमटिमाते तारों के सुंदर बड़े नजारे, देखो है कितने सारे, देखो है कितने प्यारे, रोहिणी कृतिका देख इन्हें, रोहिणी कृतिका देख इन्हें, जल भुंसी जाए चाहे भेद

0: पाना इनका, चाहे भेद पाना इनका पर भेद ना जान पाए। भोर हुई तो टिमटिमाते तारे, भोर हुई तो टिमटिमाते तारे, मानो अदृश्य से कहीं हो जाए। वही बस तारे रात में फिर नजर ना आए, टिमटिमाते तारों के सुंदर बड़े नजारे, सुंदर बड़े नजारे अनंत नभ में ये सारे, टिमटिमाते तारों के सुंदर बड़े नजारे, देखो है कितने प्यारे, देखो है कितने प्यारे। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे लता शर्मा से उनकी रचनाएं। इसी के साथ साहित्य दर्पण कार्यक्रम का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है। आगे लेते हैं नमस्कार।
2: साहित्य दर्पण, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का शिमला केंद्र। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप डीटीएच सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं।
3: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप नुसरत अंजुम से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 135वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा AIR न्यूज़, DDU न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। 3 दिवसीय राष्ट्रीय शूलिनी मेला आज संपन्न होगा। राज्यपाल कविंद्र गुप्ता मेले की अंतिम सांस्कृतिक संध्या में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले मेले की दूसरी सांस्कृतिक संध्या कल हिंदी, पंजाबी और पहाड़ी गायकों के नाम रही। इसके अलावा ऐतिहासिक ठोडा प्रतियोगिता मेले के मुख्य आकर्षण का केंद्र रही। प्रदेश की लोक परंपरा, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस खेल में 6 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज, रणभेरी की धुन और के उत्साह से माहौल उत्सवमय बना रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पर संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के एक महत्वपूर्ण दौर में नरसिम्हा राव ने भारत की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव एक कुशल प्रशासक, प्रख्यात विद्वान और भारत की विविध संस्कृति की गहरी समझ रखने वाले नेता थे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं।
4: विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुछ भारतीय श्रद्धालु निजी टूर ऑपरेटरों के जरिए कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए नेपाल तो पहुंच गए, लेकिन उनके पास चीन में प्रवेश के लिए जरूरी वीजा और परमिट नहीं थे। इस कारण कई श्रद्धालुओं को यात्रा के समय समस्याएं पेश आई हैं और उन्होंने मंत्रालय से मदद मांगी है। मंत्रालय ने कहा है कि श्रद्धालु सभी जरूरी यात्रा दस्तावेज मिलने के बाद ही यात्रा शुरू करें। उसने कहा है कि केवल इस उम्मीद में यात्रा शुरू न करें कि आगे चलकर परमिट या वीजा मिल जाएगा, क्योंकि इससे यात्रा के दौरान परेशानी हो सकती है। मंत्रालय ने श्रद्धालुओं से कहा है कि यात्रा पर जाने से पहले यह सुनिश्चित कर ले कि उनका टूर ऑपरेटर पंजीकृत और अधिकृत है।
3: प्रदेश भर में आज 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। सोलन जिले में कुल 83,836 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जा रही है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया कि इस कार्य के लिए लगभग 2,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने सरिस्का बाघ अभयारण्य में बाघों के पुनर्स्थापन के 18 वर्ष पूरे होने पर देशवासियों और प्रकृति प्रेमियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में यादव ने कहा कि सरिस्का में कभी बाघ पूरी तरह विलुप्त हो गए थे, लेकिन वहां अब 53 बाघों का निवास है। उन्होंने इसे प्रकृति के पुनरुद्धार, वैज्ञानिक संरक्षण और

सामूहिक संकल्प का एक प्रेरणादायक उदाहरण बताया। चंबा जिला के चुराह उपमंडल के नकरोट हिमगिरी सड़क मार्ग पर एक निजी वाहन के अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिरने से उसमें सवार चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हमारे चंबा संवाददाता के अनुसार ये हादसा देर रात हुआ बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही तीसा पुलिस व प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है और राहत व बचाव कार्य जारी है। स्पीति हिमालयन बौद्ध संस्कृति संघ द्वारा 3 से 6 जुलाई तक स्पीति में 4 दिवसीय हिमालयन बौद्ध संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का विषय स्पीति के दृष्टिकोण से मध्यम वर्ग की परिकल्पना रखा गया है। अधिक ब्यौरे के साथ

0: बचाव कार्य जारी है। स्पीति हिमालयन बौद्ध संस्कृति संघ द्वारा 3 से 6 जुलाई तक स्पीति में 4 दिवसीय हिमालयन बौद्ध संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का विषय स्पीति के दृष्टिकोण से मध्यम वर्ग की परिकल्पना रखा गया है। अधिक ब्यौरे के साथ हमारे लाहौल स्पीति जिला संवाददाता की ये रिपोर्ट।
1: स्पीति हिमालयन बौद्ध संस्कृति संघ द्वारा 3 से 6 जुलाई तक स्पीति में 4 दिवसीय हिमालयन बौद्ध संस्कृति सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन का विषय स्पीति के दृष्टिकोण से मध्यम मार्ग की परिकल्पना रखा गया है। पहले 2 दिनों में भावनात्मक कल्याण और समाज सेवा में मठों की भूमिका पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं तीसरे दिन युवाओं के बेहतर भविष्य और उनके समक्ष मौजूद चुनौतियों पर विशेष सत्र आयोजित होंगे। आयोजन का समापन 6 जुलाई को करुणा दिवस और 14वें दलाई लामा के 91वें जन्म दिवस समारोह के साथ होगा। आकाशवाणी के लिए लाहौल स्पीति से मैं सुरेंद्र कुमार।
0: राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई भागों में हल्की धूप के बीच आज बादल छाए हुए हैं। चंबा में हल्की बारिश का समाचार है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार अगले 4 से 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी रहेगा। इस दौरान ऊंची चोटियों में बर्फबारी की भी संभावना है। विभाग के अनुसार मानसून जुलाई माह की शुरुआत में प्रदेश में दस्तक दे सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 2:03 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार आप हमारे हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों से भी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए देश का।

देश गान अभी आपने सुना। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे मन की बात कार्यक्रम, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मन की बात। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ आप हमारे हमीरपुर, धर्मशाला केंद्रों और आकाशवाणी FM शिमला से भी सुन रहे हैं। ये प्रसारण आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: ये आकाशवाणी है।
1: श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, यदि व्यक्ति की बुद्धि शुद्ध हो तो अक्सर छोटे छोटे कर्मों की नैतिक योग्यता भी बड़े बड़े कर्म कर डालने में समर्थ होती है। बुद्धि तो एक तलवार के समान है। जीवन में जो कुछ भी इंसान के सामने आता है उसकी कांट छांट करना ही बुद्धि का काम है। इसके विपरीत जब बुद्धि शुद्ध ना हो तब किसी कर्म की नैतिक योग्यता का ज्ञान मनुष्य को नहीं हो सकता। इस तरह बुद्धि के अभाव में अच्छा कार्य भी बुरा बन सकता है।
2: महात्मा गांधी का कहना है,
3: मैं भगवान को मानवता की सेवा द्वारा देखने का प्रयत्न करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ भगवान न ऊपर आकाश में है और न नीचे पाताल में, वो तो सब में है।
4: मन की शांति और शक्ति के लिए जुड़िए भक्ति से। आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, महाकुंभ मेला हो या जगन्नाथ रथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए सूफी संगीत और शबद कीर्तन,
5: कोई बोले राम राम।
4: आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल, न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और YouTube पर भी उपलब्ध आराधना चैनल।

0: घर घर तक पहुंचाएं आपका विज्ञापन, आकाशवाणी और दूरदर्शन के विभिन्न चैनल। देश के किसी भी कोने में विज्ञापन देने के लिए प्रसार भारती के मार्केटिंग प्रभाग से संपर्क कीजिए।
1: ये आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप है। लाइव रेडियो, लेटेस्ट न्यूज हेडलाइंस, न्यूज पॉडकास्ट्स, साथ में दूरदर्शन के लाइव चैनल्स भी। द बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन अब आपके एक उंगली के इशारे पर। कहीं भी कभी भी रहे हरदम अपडेट। आज ही डाउनलोड करें आकाशवाणी का न्यूज ऑन एयर ऐप।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।

0: अभी
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: बोल बोल के थक गया।
3: क्या हुआ?
2: नया किडबैग चाहिए।
3: तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से।
2: करेक्ट।
3: तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर CMS पोर्टल पर शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर CMS पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर।
2: चले
3: ले आ गया नया किडबैग।
4: RBI कहता है
1: पहले अपना बैंक फिर RBI ओम्बुड्समैन।
5: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बात साझा करेंगे, तो आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री जी से मन की बात।
6: मेरे प्यारे देशवासियों नमस्कार। मन की बात में एक बार फिर आप सब से जुड़कर मुझे अत्यंत आनंद हो रहा है। 2026 का आधा साल बीतने को है। इन 6 महीनों में हमने मन की बात में देशवासियों की अनेक उपलब्धियों पर चर्चा की है। जून में भी देश ने कुछ ऐसी उपलब्धियां हासिल की हैं जो हर देशवासी को गर्व से भर देती हैं। ये सफलताएं देश की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता से जुड़ी हैं। हाल ही में मुझे कोलकाता में नौसेना से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर मिला। वहां INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। साथियों जून के महीने में ही एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं और आत्मनिर्भर भारत का संकल्प भी मजबूत हो रहा है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है। यानी आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। साथियों जून में एक और आयोजन हुआ जिसमें पूरी दुनिया भारत के प्रयासों से जुड़ी और यह कार्यक्रम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इस बार दुनिया के 2500 से अधिक स्थानों पर योग के अनेक विविध कार्यक्रम हुए। हमारे देश में करोड़ों लोगों ने स्थान स्थान पर योग कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस महीने अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा। मैं सभी विजेता खिलाड़ियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों किसी भी राष्ट्र की आत्मा उसके लोग होते हैं और जब उस देश के लोग कोई संकल्प लेते हैं तो कोई भी शक्ति उन्हें अपने लक्ष्य से डिगा नहीं पाती। राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की यह ताकत भारत की बहुत बड़ी पूंजी है और इस जन भागीदारी का हम बार बार अनुभव कर रहे हैं। साथियों पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कुछ आग्रह किए थे। मैंने कहा था कि जहां तक संभव हो कुछ समय के लिए गोल्ड सोना खरीदने से बचें। लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टी

छुट्टियां मनाने से बचें। मैंने लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी। मैंने किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। साथियों, मैं देश के हर नागरिक का आभारी हूं कि मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं। मुझे कई परिवारों ने संदेश भेजकर अपने अनुभव साझा किए हैं। कितने ही परिवारों ने तय किया है कि घर के विवाह में इस बार सोना नहीं खरीदेंगे, जरूरत पड़ी तो पुराने सोने को रिसाइकल करके नए गहने बना लेंगे। कितने ही लोगों ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा है कि कैसे उन्होंने इस बार विदेश यात्रा को टाल दिया है। साथियों, कार पुलिंग को लेकर भी लोगों ने अनेक अनुभव साझा किए हैं। जो लोग हर दिन एक ही दिशा में अपने अपने वाहनों से जाते थे, वे अब साथ जाने लगे हैं। लोग हर संभव बस और मेट्रो का उपयोग कर रहे हैं, इससे पेट्रोल और डीजल की बचत हो रही है। इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृतिक खाद की खपत बढ़ने की भी खबरें आ रही हैं। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि इस ग्लोबल क्राइसिस का हम भारतीय मिलकर मुकाबला कर रहे हैं। मुझे विश्वास है जन भागीदारी की यही शक्ति हमें मजबूती देगी, हमें सफल बनाएगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारे देश में जन्मदिन, शादी ब्याह, पारिवारिक कार्यक्रम होने के साथ ही पूरे समाज का भी उत्सव होता है। हर परिवार चाहता है कि उसकी खुशियां दूसरे के साथ भी साझा हो। लोग मेहमानों को उपहार भी देते हैं। साथियों, महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक परिवार ने अपनी खुशियां बांटने के लिए ऐसा काम किया है जो चर्चा का विषय बन गया है। यहाँ नांदेड़ के बहादुरपुरा गांव में पेटकर परिवार रहता है। इस परिवार ने सोचा कि अगर खुशी बांटनी ही है तो ऐसी चीज दी जाए जो मुश्किल समय में किसी परिवार का सहारा बने। अपने घर में विवाह के अवसर पर इस परिवार ने गांव के लगभग 3,500 लोगों के लिए दुर्घटना बीमा की व्यवस्था की। हर व्यक्ति को 1,00,000 रुपये का बीमा कवर दिया गया। इस पहल के पीछे की भावना बहुत स्पर्श करने वाली है। परिवार ने देखा था कि दुर्घटना के बाद परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे समय में एक छोटी सी सहायता भी बहुत बड़ा संबल बन जाती है। साथियों, सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 20 रुपये के सालाना प्रीमियम, यानी केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। अब तक इस योजना से 58 करोड़ से अधिक लोग जुड़ चुके हैं। इनमें करीब 28 करोड़ हमारी माताएं, बहनें, बेटियां हैं, महिलाएं हैं। इस योजना से पीड़ित परिवारों को अब तक जो हिसाब मिला है, 3,700 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिल चुकी है। साथियों, उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपए का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है, मतलब एक दिन का मुश्किल से 1.5 रुपया। इस योजना से अब तक 27 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं। इसके तहत देश के करीब 11,00,000 परिवारों को करीब 22,000 करोड़ रुपए की सहायता
मिल चुके

की है। ये आंकड़े बहुत बड़े हैं। इन आंकड़ों के पीछे लाखों परिवारों की अपनी अपनी कहानी है। कहीं किसी माँ को बच्चों की पढ़ाई जारी रखने में सहायता मिल गई, कहीं किसी पत्नी को घर की जिम्मेदारियां संभालने का सहारा मिल गया। साथियों, कई बार बहुत बड़ी सुरक्षा की शुरुआत बहुत छोटी राशि और एक छोटे से कदम से हो सकती है। छोटा सा भी निर्णय बहुत बड़ा बदलाव करता है। मेरा आप सभी से आग्रह है कि अपने परिवार में इन योजनाओं की जानकारी जरूर साझा करें। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में अब बात एक ऐसे विषय की जो हजारों साल पुराना है, हजारों साल से मानव समाज में घर कर करके बैठ गया है। ये विषय है अंधविश्वास का। अंधविश्वास कई बार केवल एक गलत धारणा नहीं होता, वो डर पैदा करता है। और जब डर मन पर हावी हो जाता है तो इंसान सच को देखना ही बंद कर देता है। अंधविश्वास में डूबे लोग फिर बिना तर्क के, बिना सत्य जाने ऐसे फैसले लेने लगते हैं जिनका बड़ा नुकसान होता है। वहीं समाज में ऐसे लोग भी होते हैं जो विज्ञान, अनुभव और तर्क के आधार पर उन धारणाओं को चुनौती देते हैं। अंधविश्वास से विश्वास तक की ये यात्रा आसान नहीं होती। और आज मैं ऐसी ही एक सफल यात्रा के बारे में आपको जरूर बताना चाहता हूं। साथियों, असम में एक पक्षी पाया जाता है। उस पक्षी का नाम है हरगीला। हरगीला एक दुर्लभ पक्षी है। ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है। लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। लोग इसे अपने आसपास देखना पसंद नहीं करते थे। कई बार उन पेड़ों को भी काट दिया जाता था जिन पर हरगीला के घोंसले बने होते थे। सोचिए, एक ऐसा पक्षी जो पर्यावरण की सफाई में मदद करता है, वही हरगीला लोगों के डर का शिकार बन गया था। इसी दौरान जीव वैज्ञानिक पूर्णिमा देवी बर्मन ने ये सब देखा। उन्होंने लोगों के मन में बैठी गलत धारणा को बदलने का संकल्प लिया। उन्होंने महिलाओं से बात की, उन्होंने लोगों को विज्ञान के आधार पर समझाया। धीरे धीरे महिलाएं इस अभियान से जुड़ने लगी। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ। जिस पक्षी को कभी अशुभ मानकर भगाया जाता था, वही गांवों की पहचान बनने लगा। हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगीला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगीला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे। उन्होंने दिखाया है जब सही जानकारी पहुंचाई जाती है तो वर्षों पुरानी सोच भी बदल सकती है। साथियों, मैं अक्सर कहता हूं, जो खेलता है वो खिलता है। आज देश में ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। पहले की तुलना में अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। मुझे नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है जो बहुत दिलचस्प है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग। नाम सुनकर आपको जरूर लगता होगा कि ये बहुत छोटे बच्चों की कोई साधारण लीग होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 5 से

10-12 साल की आयु के छोटे छोटे बच्चे, फूल जैसे बच्चों की एक असाधारण लीग है और इन बच्चों के फुटबॉल खिलाड़ियों की एक ऐसी लीग है जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित भी करती है और उनकी पहचान भी बनाती है। इसकी शुरुआत नागालैंड के अधिक से अधिक बच्चों को फुटबॉल से जोड़ने के लिए हुई थी। 5 से 12 वर्ष तक के लड़के और लड़कियां इसमें हिस्सा ले सकते हैं। ये लीग अब अपने 3 वर्ष पूरे कर चुकी है। इस लीग का बच्चों के मन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। साथियों, नागालैंड में एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। इसका नाम है नागालैंड विमेन फुटसल लीग। हो सकता है आपके लिए ये फुटसल एक नया नाम होगा। मैं आपको बताता हूं, फुटसल को इंडोर फुटबॉल भी कहा जाता है। इसमें एक टीम में केवल 5 खिलाड़ी होते हैं। खेल का मैदान भी फुटबॉल के मैदान से बहुत छोटा होता है। इस कारण खिलाड़ियों को तेज फैसले लेने होते हैं। उन्हें अपनी टेक्निक और स्किल का बेहतर इस्तेमाल करना पड़ता है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है। मैं ऐसी पहलों के लिए नागालैंड के लोगों की सराहना करता हूं। ऐसे प्रयास देश के दूसरे हिस्सों को भी प्रेरणा देते हैं। साथियों, ये टेक्नोलॉजी का युग है। हर दिन नई रिसर्च हो रही है, नए नए AI इनोवेशन सामने आ रहे हैं। इस दौर में एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, लोगों की क्रिएटिविटी को कैसे बचाए रखा जाए। नई टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ते हुए हम अपनी जड़ों से कैसे जुड़े रहें, इन सवालों का समाधान खोजा है नालंदा विश्वविद्यालय ने। हजारों साल पुरानी हमारी नालंदा विश्वविद्यालय अब नए अवतार के रूप में भारत का भाग्य गढ़ रही है। 2 साल पहले मुझे नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर के लोकार्पण का अवसर मिला था। नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। शास्त्रार्थ केवल अपनी बात रखने का माध्यम नहीं है, ये वाद, संवाद और मंथन की एक अनुशासित प्रक्रिया है। इसमें तर्क के साथ, तथ्य के साथ अपनी बात कहना बहुत जरूरी होता है और उसमें आपकी महारत होनी चाहिए। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया। इसमें भाग लेने वाले करीब आधे स्टूडेंट्स अन्य देशों से आए थे। एक प्राचीन परंपरा को आज के समय से जोड़ने का ये प्रयास बहुत सराहनीय है। मैं इसके लिए नालंदा विश्वविद्यालय को बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं देश के दूसरे विश्वविद्यालयों से भी आग्रह करूंगा कि वे ऐसी पहल पर विचार करें। साथियों, जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में BTech प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी। हमारे प्राचीन ग्रंथों और पांडुलिपियों को डिजिटल रूप में संरक्षित करने के काम को

भी नई गति मिलेगी। मैं सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज भारतीय संस्कृति दुनिया के अलग अलग हिस्सों तक पहुंच रही है। हमारे गीत, संगीत और आध्यात्म को दुनिया भर के लोग जान रहे हैं और अपना रहे हैं। भारत से हजारों किलोमीटर दूर कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है। वहां भारतीयों की संख्या करीब 100 है, शायद उससे भी कम होगी। इसके बावजूद भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहां हो रहा है। वहां स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। वे वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सीख रहे हैं। उन्हें इसकी कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं मिली है, लेकिन उन्होंने ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनकर वैदिक मंत्रों का सही उच्चारण सीखा है। आज वे कई मंत्रों का बहुत अच्छे से जाप कर लेते हैं। इनमें पुरुष सूक्तम, श्री सूक्तम, श्री रुद्रम, दुर्गा सूक्तम और देवी महात्मा शामिल है। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका यह प्रयास बहुत प्रेरक है। मैं ब्रह्म कमल डोमिनिकाना वहां के सभी सदस्यों को उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं ऐसे सभी लोगों की हृदय से सराहना करता हूं जो भारतीय संस्कृति को दुनिया भर में लोकप्रिय बनाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मेघालय की पहचान बादलों से है, खूबसूरत नजारों से है। जो मेघालय जाता है उसे वहां के लोगों का अपनापन भी लंबे समय तक याद रहता है। लेकिन मेघालय की एक और विशेषता है जिसकी मैं आज मन की बात में आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ये है मेघालय के रूट ब्रिज। रास्ता वाला रूट नहीं, जड़ों वाला रूट। इन रूट ब्रिजों की कहानी बहुत रोचक है। ये ब्रिज कुछ दिनों या कुछ वर्षों में नहीं बनते, इन्हें तैयार होने में कई दशक लगते हैं। रबर के पेड़ों की जड़ों को धीरे धीरे दिशा दी जाती है। इन जड़ों को जल धाराओं के पार ले जाया जाता है। समय के साथ वही जड़ें एक मजबूत ब्रिज का रूप ले लेती हैं। इन ब्रिजों की एक और विशेषता है, ये जीवित ब्रिज है। समय बीतने के साथ ये और मजबूत हो जाते हैं। इनमें मेघालय के लोगों की सृजनशीलता दिखाई देती है। इनके पीछे वर्षों का धैर्य और प्रकृति के प्रति गहरा सम्मान है। ये ब्रिज बताते हैं कि मनुष्य प्रकृति के साथ मिलकर कितनी अद्भुत चीजें बना सकता है। ये हमारे देश की, इस धरती की धरोहर है। अब भारत ने मेघालय के रूट ब्रिजों को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नेटवर्क में शामिल कराने के लिए आवेदन किया है। साथियों, क्लाइमेट चेंज के कारण इन रूट ब्रिजों के सामने कई चुनौतियां भी आती हैं। ऐसे समय में मेघालय के लोगों ने इस प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की जिम्मेदारी भी बखूबी निभाई है। पहले ये पता लगाना भी आसान नहीं था कि ऐसे ब्रिजों की संख्या कितनी है। स्थानीय लोगों ने खुद इनकी गिनती शुरू की। इसके बाद समुदायों ने इन ब्रिजों की देखभाल की जिम्मेदारी भी संभाली। आज स्थानीय लोग 120 से अधिक रूट ब्रिजों की देखरेख कर रहे हैं। कुछ टीमें हर साल इन पुलों की स्थिति की जांच करती हैं। कुछ लोगों ने आसपास के क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए नर्सरी भी तैयार की है। इस तरह के इनके संरक्षण के लिए

एक पूरा इकोसिस्टम तैयार हो गया है। आपने देखा होगा इस वर्ष हैली वारजी को पद्म अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उन्होंने अपने जीवन के 50 से अधिक वर्ष इन रूट ब्रिजों की देखभाल में लगाए हैं। उनका समर्पण हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। साथियों, आपने कभी इन रूट ब्रिजों की यात्रा की हो तो उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर जरूर साझा कीजिए। आपकी तस्वीरें दूसरे लोगों को भी मेघालय की इस अनोखी धरोहर के बारे में जानने के लिए प्रेरित करेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा गांव साफ सुथरा हो, हमारा शहर सुंदर दिखे, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा जाता है कि हमारे आसपास जो कचरा जमा होता है कौन उसे साफ करता है। ज्यादातर लोग तो यही मानकर चलते हैं कि किसी और की जिम्मेदारी है और वो ही सफाई करेगा। लेकिन हमारे बीच कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपनी सोच से हमें बहुत प्रेरित करते हैं। मुझे मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा की कुछ बहनों के बारे में जानने का अवसर मिला। उन्होंने अपने आसपास फैले प्लास्टिक कचरे को हटाने का संकल्प लिया। ये नहीं सोचा कि कोई आकर बदलाव लाएगा। उन्होंने खुद शहर भर से प्लास्टिक कचरा और खाली बोतलें इकट्ठा करना शुरू किया। धीरे धीरे ये प्रयास आगे बढ़ता गया और फिर उस प्लास्टिक को इको ब्रिक्स में बदला जाने लगा। आज इन्हीं इको ब्रिक्स का उपयोग सार्वजनिक स्थानों को सुंदर बनाने में किया जा रहा है। राजगढ़ में पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों किलो प्लास्टिक को रिसाइकल करके उनका बेहतर उपयोग किया गया है। यानी जो प्लास्टिक पहले शहर में प्रदूषण फैलाता था, आज वही इन बहनों के प्रयास से शहर की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे रहा है। मैं ब्यावरा की सभी बहनों और इस अभियान से जुड़े साथियों को बधाई देता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे कई लोगों ने पत्र लिखकर एक खास विषय पर बात करने का सुझाव भेजा है। ये विषय गणेश उत्सव से जुड़ा है। वैसे तो गणेश उत्सव में अभी काफी समय बाकी है, लेकिन लोगों ने ये आग्रह किया है कि इस विषय पर अभी ही बात होनी चाहिए। दरअसल गणेश जी की मूर्तियां बनाने का काम बहुत पहले शुरू हो जाता है। मूर्ति बनाने वाले, मूर्तियों के व्यापार से जुड़े लोग अभी से सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए मेरा आप सभी से एक आग्रह है, आप प्रयास करें कि आपके घर, सोसाइटी या आसपास की जगहों पर गणपति बप्पा की जो मूर्ति स्थापित हो वो हमारे देश की मिट्टी से बनी हो। वो हमारे अपने कुम्हारों और स्थानीय कलाकारों के हाथों तैयार हुई हो। जो लोग गणेश जी की मूर्तियां बनाते हैं उनसे भी मेरा आग्रह है कि वे मिट्टी की मूर्तियों को प्राथमिकता दें, और जो लोग मूर्तियां खरीदते हैं वे भी यह जरूर देखें कि गणपति बप्पा की मूर्ति किससे बनी है और किस देश में तैयार हुई है। प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी मूर्तियां बिल्कुल न खरीदें। साथियों, मिट्टी की मूर्तियां पूजा के बाद सहज रूप से पानी में विलीन हो जाती हैं। इससे हमारी नदियां, तालाबों और पर्यावरण की रक्षा होती है, हमारी आस्था भी बनी रहती है और प्रकृति के प्रति हमारा दायित्व भी पूरा होता है। जब हम स्थानीय कारीगरों से मूर्ति खरीदते हैं, हम वोकल फॉर लोकल के संकल्प को मजबूत करते हैं। मुझे विश्वास है इस बार गणेश उत्सव में और ऐसे हर उत्सव में हम ऐसी सारी बातों पर जरूर गंभीरता से सोचेंगे।

0: और देश हित में कदम भी उठाएंगे। साथियों, हमारे देश की सबसे बड़ी शक्ति हमारे देश के लोग हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रहे छोटे बड़े प्रयास हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। ये प्रयास बताते हैं कि जब मन में संकल्प हो और समाज का साथ मिले तो कोई भी बड़ा बदलाव लाया जा सकता है। आप अपने आसपास हो रहे ऐसे प्रयासों के बारे में मुझे जरूर लिखते रहिए, अपने विचार और अपने सुझाव भेजते रहिए। हो सकता है आपके आसपास की कोई छोटी सी पहल पूरे देश के लिए प्रेरणा बन जाए। अगले महीने हम फिर मिलेंगे, देशवासियों के कुछ नए प्रयासों की चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए, और हाँ, जल संचय तो करना ही करना है। बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है। कैच द रेन, ये अभियान जरा भी ढीला नहीं होने देना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
1: मन की बात आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने मन की बातें साझा कर रहे थे। हम आपको बता दें कि माननीय प्रधानमंत्री के इस प्रसारण के बाद मन की बात के क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से तथा संस्कृत भाषा में अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज और FM गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर अभी किया जाएगा। मन की बात के क्षेत्रीय भाषाओं का पुनः प्रसारण आज रात 8 बजे आकाशवाणी के संबद्ध प्रादेशिक केंद्रों से और अंग्रेजी अनुवाद का प्रसारण FM रेनबो 102.6 मेगाहर्ट्ज पर किया जाएगा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मन की बात का संस्कृत अनुवाद।
3: मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे पुनरेकवारं भवद्भिः सह मिलित्वा अहमत्यन्तम् आनन्दम् अनुभवामि। 26,000 वर्षस्य अर्धवर्षं प्रायः समाप्तमेव। एतेषु षण्मासेषु वयं मन की बात इत्येतस्मिन् कार्यक्रमे देशवासिनां नैकासाम् उपलब्धीनां चर्चां कृतवन्तः। जून मासेपि देशेन एतादृश्यः उपलब्धयः प्राप्ताः याः प्रत्येकं देशवासिनं गर्वेण पूरयन्ति। एताः सफलताः देशस्य सुरक्षया आत्मनिर्भरतया च सह सम्बद्धाः सन्ति। अचिरादेव अहं कोलकातायां नौसेना सम्बद्धे एकस्मिन् कार्यक्रमे सहभागस्य अवसरं प्राप्तवान्। तत्र INS दूनागिरि, INS संशोधक, INS अग्रय इत्येते पोताः भारतीय नौसेनायाः रक्षक दले सम्मिलिताः। एतेषां पोतानां संरचना निर्माणं चापि सर्वं स्वदेशीयमस्ति। सखायः जून मासे एव विमानन क्षेत्रे अपि देशेन एका महती सफलता अर्जिता। C-295 इति विमानं भारते निर्मितमस्ति, अपि च C-295 इत्येतत् विमानं सर्वप्रथमोड्डयनं पूर्णं कृतवत्। एतादृशानि 40 संख्याकानि विमानानि भारते एव निर्मीयन्ते। अनेन MSME इत्येतेभ्यः उद्यमेभ्यः विमानक्षेत्राय च नूतनशक्तिः प्राप्यते, वृत्तेः अवसराः वर्धन्ते, आत्मनिर्भरभारतस्य च सङ्कल्पः अपि सुदृढः भवति। अस्मिन्नेव मासे DRDO इत्येतेन रक्षानुसन्धान विकास सङ्घटनेन लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल इत्येतस्य प्रक्षेपास्त्रस्य सफलं परीक्षणं कृतम्। एतत् प्रक्षेपास्त्रं DRDO इत्येतस्य संघटनस्य प्रयोगशालाः अथ भारतीयोद्योग सहभागिनः मिलित्वा निर्मितवन्तः। अर्थात् साम्प्रतं समुद्रात् आकाशपर्यन्तम् अस्माकं भारतं समधिकं सुरक्षितं आत्मनिर्भरं च भवति। सखायः जून मासे एकम् अपरम् आयोजनम् अभवत् यस्मिन्

0: मन की बात का संस्कृत अनुवाद सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
2: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई है। C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
1: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रय का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
2: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
1: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
2: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय सहयोग की व्यापक समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। श्री मोदी आज सेशल्स की राष्ट्रीय असेंबली को भी संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय से मुलाकात करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रोशकमन में राष्ट्रीय दिवस समारोह में शामिल होंगे। समारोह में भारतीय रक्षा बलों का दल और भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत भी भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जाँच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी हैं। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री मोदी ने कहा कि श्री राव ने देश की प्रगति में अमूल्य योगदान दिया। रक्षा मंत्री ने उन्हें दूरदर्शी नेता और प्रख्यात राजनेता बताया। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। उधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: 7.7 MHz पर आप सुन रहे हैं FM शिमला।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
2: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गाँव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
3: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
5: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
4: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
5: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है, और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
0: FM शिमला पर यह समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं बॉर्डर 2 फिल्म का ये गीत।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दें सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: आशाएं ऐसी हो जो मंजिल तक ले जाएं और मंजिल ऐसी हो जो जीवन सिखा दे। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। तो बहनों स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है आपका आज के इस महिला सम्मेलन कार्यक्रम में। आज के इस सफ़र में मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो सखी दीपिका
1: और मैं प्रोमिल।
0: आप सभी को हमारा नमस्कार।
1: बहनों, खुश रहने के लिए बहुत कुछ पाने की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जो मिला उसे दिल से अपनाने की ज़रूरत होती है। इसी तरह से जीवन में मिली सफलता भी हमें खुशी प्रदान करती है।
0: जी बहनों, हर इंसान यही चाहता है कि उसका जो जीवन है ना वो बेहतरीन हो, यानी जीवन में सुख, सफलता और संतोष प्राप्त करना। और एक बेहतरीन जीवन केवल धन, प्रसिद्धि या भौतिक सुविधाओं से नहीं बनता, बल्कि अच्छे संस्कारों, विचारों, स्वस्थ आदतों और सही मूल्यों पर आधारित होता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। बहनों, अगर जीवन की नींव या फिर आधार मजबूत हो तो व्यक्ति हर परिस्थिति का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकता है।
0: जी,
1: इसलिए ये जानना बहुत ही जरूरी है कि जीवन का आधार किन बातों पर टिका होता है।
0: जी बिल्कुल सही कहा प्रोमिला आपने। तो बहनों, सबसे पहले तो आपका स्वस्थ होना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्वास्थ्य एक बेहतर जीवन का आधार माना जाता है। स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन के बिना किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन हो जाता है।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और पर्याप्त नींद मानसिक रूप से हमें मजबूत बनाता है और स्वस्थ व्यक्ति जीवन की चुनौतियों का सामना भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर सकता है, जो पूरी तरह से मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति होगा।
0: जी आपने बिल्कुल सही कहा प्रोमिला, क्योंकि देखिए ना, दूसरा इसका जो महत्वपूर्ण आधार है ना वो है शिक्षा और ज्ञान। शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं होती, बल्कि ये हमें सही और गलत में अंतर करना सिखाती है।
1: जी बिल्कुल सही। और देखिए, ज्ञान हमारी सोचने समझने की क्षमता को बढ़ाता है और जीवन में सही निर्णय लेने में भी हमारी मदद करता है। एक शिक्षित व्यक्ति समाज और देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देता है।
0: जी, और इसी के साथ बहनों, अच्छे संस्कार और नैतिक मूल्य भी एक बेहतरीन जीवन की मजबूत नींव है। ईमानदारी, अनुशासन, दया, सम्मान और जिम्मेदारी जैसे गुण व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाते हैं। अच्छे संस्कार हमें दूसरों के साथ बेहतर संबंध बनाने और समाज में सम्मान पाने में सहायता करते हैं।
1: जी बिल्कुल सही। और इसके साथ ही बहनों, जीवन में सकारात्मक सोच का होना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जीवन में कठिनाइयां तो सबके आती हैं।
0: जी,
1: और कई बार हमें असफलता भी मिलती है, लेकिन अगर हमारी सोच पॉजिटिव होगी, सकारात्मक होगी ना, तो हम किसी भी विपरीत परिस्थिति में भी हम बिल्कुल दृढ़ खड़े रहेंगे और किसी भी मुसीबत का सामना करने में सक्षम होंगे।
0: बिल्कुल। और बहनों, परिश्रम और आत्मविश्वास भी सफलता की कुंजी है। बिना मेहनत के कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकता। हम सभी इसी बात को अच्छे से जानते हैं कि मेहनत तो हमें करनी ही होगी। और अगर आत्मविश्वास की बात करें तो आत्मविश्वास हमें अपनी क्षमताओं पर विश्वास करना सिखाता है और कठिन परिस्थितियों में भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देता
1: जी,
0: है।
1: जी, और दीपिका, इसके साथ ही एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, हमारे आपसी संबंध, है ना?
0: बिल्कुल।
1: हमारे आपसी मित्रों के साथ हमारे संबंध, परिवारजनों के साथ हमारे संबंध कैसे हैं, उन सभी के सहयोग से हमारा जीवन और सुखद बनता है। तो अपने परिवार और मित्रों के साथ भावनात्मक रूप से जब हम जुड़ते हैं और मजबूत बनते हैं ना, तो हम किसी भी रिश्ते को बहुत ही आसानी से निभा सकते
0: जी,
1: हैं।
0: जी, और कहते हैं ना कि अगर रिश्ते मजबूत होंगे, हमारे संबंध अच्छे होंगे, तो हम अंदर से खुश रहते हैं। और
1: जी,
0: हम जब अंदर से खुश होते हैं तो सफलता हासिल करने में हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। यानी कह सकते हैं कि एक बेहतरीन जीवन की जो नींव है वो अच्छे स्वास्थ्य, शिक्षा, नैतिक मूल्यों, सकारात्मक सोच, परिश्रम और आत्मविश्वास पर आधारित होती है। और अगर हम इन सभी गुणों को अपने जीवन में अपनाएं तो हम ना केवल स्वस्थ

0: बल्कि एक संतुष्ट, खुशहाल और सार्थक जीवन जी सकते हैं।
1: जी, और बहनों इसी के साथ एक और चीज़ है जिसका हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, वो है मनोरंजन।
0: जी, ये तो बहुत ही ज़रूरी है।
1: जी, तो चलिए बहनों का भी मनोरंजन करवाते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।
0: आइए सुनते हैं।

0: पहनो, कहते हैं ना कि जीवन में अगर हमें सफल होना है तो हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, और अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें योग का सहारा लेना होगा, योग के बारे में जानना होगा, योग कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि देखिए ना, योग भारत की प्राचीन और अमूल्य धरोहर है। ये केवल शरीर को स्वस्थ रखने का माध्यम नहीं बल्कि मन बुद्धि आत्मा को भी संतुलित करने का सही तरीका है
1: जी। और आज की तेज रफ्तार और तनावपूर्ण जीवन शैली में योग का महत्व पहले से और ज्यादा बढ़ गया
0: जी,
1: है ना?
0: बिल्कुल, क्योंकि सभी लोग अब योग के बारे में जागरूक हो गए हैं और इसके महत्व को समझने लग गए हैं।
1: बिल्कुल।
0: और देखिए ना, जब बहुत सारे लोग किसी पार्क, विद्यालय, गाँव या किसी सार्वजनिक स्थान पर एक साथ मिलकर योग करते हैं तो उसे सामुदायिक योग कहा जाता है। यानी कि आज हम आपको सामुदायिक जो योग है उसके क्या क्या फायदे होते हैं, उसका महत्व क्या है, उसके लाभ क्या है, उसके बारे में बताएंगे
1: जी। बिल्कुल, देखिए सार्वजनिक योग केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य, एकता और खुशहाली को भी बढ़ाता है। और अगर हम आपसे बात करें सामुदायिक योग की कि उसके लाभ क्या है, तो बहनों उसके बहुत सारे लाभ है
0: जी। क्योंकि सामुदायिक जब नाम आ जाता है ना प्रोमिला, तो अपने आप में ही सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि जहाँ पर सारे लोग मिलकर कोई चीज़ करते हैं मज़ा तो आएगा ही, है ना
1: जी। बिल्कुल।
0: और सामुदायिक योग का सबसे बड़ा लाभ ये है कि इससे शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है, और नियमित योग करने से शरीर में एक तो लचीलापन आता है और हमारी मांसपेशियां मजबूत होती है और शरीर में ऊर्जा बनी रहती है। क्योंकि अगर हम नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं, योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो शरीर की अकड़न तो अपने आप से ही समाप्त हो जाती है
1: जी। बिल्कुल, है ना? और देखिए योग करने से हमारा मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। आज के समय में जब तनाव, चिंता जैसी ये जो गंभीर समस्या है ना, ये बहुत तेजी से बढ़ रही है
0: जी।
1: तो ऐसे में योग और प्राणायाम मन को शांत करते हैं, और जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर योग करते हैं ना, तो देखिए वहाँ का वातावरण में अपने आप ही एक सकारात्मक जो भाव होता है वो आ जाता है, जिससे हमारा आत्मविश्वास भी बढ़ता है और हमें जो तनाव है वो भी हमारा तनाव कम होता है।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं ना, तो मान लीजिए कि हम स्वस्थ ही हैं। और सामुदायिक योग एक दूसरे को करीब लाता है। जब अलग अलग आयु और भाषा के लोग एक साथ मिलकर योगा करते हैं ना, तब वे एक दूसरे को ज़्यादा समझते हैं और एक दूसरे का ज़्यादा सम्मान भी करते हैं। और प्रोमिला, जब हम लोग जिस एज में हम हैं और हमसे बड़े लोग हमारे साथ कोई काम करते हैं तो बहुत मज़ा सा आता है। क्यों? क्योंकि उनका एक अपना एक्सपीरियंस होता है, उनकी अपनी बातें होती है, तो ये बड़े छोटे का जो मेल होता है ना, बहुत ही मज़ेदार होता है।
1: बिल्कुल। और देखिए सामुदायिक योग इसलिए भी दीपिका ज़रूरी है ना, क्योंकि कई बार क्या होता है, चाहे हम है चाहे कोई और भी है, कई बार अकेलापन हमें लगता है कि अकेले क्या योगा करना है, अकेले क्या सैर पे जाना। लेकिन जब आपको पता है कि हम बहुत सारे लोग मिलकर योगा करेंगे या अपने स्वास्थ्य के लिए हम जो चिंता होती है उसका हम सुलझाने की कोशिश करेंगे, उन समस्याओं को जो हमें स्वास्थ्य संबंधी होती है, तो एकाएक हमारे मन में भी, मतलब कहते हैं कि हम भी प्रेरित होते हैं कि हमें भी वहाँ जाना है, हमें भी योगा करना
0: रूटीन है। रूटीन की बात है, यानी कि एक रूटीन बन जाता है। क्योंकि हम घर पे अगर योग करेंगे तो आज हमारे पास टाइम नहीं है तो हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन जब इस तरह से हमारा एक समय बंधा होगा कि हमें वहाँ पर जाना है, तो वो रूटीन, जैसे खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या कोई भी हम काम करते हैं, उसी तरह से योग का भी एक रूटीन बन जाएगा। तो ये रूटीन बहुत ज़रूरी है
1: जी। और देखिए अनुशासन और समय पाबंदी नियमित योग अभ्यास के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अब सामुदायिक योग में लोग तय समय पर एक स्थान पर इकट्ठे होते हैं योग के लिए, है ना, तो इस तरह से उन्हें समय का महत्व भी समझ आता है और अनुशासन भी उनके अंदर विकसित होता है कि हमें सही समय पर वहां पहुंचना है योग के लिए
0: जी। ये आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि बहुत जरूरी है एक साथ योगा करना और योग

0: योग केवल आसनों तक ही सीमित नहीं है, ये संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद और सकारात्मक सोच की शिक्षा भी देता है। और इसके साथ लोग अच्छी आदतों को अपनाने में भी ये हमें प्रेरित करता है, यानी कि इसके फायदे ही फायदे हैं, लाभ ही लाभ हैं।
1: जी, देखिए बात करें युवाओं की, तो युवाओं को आजकल पढ़ाई की चिंता होती है, प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है उनकी चिंता होती है, अपने कैरियर की चिंता भी होती है ना, करियर की। तो अगर वो योग करते हैं ना तो तनाव से दूर रहते हैं, और उनमें जो उनका आत्मविश्वास है वो भी योग से बढ़ता है, और इससे वो क्या होता है कि वो अपने लक्ष्य को अधिक उत्साह और ऊर्जा के साथ प्राप्त कर सकते हैं अगर वो योग का सहारा लेते हैं।
0: बिल्कुल सही। बढ़ती उम्र में शरीर कमज़ोर होने लगता है बहनों, सभी के साथ ये होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है कोई ना कोई दिक्कत आती ही जाती है। तो नियमित योग करने से शरीर एक तो तंदुरुस्त रहता है, और दूसरा जोड़ों का जो दर्द है वो भी कम होता है, और जब हम स्वस्थ होंगे तो हमें मानसिक शांति भी मिलेगी। यानी कि एक योग करने से इतने सारे फायदे होते हैं ना, हर तरह की परेशानी चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो, हर तरह से ये हमें हमारा उपचार ही करता है।
1: जी, तो बहनों सामुदायिक योग केवल एक व्यायाम नहीं बल्कि स्वस्थ, सुखी और समृद्ध समाज की ओर बढ़ने का एक माध्यम है। ये शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखता है।
0: बिल्कुल, और बहनों स्वस्थ व्यक्ति से स्वस्थ परिवार बनता है, स्वस्थ परिवार से स्वस्थ समाज बनता है, और स्वस्थ समाज से एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है।
1: जी।
0: तो हम चाहेंगे कि हमारी बहनें भी योग का सहारा लें और वो स्वस्थ रहें, और स्वस्थ रहने के साथ साथ हमारे गीत का भी आनंद लें।
1: जी,
0: तो चलिए सुनवाते हैं बहनों को ये गीत।

0: तो बहनों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अब तकनीक से जुड़ी कुछ बात कर ली जाए।
1: बिल्कुल। तो बहनों, आज का युग तकनीकी युग है, तो ऐसे में इससे जुड़ी हर जानकारी जो हम सभी के लिए ज़रूरी है हमें मालूम होनी चाहिए और हमें उसके बारे में अच्छे से पता भी होना चाहिए।
0: बिल्कुल बहनों, अगर फ़ोन की ही बात कर ली जाए ना, तो फ़ोन केवल बातचीत का ही साधन नहीं रह गया, बल्कि ये हमारी निजी जानकारी, बैंकिंग डिटेल्स, फ़ोटो, दस्तावेज और कई महत्वपूर्ण डेटा का जो संग्रह बन चुका है। इसलिए अब फ़ोन में मौजूद डेटा को सुरक्षित रखना हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है।
1: जी, और ऐसे में हम अगर सावधानी नहीं बरतते हैं ना, तो हमारी निजी जानकारी या तो चोरी हो जाती है या फिर गलत हाथों में भी जा सकती है।
0: जी, तो बहनों, अगर हमें इन चीज़ों से बचना है तो हमारे लिए फ़ोन में मौजूद डेटा को सुरक्षित रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए सबसे पहले तो हमें अपने फ़ोन में मजबूत पासवर्ड या पिन का उपयोग करना चाहिए।
1: जी, और देखिए, आसान पासवर्ड कई लोग रख देते हैं ना, जैसे 1 2 3 4 5 रख लिया, या आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि अपनी डेट ऑफ बर्थ का ही जो जन्म तिथि होती है ना, उसका भी पासवर्ड रख देते हैं।
0: जी,
1: तो बहनों, आपको ऐसा करने से रोकना चाहिए, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 जो हमें गिनती रखते हैं पासवर्ड, या जो हमारी जन्म तिथि है, कई बार दूसरों को पता होती है ना। तो इसके साथ ही आप अपनी फिंगरप्रिंट और फेस लॉक जैसी सुविधा जो आपको दी गई है उसका उपयोग करके भी आप अपने फ़ोन को सुरक्षित रख सकते हैं, ताकि दूसरा व्यक्ति आपके फ़ोन को आसानी से ना खोल सके।
0: जी बिल्कुल। और बहनों, दूसरा उपाय है कि हमेशा भरोसेमंद ऐप्स ही आप डाउनलोड करें। कई बार लोग अनजान वेबसाइटों या लिंक से ऐप डाउनलोड कर लेते हैं जिनमें वायरस या मेलवेयर हो सकता है, इसलिए ऐप्स हमेशा गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर जैसे आधिकारिक प्लेटफॉर्म से ही डाउनलोड करने चाहिए। मतलब जो भी आपका फ़ोन है, जिसमें भी जैसे भी उसमें डाउनलोड होती है, उसी ऐप से आपको उसे डाउनलोड करना चाहिए।
1: जी, और इसी के साथ फ़ोन के सॉफ्टवेयर और ऐप्स को समय समय पर आप अपडेट अवश्य करें, क्योंकि कंपनियां नए अपडेट में सुरक्षा से जुड़ी कमियों को ठीक करती रहती है। और अगर आपने फ़ोन अपडेट नहीं किया है तो इससे हैकर्स कमजोरियों का फ़ायदा उठा सकते हैं और आपको इससे नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए जब भी आपको फ़ोन में अपडेट की कोई भी नोटिफिकेशन आए,
0: जो भी आए
1: तो उसको अपडेट अवश्य करें।
0: जी, और ऐसे ही हमें सार्वजनिक वाईफाई, जैसे हम कहीं पर भी चले जाते हैं और वहाँ पर हम किसी और वाईफाई का इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा करते समय भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। फ्री वाईफाई नेटवर्क पर बैंकिंग या महत्वपूर्ण अकाउंट लॉगिन करने से डेटा चोरी होने का खतरा रहता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे फ़ोन का

0: वाईफाई या कुछ भी चल रहा है, हमारे पास डेटा है तो नेट है, तो हमें कहीं पर भी किसी भी वाईफाई का इस्तेमाल नहीं करना
1: जी
0: चाहिए।
1: बिल्कुल। और इसी के साथ ही बहनों, फ़ोन में जो मौजूद ज़रूरी चीज़ें जैसे आपकी फ़ोटो है, वीडियो है या फिर दस्तावेज़ होते हैं, तो उनको क्लाउड स्टोरेज या फिर कंप्यूटर में सुरक्षित रखें, ताकि अगर आपका फ़ोन कभी ख़राब हो भी जाए तो आपका सारा जो डेटा है वो सुरक्षित रहे।
0: जी, और कभी भी किसी अनजान लिंक, मैसेज या फिर ईमेल पर क्लिक नहीं करना चाहिए। हमेशा सतर्क रहना चाहिए और संदिग्ध संदेशों से हमें बचना चाहिए।
1: जी, और इसके साथ ही दीपिका, हम हमेशा बहनों को बताते ही हैं कि कभी भी OTP शेयर ना
0: नहीं
1: करें,
0: करना चाहिए,
1: है ना, क्योंकि OTP के द्वारा भी जो हैकर्स होते हैं वो आपकी सारी जानकारी ले सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए किसी भी अनजाने व्यक्ति को अपना OTP कभी भी ना बताएं।
0: जी, और बहनों, बताने का उद्देश्य यही रहता है कि कई गलती तो इंसान से हो ही जाती है, कई बार गलती हो जाती है, इसीलिए ये जागरूकता बहुत ज़रूरी है। तो बहनों, थोड़ी सी सावधानी और सुरक्षा उपाय अपनाकर हम अपने फ़ोन के डेटा को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि डिजिटल दुनिया में सुरक्षित रहना आज हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बन गया है। इसीलिए सावधान रहें और सतर्क रहें।
1: जी, तो बहनों, ये तो हुई बातें फ़ोन से जुड़ी जानकारी की कि आप कैसे अपना जो डेटा है उसको सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन दीपिका, देखिए बहनों का कुछ मनोरंजन भी मुझे लगता है कि हमें करवाना चाहिए।
0: जी,
1: तो बहनों को सुनवाते हैं ये गीत।
0: जी।

0: तो बहनों देखिए, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और चलते चलते बहनों को कुछ स्वास्थ्य से जुड़े उपाय बता दें जो हम सभी के लिए ही ज़रूरी है।
1: जी बिल्कुल। और देखिए, स्वस्थ रहना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा स्वास्थ्य हमें खुशी तो देता है, साथ ही साथ हमें ऊर्जावान और आत्मविश्वासी भी बनाता है। और यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम अपने सभी कार्य अच्छे से कर सकते हैं। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए कुछ सरल सी आदतें हैं, अगर आप इनको अपने जीवन में इनको अपनाते हैं ना, तो आप हमेशा स्वस्थ भी रहेंगे और खुश भी रहेंगे।
0: बिल्कुल। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले संतुलित आहार लेना बहुत ही ज़रूरी है। भोजन में हमें हरी सब्जियां, फल, दालें और अनाज को शामिल करना ही चाहिए। और जंक फूड, अधिक तेज़ मसाले वाला भोजन, या फिर अगर हम कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर लें तो इनका सेवन कम से कम करें। और भोजन हमेशा सही समय पर करें और नाश्ता कभी ना छोड़ें, यानी कि जो सुबह का खाना होता है हमें लेना ही लेना है।
1: जी। और इसके साथ ही देखिए बहनों, पर्याप्त पानी पीना भी बहुत ज़रूरी है। पानी हमारे स्वास्थ्य के साथ साथ हमारी त्वचा के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है और ये हमारे शरीर को हाइड्रेट करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति को दिन में कम से कम 8 से 12 गिलास पानी अवश्य पीना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और इसी के साथ बहनों, पर्याप्त नींद लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है। और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हमें ज़रूर लेनी चाहिए। एक तो ये हमारे शरीर के लिए भी बहुत ज़रूरी है और दूसरा ये भी है प्रोमिला, कि जब हम नींद अच्छी नहीं लेते हैं ना, तो पूरा दिन हमें सुस्ती सी रहती है और हमें ऐसा होता है ना, फ्रेश हम अपने आप को फील नहीं करते हैं ना।
1: आप सही कह रही है, क्योंकि देखिए चिड़चिड़ापन भी रहता है
0: और हमारा जो फेस होता है ना, वो मुरझाया सा रहता है, तो वो सामने से दिखाई देता है, वो भी एक चीज़ है, और अंदर से वो हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से भी नींद बेहतर ही है।
1: जी। और देखिए बहनों, हम ये कहेंगे कि खुश रहने के लिए या तंदुरुस्त रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं ना, तो थोड़ा सा समय आप अपने लिए अवश्य दें।
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि दीपिका क्या है ना, हमारी बहनें सुबह से शाम तक अपने घर में परिवार वालों की चिंता में रहती हैं, उनकी देखभाल करती रहती है, लेकिन अपने लिए उनके पास समय ही नहीं है। तो इसलिए बहनों, अपनी बिजी दिनचर्या से, व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा सा समय अपने लिए ज़रूर निकालें। अपने खुशी के लिए उस समय को अपने हिसाब से आप जिए,
0: यानी कुछ समय खुद का हमारे लिए अपने लिए होना ही चाहिए। ये भी एक खुशी का बहुत बड़ा माध्यम है। तो ये तो बहुत ही ज़रूरी है बहनों, सबसे बड़ा उपाय है खुश रहने के लिए और स्वस्थ रहने के लिए। और अगर हम बात करें कुछ ऐसे उपायों की जिन्हें हमें करना है, तो वो है, अगर आप खाली पेट गुनगुने पानी में नींबू और शहद मिलाकर पीते हैं, तो इससे आपकी जो पाचन क्रिया है वो भी सही रहेगी और आप स्वस्थ भी रहेंगे। यानी कि कहते हैं ना कि हमारा जो स्वास्थ्य है हमारे पेट से जुड़ा होता है, और अगर हमारा पेट ठीक है, हमारा पाचन ठीक है, तो आधी बीमारी तो अपने आप ही समाप्त हो जाती है।
1: जी। तो बहनों, स्वस्थ रहने का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि अच्छी आदतें और संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम करना और हमारी पॉजिटिव सोच ही हमारी स्वास्थ्य की असली कुंजी है। और अगर हम इन सभी बातों पर ध्यान देना, तो हम लंबे समय तक स्वस्थ, प्रसन्न और सफल जीवन जी सकते हैं।
0: जी। और बहनों, ये हम सब जानते ही हैं कि अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे बड़ी पूंजी है, इसीलिए हमें इसकी हमेशा देखभाल करनी चाहिए। तो आप हमेशा स्वस्थ रहें और कोशिश करते रहें अपने आप को स्वस्थ रखने की, और हम कोशिश करते रहेंगे आपको और भी बेहतर जानकारी देने की और साथ ही साथ आपका मनोरंजन भी करवाने की। तो बहनों को गीत सुनवा दें।
1: जी।
0: तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: महिला सम्मेलन, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जून के महीने में स्वदेशी C295

0: विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि इससे रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।
1: एविएशन सेक्टर में भी देश ने एक बड़ी सफलता पाई। C-295 यह विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों दूनागिरी, संशोधक और अग्रह का जलावतरण किया गया। ये तीनों युद्धपोत डिजाइन से लेकर निर्माण तक पूरी तरह से स्वदेशी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जून के महीने में ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने जमीन से हमले के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। उन्होंने कहा कि भारत समुद्र से लेकर आकाश तक लगातार अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बनता जा रहा है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की, जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार यह आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच सेशेल्स की राजधानी विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता जारी है। दोनों नेता भारत सेशेल्स संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा और क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। इससे पहले स्टेट हाउस में प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे और भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। इसके बाद वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति, 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फॉरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग ने असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में आज मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी, काराईकाल, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह में अगले 2 दिन में तेज बारिश का अनुमान है। किदांबी श्रीकांत US ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। लंदन के लॉर्ड्स में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। इधर बेलफास्ट में पुरुष T20 क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. Prime Minister Narendra Modi has highlighted that India achieved major success in the aviation

हर गीत के बोल लय ताल हमें ले जाती हैं कुछ मीठी सी यादों में, जो हमें भूला हुआ ही सही पर प्यारी सी मुस्कान हमारे चेहरे पर दे जाती है।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जानें।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

यादों और बातों का एक अलग ही रिश्ता है। कभी मीठी यादें होठों पर मुस्कान लाती हैं तो कभी बीती बातें दिल को उदास कर जाती हैं, और इन दोनों में जो तालमेल बनाते हैं वो है

वो कुछ बातें, वो हंसी के पल जब भी याद आते हैं तो हर गम दूर लगने लगता है। जो गुजर गए हैं पल वो खास तो बहुत थे, पर जब से तुम मिले हो आने वाला हर एक पल और भी बेहतरीन बन गया है।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थान में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

इसी गीत के साथ म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम में आज बस इतना ही। वन जीरो थ्री पॉइंट सेवन मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। दोपहर के 2 बज चुके हैं और आप जानते ही हैं एफएम शिमला पर यह समय रहता है सब रंग कार्यक्रम का। जी हाँ, इंद्रधनुष के रंगों की तरह रंगा है कार्यक्रम सब रंग। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं अभिजीत के गाए इस गीत के साथ। आप यूं ही बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

चल रहा है रंगों में एक रंग सब रंग कार्यक्रम FM शिमला पर, तो आइए अब सुने टप्पे सुरेश वाडिकर, मीनू पुरुषोत्तम और यास्मीन की आवाजों में।

0: इसी गीत के साथ सबरंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दोपहर के 2:15 होने को हैं। समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। अमेरिका और ईरान के बीच नए

0: सैन्य हमलों से पश्चिम एशिया में सुरक्षा स्थिति बिगड़ी और लंदन में महिला T20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि जून महीने में स्वदेशी C-295 विमान की पहली उड़ान के साथ ही भारत ने विमानन क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है।
1: C-295 ये विमान मेड इन इंडिया है और C-295 विमान ने अपनी पहली उड़ान पूरी की है और ऐसे 40 विमान भारत में ही बनाए जा रहे हैं। इससे MSME और एरोस्पेस सेक्टर को नई शक्ति मिल रही है। आज समुद्र से लेकर आकाश तक हमारा भारत अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है।
0: श्री मोदी ने कहा कि इसी महीने कोलकाता में 3 युद्धपोतों का जलावतरण किया गया और DRDO ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया है।
1: कोलकाता में INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय को भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल किया गया। इन शिप्स की डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग तक सब कुछ स्वदेशी है। इसी महीने DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया है। इसको DRDO की लेबोरेटरी और इंडियन इंडस्ट्री पार्टनर्स ने मिलकर बनाया है।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा की जिसे दुनिया भर में मनाया गया। इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक जगहों पर हुआ। भारत में करोड़ों लोगों ने योग दिवस में भागीदारी की। श्री मोदी ने अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप में पदक विजेता एथलीटों को बधाई दी।
1: विश्व योगासन चैंपियनशिप की भी बड़ी चर्चा हुई। इसमें भारत ने कुल 114 पदक जीते, इनमें 102 गोल्ड मेडल भी शामिल है। भारत इस चैंपियनशिप की पदक तालिका में पहले स्थान पर रहा।
0: प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में युद्ध के दौरान उनकी अपील पर देशवासियों के समर्थन और सहयोग के लिए आभार व्यक्त किया।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में पेठकर परिवार की चर्चा की जिसने लगभग 3,500 ग्रामीणों का दुर्घटना बीमा कराया है। इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को 1,00,000 रुपए का बीमा मिला है। श्री मोदी ने कहा कि ये भावना हृदय को छूने वाली है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार ने पीड़ित परिवारों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में अब तक 3,700 करोड़ रुपए से अधिक और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 22,000 करोड़ रुपए की सहायता दी है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल 1 साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2,00,000 रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2,00,000 रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि समाज में अंधविश्वास सदियों से गहरे बैठा हुआ है। श्री मोदी ने बताया कि असम में अशुभ माने जाने वाले हरगिला पक्षी को बचाने के लिए हजारों महिलाएं सामने आई हैं।
1: हरगिला एक दुर्लभ पक्षी है, ये प्रकृति को स्वच्छ रखने में अहम भूमिका निभाता है, लेकिन असम के कुछ इलाकों में लंबे समय तक इसे अशुभ माना जाता था। फिर एक बड़ा बदलाव शुरू हुआ, हजारों ग्रामीण महिलाएं हरगिला को बचाने के लिए आगे आई। आज उन्हें हरगिला आर्मी के नाम से जाना जाता है। इन महिलाओं ने समाज के साथ संघर्ष भी किया, समाज को समझाने के लिए दिन रात काम किया और अंधविश्वास को पीछे छोड़ करके रहे।
0: प्रधानमंत्री ने नागालैंड बेबी लीग और नागालैंड महिला फुटसल लीग की चर्चा की।
1: देश में

0: ऐसे युवाओं की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है जो खेल भी रहे हैं और खिल भी रहे हैं। अब कहीं अधिक युवा खेलों को कैरियर के रूप में अपना रहे हैं। नागालैंड के दो ऐसे प्रयासों के बारे में जानकारी मिली है। पहला प्रयास है नागालैंड बेबी लीग, जो उनके रफ्तार को और प्रतिभा के लिए उनको प्रेरित करती है। नागालैंड की विमेन फुटसल लीग हमारी बेटियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर दे रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय में शास्त्रार्थ की प्राचीन परंपरा को फिर से जीवित किया गया है।
0: नालंदा विश्वविद्यालय ने शास्त्रार्थ की हमारी प्राचीन परंपरा को फिर से जीवन किया है। दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनने और समझने की सीख भी इस शास्त्रार्थ की प्रक्रिया से मिलती है। मुझे खुशी है कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे अपने दीक्षांत समारोह का हिस्सा बनाया।
1: प्रधानमंत्री ने दिल्ली के केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रयास की चर्चा की।
0: जड़ों से जुड़े रहकर युवाओं को नई टेक्नोलॉजी के लिए तैयार करने का एक और अच्छा प्रयास हो रहा है। दिल्ली में स्थित सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस में बीटेक प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। ये आधुनिक टेक्नोलॉजी को भारत के पारंपरिक ज्ञान से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारतीय भाषाओं के लिए नए AI टूल्स तैयार करने में मदद मिलेगी।
1: श्री मोदी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति दुनिया भर में पहुंच रही है।
0: कैरिबियन सागर में डोमिनिकन रिपब्लिक नाम का एक देश है, वहाँ भारतीयों की संख्या करीब 100 है। भारतीय संस्कृति और अध्यात्म से जुड़ा एक बहुत अच्छा प्रयास वहाँ हो रहा है। वहाँ स्पेनिश बोलने वाले कुछ लोगों ने एक टीम बनाई है। इस टीम का नाम है ब्रह्म कमल डोमिनिकाना। टीम के सदस्य मिलकर वैदिक साहित्य का अध्ययन करते हैं। भारत से इतनी दूर रहकर हमारी परंपराओं को सीखने का उनका ये प्रयास बहुत प्रेरक है।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से गणेश उत्सव पर गणपति बप्पा की मिट्टी की मूर्ति को प्राथमिकता देने की अपील की। अंत में प्रधानमंत्री ने जल संरक्षण के संबंध में कहा कि वर्षा जल की एक एक बूंद को बचाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि कैच द रेन अभियान में ढिलाई नहीं होने देनी चाहिए। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हिंद महासागर की सुरक्षा और समृद्धि भारत और सेशेल्स की साझा जिम्मेदारी है। सेशेल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमाइनी के साथ विक्टोरिया में द्विपक्षीय वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े।
0: मेरी यात्रा ऐसे ऐतिहासिक अवसर पर हो रही है जब सेशल अपनी स्वतंत्रता के 50 वर्ष पूरे कर रहा है और हम भारत सेशल राजनयिक संबंधों की भी 50वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। इन 50 वर्षों की यात्रा में हमने मित्रता को विश्वास में, विश्वास को सहयोग में और सहयोग को जन कल्याण में बदला है। हिंद महासागर ने भारत और सेशल के संबंधों को सींचा है।
1: दोनों देशों के बीच कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान भी हुआ। सेशेल्स के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को उनके दूरदर्शी नेतृत्व तथा सतत विकास और जलवायु लचीलेपन के प्रति प्रतिबद्धता के लिए देश के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री मोदी आज सेशेल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित करेंगे, भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात करेंगे और राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने भारतीय नागरिकों को सलाह दी है कि वे सभी आवश्यक दस्तावेज होने पर ही कैलाश मानसरोवर यात्रा करें। मंत्रालय ने यह परामर्श उन भारतीय नागरिकों के सहायता अनुरोध के बाद जारी किया है जो निजी टूर ऑपरेटरों के माध्यम से चीन के लिए आवश्यक प्रवेश परमिट और बिना वीजा के नेपाल में फंस गए हैं। ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत भेजी गई भारतीय सहायता वेनेजुएला पहुंच चुकी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया कि फील्ड अस्पताल इकाई 30 टन राहत आपूर्ति,

0: 6 टन औषधि और चिकित्सा उपकरण वेनेजुएला में भूकंप के बाद जारी राहत प्रयासों को बढ़ावा देंगे। अमरीकी सेना ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर लगातार दूसरे दिन ईरान में कई ठिकानों पर हमले किए हैं। इससे दोनों पक्षों के बीच हुए संघर्ष विराम समझौते को लेकर अनिश्चितता की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका की सेंट्रल कमान ने कहा कि शुक्रवार को तेल से लदे एक व्यापारिक पोत किकू पर हुए हमले के जवाब में अमेरिका ने ईरान के सैन्य ढांचों, संचार प्रणालियों, वायुसेना के अड्डों, ड्रोन और बारूदी सुरंग बिछाने की क्षमताओं को निशाना बनाया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण को साकार करने में गांवों की मुख्य भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन में श्री चौहान ने कहा कि ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के योगदान सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: गांव केवल भारत का भूगोल नहीं है, भारत की आत्मा है, भारत की अर्थव्यवस्था है, भारत की अस्मिता है। गांव केवल बसाहट नहीं है, वे भारत की सभ्यता है, संस्कृति है, जीवन मूल्य है, परंपराएं हैं और समृद्धि के केंद्र रहे हैं। हमारी ताकत भी गांव है और हमारी संभावना भी गांव में। गांव हमारे लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई भी है और ये आज का सम्मेलन ग्रामीण समृद्धि का मंथन है।
0: पश्चिम बंगाल में कोलकाता के तारातला भवन हादसे की जांच तेज हो गई है। जादवपुर विश्वविद्यालय और आईआईटी खड़गपुर के विशेषज्ञों की टीमें आज घटनास्थल का निरीक्षण करेंगी। इससे पहले फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम भी मौके से नमूने एकत्र कर चुकी है। निर्माणाधीन गोदाम ढहने से हुए हादसे में अब तक 17 लोगों की मौत हो चुकी है। लंदन के लॉर्ड्स में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम 7 बजे भारतीय टीम अंतिम लीग मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगी। भारत ग्रुप में दूसरे और ऑस्ट्रेलिया पहले स्थान पर है। भारतीय टीम को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए ये मैच जीतना होगा। उधर बेलफास्ट में दूसरे टी20 पुरुष क्रिकेट मैच में आज शाम 6 बजे भारत का मुकाबला मेजबान आयरलैंड से होगा। 2 मैचों की श्रृंखला में आयरलैंड ने पहले मैच में भारत को 34 रन से हराया था। किदांबी श्रीकांत यूएस ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप के सिंगल्स के फाइनल में पहुंच गए हैं। श्रीकांत ने सेमीफाइनल में जापान के युदाई ओकिमोतो को हराया। अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी लगातार 7 विश्व कप मैचों में गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। आज अंतिम मुकाबले में अर्जेंटीना ने जॉर्डन को 3-1 से हराया। इसके साथ ही विश्व कप में उनके गोलों की संख्या 19 हो गई है। और अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, तेलंगाना, विदर्भ, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वदेशी रक्षा उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत समुद्र से लेकर आकाश तक अधिक सुरक्षित और आत्मनिर्भर बन रहा है। उन्होंने देश में निर्मित C-295 विमान की पहली उड़ान को बड़ी उपलब्धि बताया। आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने सोने की खरीदारी से बचने, विदेश यात्रा न करने और कार पूलिंग को बढ़ावा देने की उनकी अपील का समर्थन करने के लिए देशवासियों का आभार व्यक्त किया। भारत और सेशल्स ने विक्टोरिया में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद स्वास्थ्य, कृषि, वित्त और अंतरिक्ष सहित कई क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए। सरकार ने लोगों से सभी आवश्यक यात्रा दस्तावेजों के बिना कैलाश मानसरोवर यात्रा नहीं करने को कहा। और लंदन में महिला टी20 विश्व कप में भारत अंतिम ग्रुप मैच में ऑस्ट्रेलिया से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। दोपहर के 2:30 हुए हैं। एफएम शिमला पर यह समय है शिखरों के स्वर कार्यक्रम का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं प्रभा देवी के गाए इस लोकगीत को।

0: इसी लोकगीत के साथ कार्यक्रम शिखरों के सुर में आज बस इतना ही। आप यूं ही बने रहिए 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला के साथ।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। 3 बजने को हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
3: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला। अब प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ आप डीटीएच सेवा, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर और आकाशवाणी एफएम शिमला से भी सुन रहे हैं।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी भारत के लिए प्रसन्नता की बात रही है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अपील पर लोगों ने सोने की खरीद और विदेश यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल दिया है। उन्होंने इस सक्रिय सहयोग के लिए देशवासियों का आभार जताया है।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक स्थानों पर हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है।
1: सरकार देश के करोड़ों

0: परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
1: मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से जल संरक्षण का आह्वान भी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने आज सोलन जिला में कंडाघाट क्षेत्र में सकोड़ बूथ पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम देशवासियों को राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने इस सड़क में प्रत्येक किलोमीटर के लिए अलग अलग निविदाएं आमंत्रित करने और कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के संबंध में स्थानीय लोगों व विद्युत विभाग के साथ चर्चा भी की। मुख्यमंत्री ने इलाके में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों से प्रभावितों के राहत व पुनर्वास कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह भी किया। प्रदेश भर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जा रही है। इसके लिए पूरे प्रदेश में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 5,94,000 से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य है। आज खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को कल 29 और 30 जून को घर घर जाकर ये खुराक पिलाई जाएगी। सोलन में राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेले का आज अंतिम दिन है। मेले के तीसरे दिन आज महिलाओं की रस्साकस्सी प्रतियोगिता आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। इसके अलावा कबड्डी प्रतियोगिता ने भी लोगों का खूब मनोरंजन किया। राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में राज्य स्तरीय महिला ITI खेल प्रतियोगिता आज संपन्न हुई। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 11 जिलों की 400 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतिस्पर्धाओं में भाग लिया। समापन अवसर पर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने विजेता व उपविजेता टीमों को सम्मानित किया और चिट्टे के विरुद्ध शपथ दिलाई। उन्होंने कहा कि आज बेटियां हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चिकित्सा उपकरण नियम 2017 में संशोधन का प्रस्ताव रखा है। इसका उद्देश्य चिकित्सा उपकरणों के विनिर्माण लाइसेंस जल्द जारी करना और प्रक्रिया को आसान बनाना है। प्रस्ताव के अनुसार लाइसेंस जारी करने की समय सीमा कम की जाएगी, जबकि गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचार के बाद अब सुनिए सामयिक चर्चा। विषय है भारत के भविष्य को रफ्तार देती तकनीक। वाचक हैं राकेश शर्मा।
1: पिछले एक दशक में भारत की पहचान सिर्फ एक बड़े डिजिटल बाजार की नहीं रही, बल्कि वो दुनिया के सामने एक उदीयमान वैश्विक टेक पावर बनकर उभरा है। पहले जहां भारत को केवल इंटरनेट प्लेटफॉर्म्स और डिजिटल सेवाओं के एक विशाल उपभोक्ता के रूप में देखा जाता था, वहीं आज हमारा देश अपने डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, स्वदेशी नवाचारों और दमदार स्टार्टअप्स इकोसिस्टम के दम पर पूरी दुनिया में तकनीक की दिशा तय कर रहा है। सरकार के निरंतर निवेश ने देश की तकनीकी क्षमता को न केवल विस्तार दिया है, बल्कि दुनिया में भारत की विश्वसनीयता को भी मजबूत किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, सेमीकंडक्टर्स, क्वांटम टेक्नोलॉजी, सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और साइबर सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में चलाए जा रहे मिशन मोड अभियानों ने देश में इनोवेशन की एक नई लहर पैदा कर दी है। आज हमारा भरोसेमंद डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, समावेशी डिजिटल गवर्नेंस और बढ़ती ग्लोबल पार्टनरशिप भारत को दुनिया के सामने एक विश्वसनीय तकनीकी साझेदार के रूप में स्थापित कर रहे हैं। ये तमाम उपलब्धियां विकसित भारत 2047 के सपने की मजबूत नींव रख रही है और वैश्विक पटल पर भारत की भूमिका को और बुलंद कर रही है।

0: 12 वर्ष पहले देश ने विकसित भारत के संकल्प को सिद्ध करने के लिए तकनीक को अपना मुख्य आधार बनाने की एक दृढ़ यात्रा शुरू की थी। दीर्घकालिक नीतिगत समर्थन और रणनीतिक निवेश के बल पर ही आज भारत स्वदेशी तकनीकों, सुरक्षित डिजिटल सिस्टम और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी इनोवेशन इकोसिस्टम को विकसित करने में सक्षम हो सका है। भारत के इस बदलाव को राष्ट्रीय क्षमता विकास में किए गए बड़े निवेशों से जबरदस्त ताकत मिली है। इन सभी प्रयासों ने मिलकर देश के उभरते हुए क्षेत्रों में एक भविष्य के लिए तैयार कार्यबल को विकसित करने के अभूतपूर्व अवसर पैदा किए हैं। देश की इस बढ़ती क्षमता और व्यापक विस्तार ने वैश्विक स्तर पर भारत की तकनीकी विश्वसनीयता को और भी मजबूत किया है। आज भारत ने एक भरोसेमंद डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर DPI, सुरक्षित डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम और मजबूत अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी साझेदारियां खड़ी कर ली हैं। भारत ने पूरी दुनिया के सामने ये साबित करके दिखाया है कि कैसे समावेशन, सुलभता और किफ़ायत को सुनिश्चित करते हुए इतनी बड़ी आबादी के स्तर पर तकनीक का सफल उपयोग किया जा सकता है। आज भारत न केवल वैश्विक तकनीकों को अपना रहा है, बल्कि एक भरोसेमंद, समावेशी और मानव केंद्रित तकनीकी विकास को लेकर वैश्विक विमर्श और बहस को नया आकार भी दे रहा है। केंद्रीय बजट 2026-27 में क्लाउड और AI इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास को गति देने के लिए प्रमुख नीतिगत प्रोत्साहन घोषित किए गए। इसमें 2047 तक टैक्स हॉलिडे, डेटा सेंटर सेवाओं के लिए 15% का सेफ हार्बर मार्जिन और IT सेवाओं के लिए सेफ हार्बर मानदंडों के तहत पात्रता सीमा को 300 करोड़ से बढ़ाकर 2000 करोड़ करना शामिल है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और बेहतर बनाने के लिए ऑटोमेटेड अप्रूवल सिस्टम को भी शुरुआत की गई। स्किल इंडिया डिजिटल हब SIDH भारत के स्किल डेवलपमेंट इकोसिस्टम के लिए एक डिजिटल आधार स्तंभ के रूप में उभरा है। मार्च 2026 तक 1.5 करोड़ से अधिक उम्मीदवारों ने इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करवाया है, जहां 23 भाषाओं में 1000 से अधिक पाठ्यक्रम उपलब्ध है। SIDH एक एकल विश्वसनीय डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से कौशल विकास, रोजगार, अप्रेंटिसशिप और उद्यमिता के अवसरों को एकीकृत करता है, जो देश भर में करियर के रास्तों और आजीवन सीखने के अवसर पर तक निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करता है। भारत ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में अपनी रैंकिंग में उल्लेखनीय प्रगति करते हुए वर्ष 2015 के 81वें स्थान से वर्ष 2025 में 38वें स्थान पर जगह बनाई है। ये उपलब्धि एक ग्लोबल इनोवेशन हब के रूप में भारत के तीव्र विकास को प्रतिबिंबित करती है। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और अटल इनोवेशन मिशन जैसी पहलों ने उद्यमिता, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास को अभूतपूर्व गति प्रदान की है। सरकार के मजबूत समर्थन, स्टार्टअप इकोसिस्टम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फ्रेमवर्क और इंडस्ट्री एकेडमिया के बीच सहयोग ने भारत की नवाचार क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को और अधिक सुदृढ़ किया है। इसके साथ ही सामूहिक चर्चा संपन्न हुई। नमस्कार।
1: सामूहिक चर्चा भी आपने सुनी। विषय था भारत के भविष्य को रफ्तार देती तकनीक। वाचक स्वर था राकेश शर्मा का। मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 3:10 हुए हैं। कुल्लू और कलपरी लेके
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दिन के 3:10 हुए हैं। FM शिमला पर यह समय है फिल्म संगीत का। कार्यक्रम की शुरुआत में आपको सुनवा रहे हैं पतंगा फिल्म का ये गीत। शमशाद बेगम और चितलकर की आवाजें हैं। गीतकार हैं राजेंद्र कृष्ण, संगीतकार सी रामचंद्रा।
3: हेलो, हिंदुस्तान का तेरा तू? हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ।

सुन रहे हैं गीत उस दौर के जहां हर गीत में सादगी, प्रेम और लय के साथ जिंदगी झूमती गाती थी। तो चलिए सुने एक और ऐसा ही गीत। सरगम फिल्म से लता मंगेशकर और सरस्वती रानी की आवाज़ें हैं। गीतकार हैं PL संतोषी, संगीतकार C. रामचंद्रा।

फिल्म संगीत सुन रहे हैं आप एफएम शिमला पर। कार्यक्रम का अगला गीत सगाई फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। गीतकार है राजेंद्र किशन, संगीतकार सी रामचंद्रा।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।

जिंदगी और मेहनत एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना मेहनत के जिंदगी केवल एक कटोरी है जिसे आप भर नहीं सकते। कड़ी मेहनत ही वो चाबी है जो किसी भी साधारण जीवन को एक असाधारण और सफल कहानी में बदल सकती है। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। समय है युवाणी कार्यक्रम का, जिसे लेकर आज मैं हूँ आपके साथ शेफाली वर्मा।

जीवन में आप कहाँ जाना चाहते हैं ये समझना और वहाँ तक पहुँचने के लिए कदम उठाना आपको उद्देश्य और दिशा का बोध करा सकते हैं। ये आपको किसी भी बाधा के समय प्रेरित रख सकता है और आपको ऐसे निर्णय लेने के लिए एक ढांचा प्रदान कर सकता है जो

आपके वास्तविक स्वरूप को दर्शाते हैं, चाहे वो आपका करियर हो, रिश्ते हो, वित्त हो या कुछ और। जीवन के लक्ष्य आपको ये पहचानने में मदद कर सकते हैं कि आपके लिए वास्तव में क्या मायने रखता है, और उन सपनों को साकार करने के लिए अपने प्रयासों को सही दिशा में लगा सकते हैं। लेकिन ये लक्ष्य आपके जीवन में आने वाले विकास और अनुभवों से जुड़े होते हैं। कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कुछ इसी बारे में।

कार्यक्रम युववाणी में आइए बात करते हैं व्यक्तिगत विकास लक्ष्यों के बारे में। नई भाषा सीखने से लेकर मिट्टी के बर्तन बनाने की कक्षा में शामिल होने तक व्यक्तिगत विकास के लक्ष्य आपकी आत्मा को पोषण देते हैं और आपके क्षितिज को विस्तृत भी करते हैं। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एक नई किताब पढ़ने का लक्ष्य ज़रूर बनाएं। आप अपने दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए विभिन्न शैलियों की किताबें भी चुन सकते हैं। अगर पढ़ना मुश्किल लगता है तो ऑडियो बुक भी एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा जीवन भर सीखना एक संतोषजनक प्रयास हो सकता है। अगर कोई नई चीज़ है जिसे सीखने के लिए आप उत्साहित हैं या जिसके बारे में आप उत्सुक हैं तो उस कक्षा या कार्यशाला में दाखिला ज़रूर लें। अपने विचारों, अनुभवों और आत्मखोजों को नियमित रूप से दर्ज करें। दिन प्रतिदिन अपनी भावनाओं को लिखना कठिन भावनाओं या अनुभवों को समझने में भी सहायक हो सकता है। कुछ नया सीखना वाकई रोमांचक और आत्मविश्वास बढ़ाने वाला हो सकता है। ये ऐसा कोई आपका इंस्ट्रूमेंट भी हो सकता है जो आप बचपन से ही बजाना चाहते हों, जिसे आप हमेशा से ही आजमाना चाहते थे। खाना बनाना सीखना, हस्तकला करना, लकड़ी का काम सीखना, बागवानी करना या शायद एक फ़ोटो एल्बम या स्क्रैप बुक बनाना भी इसमें शामिल हो सकता है।

युववाणी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं एफएम शिमला पर। करियर के लक्ष्य आपको पेशेवर रूप से आगे बढ़ाते हैं, इसलिए यदि आप कॉरपोरेट सेक्टर में तरक्की करना चाहते हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ठोस कदम उठाना आपके लक्ष्य तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकता है। अगर आप काम के लिए कुछ नया करने की सोच रहे हैं या नई नौकरी में जाना चाहते हैं तो अधिक नेटवर्किंग करने का प्रयास करें, पेशेवरों से मिलें, उनकी सलाह लें, उनके बारे में पता करें और हो सके तो उनके प्रोग्राम्स में भी उनके साथ जाएं। अपने चुने हुए करियर में किसी अनुभवी व्यक्ति से मार्गदर्शन और सलाह ज़रूर लें। अगर कोच ढूंढना आपके लिए संभव नहीं है तो उन लोगों से संपर्क ज़रूर करें जिनका आप सम्मान करते हैं, जिनकी आप प्रशंसा करते हैं, और उनसे पूछें कि क्या वो आपके मार्गदर्शक बनने के लिए तैयार होंगे।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला।
1: वन जीरो 3.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। शाम के 4 बज चुके हैं। FM शिमला पर यह समय है फिल्म संगीत का।

0: फिल्म संगीत का अगला गीत लेकर आए हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म से अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजें हैं। गीतकार हैं समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।
1: पूछो जरा पूछो मुझे

इसी गीत के साथ कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। शाम के 4:20 होने को है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। अब हमारे हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आरंभ होते हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम आप आकाशवाणी शिमला के साथ साथ FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन सकते हैं। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आइए सबसे पहले सुनते हैं सिरमौरी कार्यक्रम।

तुआ सभी सिरमौरी कार्यक्रम सुनने वाले है मेरी राम राम। तो यों गीतों और बातों के कार्यक्रम दे तुआ सभी सिरमौरी कार्यक्रम सुनने वालों का आकाशवाणी केंद्र शिमला दा स्वागत हो सो। तुआ सभी साथी आओ मनोज आजाद इतलो बात करदा प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के बारे दे। जे यों योजना लो ये से आम जनमानस खे से फायदा कैसती लगा भेटे। यो योजना दीजू बाजारों की रेटोशी सस्ती दुआई से यो योजना

तो ये भी तुम्हें सभ्य सुना, तुलाराम बावनली और साथी की आवाज़ दा एक बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोकगीत। तो एबे तुम सभ्य साथियाँ हुए कि ऐसी जनहित योजना के बारे में बात करूँगा। जिंदे लो ऐसे सभ्य आदमी के फायदा लगा हुए, जिंदे को ना हो ऐसे प्रधानमंत्री जन औषधि योजना सो, जो ऐसी योजना ऐसे यो देशों के करोड़ों लोगों के ताइए कम कीमतों का शी गुणवत्तापूर्ण दवाई यूँ योजना का शी ऐसे देशों के लोगों के बैठती लगी। जैसे हम सब जुड़े जानो है जे हमारा जे शरीर ठीक रोला तो इन देशा बड़ा धन ऐसे के वे न थी जीवन दा। तो इन दे की ताइए जब वे कोई भी आदमी बीमार पड़ो तो आदमी के अस्पतालों के खर्चे उठाने से आगे मुश्किल हो जाओ थी। तो इन देश बचनों की ताइए भारत सरकार है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना शुरू करी, जो लोगों के एक बड़ी राहत बने। जो यो योजना का उद्देश्य से ऐसा थिया जो जोड़े भी यो देशों के नागरिकों सो से सब नागरिकों के कम कीमतों का शी बढ़िया गुणवत्ता वाली दवाई उपलब्ध कराना सो। यो योजना के तहत ऐसे पूरे देशों दे जन औषधि केंद्र भी थे खोले, जिंदी कम कीमतों का शी ऐसे बीमार आदमी बढ़िया जेनरिक दवाइया से लो सको। जो ऐसी दवाइया से जो जी बाजारी दवाइया भेटो जैसी गुणवत्ता थो, लेकिन इन जन औषधि केंद्र दी इन्हें की कीमत से बहुत कम हुआ, ताकि गरीब किसान मजदूर आदमी से अपना इलाज सही तरीके से कर ले। तब ये ऐसी योजना से इन सब भी

खे जुन जे बजारु दुआई के मोल ठाइन सोक दे तीन खे एज योजनाएं से लाभकारी सिद्ध ओंदी लागी। यो योजना की शुरुआत से आम जनता खे सस्ती और गुणवत्ता वाली दवाई उपलब्ध कराना की ताइए थथी करी। जो यो टाइम दे से देशों की जगह जगह दे एजे जन औषधि केंद्र स्थापित थे करे और यो योजना के तहत बैठने वाली दवाई जोन जी बाजारू दवाई सी 50% से 90% तक कम कीमतों का शीय से लोगों का भेटती लगी। जैसे बात मानो जाए क्यों भी दवाई की कीमत से 200 रुपया वाले लेकिन जय यूँ इन्हीं ऐसी दवाइयाँ से जन औषधि केंद्र से लोई ली तो इन्हें की कीमत से 200 रुपये से चाले 100 रुपये के बीच दे होंगे। जिंदगी तहत आम जनता के काफ़ी खर्चा ऐसे बसता लगा। अच्छा जब बात करबे यूँ योजना दे भेटने वाली दवाई की गुणवत्ता की तो जोन जी भी इंदी दवाई भेटो तिंदे की जांच से सरकार द्वारा जोन जी मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला हो सो तिंदे की ये जी भद्दी दवाई चेक कराया हो से जन औषधि केंद्र दी डालो। साथ ही जो यूँ योजना के माध्यम से जो हर दूर दराज के क्षेत्र जैसे ग्रामीण क्षेत्र हुआ तथा भी यूँ योजना लोइए से ये जी दवाई अभी भेटती लगी। साथ ही यूँ योजना लोइए से जागे जागे दे जन औषधि केंद्र खोलियो हमारे देशों के युवाओं फार्मिस्टों साथ ही उद्यमियों के भी स्वरोजगार के अवसर से भेटते लगे। एतलो ऐसे देशों के हजारों जन औषधि केंद्रों दिए आम जनता जै देशी दवाई भेटती लगी। इंदी भेटने वाली दवाई जैसी शुगर की बीमारी की दवाई बीपी की दवाई बुखार की दवाई कैंसर की दवाई क्यों भी बीमारी की दवाई ऐसे यूँ योजना के तहत से देशों की आम जनता कैसे सस्ते भाव दी से भेटती लगी। तो जो एज ए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना ऐसे सिर्फ एक सरकारी योजना न थी बल्कि ऐसी योजना सामाजिक जन कल्याण साथी जन स्वास्थ्य सुरक्षा का भी एक महत्वपूर्ण अभियान हो सो क्योंकि यो योजना का मुख्य उद्देश्य है ऐसा सो जे देशों का कोई भी नागरिक ऐसे अपने घर की आर्थिक तंगी के कारण से अपनी बीमारी का उपचार शपथ छूने से रुआ चाहिए। तो एतलो ऐसी भी जरूरत हो सो जे कोई भी नागरिक जसखे भी जानियो जे अपनी आर्थिक तंगी के कारण से अपना इलाज कराए सकता तो से यो योजना के तहत अपना इलाज कराए सको। तो हमारे ऐसे भी एक महत्वपूर्ण ऐसे सो जे काबुली जामो को आप जे यो योजना के बारे में जानकारी सो तो हमारा ऐसा भी फर्ज बनो जे हम यो योजना की जानकारी तीन लोगों को भी पहुँचाऊँगे जिनको ही इन्हें के बारे में पता न थी और से अपना इलाज करा देने ताकि से जे आदमी भी सस्ती कीमतों की दवाई लो अपना इलाज ऐसे बढ़िया तरीके से कर ले। इंदे ही किताइए जो एज ए प्रधानमंत्री जन औषधि योजना सो से एक महत्वपूर्ण कदम हो सो क्योंकि यो योजना के तहत स्वास्थ्य क्षेत्र दसे ज़्यादा से ज़्यादा वरदान साबित होने लगे। साथ ही हम सब यो योजना का फायदा उठाना चाहिए साथ ही ओके आदमी खेविंदे के प्रति से जागरूक करने चाहिए। तो एज ए बातचीत तो तुम सब भी साथी जारी थो वे पर इंदे साथी तुम्हें सुनो एक बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोकगीत।

तो ए जो तुए सभ्य शुणो एक बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोकगीत जिन्हें का कलाकार थे रविंद्र वर्मा जी। तो एबे तुओ साथी अपने बातचीत जारी थो बे, तो एबे तुओ सभ्य साथी बातचीत कर बे ऐसी एक ही कसरत के बारे दे जिन्हें आगे भी बोली है जे योग भगाओ रोग। ऐसा हम सभ्य कोई बताओ सो जे एतलो का जीवन ऐसे क्या व्यस्त जीवन सो जिंदे लोई ऐसे आदमी जी शोशा पुंडा फिरे जाओ भाग दौड़ करो तेस कोई कई प्रकार के तनाव भी रुओ से जी शोशा पुंडे फिरे जाओ कई प्रकार के गलत खान पान भी करो। इंदे साथी एतलो के आदमी मोबाइल और कंप्यूटर का ज़्यादा उपयोग करियो अपने शरीर के ज़्यादा से ज़्यादा बीमारियों का से घर ला बनाए। पुराने जमाने जैसे सिर्फ बूढ़े बीमार पड़ो थिए लेकिन एतलो ऐसे नन्हे नन्हे नड़िया भी शुगर के मरीज बीपी के मरीज सब थी एको नड़िया से देखने के लगे बैठे जिनके तनाव सो। तो इन्हीं सब भी एथुशा बचनों की ताइए योग एक ऐसा रास्ता सो जिंदे लो ना सिर्फ शरीर स्वस्थ रहा बल्कि मन स्वस्थ रुओ और तंदुरुस्त भी रुओ। जो योग ऐसे एक व्यायाम ना थी बल्कि इंदे लो ऐसे हमारा शरीर मन सत्य आत्मा का भी संतुलन बनादा रुओ। क्योंकि जब हमारे शरीर ठीक रोला मन शांत होला विचार सही होले तब ही हमें सही माने दे स्वस्थ आदमी होंदे। जो एतलो ऐसे ज़्यादा बीमारियाँ हमारी रोज़मर्रा की जीवन जीणों की तरीके बेकारों के कारण लगी होए क्योंकि एतलो आदमी रात रात भोरे भी उजीरुओ कई प्रकार के बाहर का खाना खाओ सत्थी एतलो।

बाद में योड़े आलसी रेवोणे से अतलो अपने शरीर की थोड़ी भी कसरत न कर दे। हर समय सोच दे लागे रुओ जिंदे लो या हमारा शरीर है से सुलसुले कमजोर हुओ। जे एतलो आदमी रोज 345 मिनट गाड़ियो योग कर ल तो से इन बीमारी से बच सको। जो योग लो ऐसे हमारे शरीर दा रक्त का संचार भी ठीक हुओ, सही तरीका से हुओ, जो फेफड़े भी से बढ़िया मात्रा दे ऑक्सीजन लुओ, मांसपेशिया भी मजबूत रुओ और इंद्रिय सब भी साथी शरीर दा लचीलापन भी आओ, साथी खानों के भी हजम करो और खान पचानों की शक्ति भी बढ़ो। तो जो एतलो के ज़माने से तनाव की सबसे बड़ी बीमारी रोई बोनी, क्योंकि एतलो आदमी नौकरी के दबाव के कारण, पढ़ने वाले नाड़िया पढ़ाई के दबाव कारण, साथी एक आदमी दी पारिवारिक जिम्मेदारियां और भविष्य की चिंता लोई ऐसे एवे के आदमी मानसिक रूपों से कमजोर लगे हुए। तनाव तो लोई ऐसे आदमी रात रात भरे उलझे रुओ, तीन खे शिरोत लागो और से शिरोत लागे होंदे रुओ। जे यो टाइम होते से सजाद में योग कर ला तो ऐसी भद्दी दिक्कत से ठीक हो सको, जो योग लो ऐसे कई प्रकार की बीमारी से छुटकारा भेट सको। जैसी जे को सीखे ज़्यादा ही मोटापा हुओ, एक आदमी दी शुगर की बीमारी वो एक आदमी के ज़्यादा ही बीपी बढ़ो, तो एक या एक आदमी के पाचन तंत्र ठीक न होता तो से योग करियो से इन सभी बीमारी से छुटकारा से पाए सको। जो योग करने का सही तरीका या सही टाइम से खाली पेट हुओ, देखो आदमी खाली पेट हुओ या से योग देखो सको करे, जे आदमी कुणिया खाणों के खाए पाओ हल्को सो खाणों के खाओ तो तीन के बाद से 3-4 घंटे रेस्ट करियो, उसके बाद से योग कर सको। योग के आसन से आराम आराम से करने पड़ो, क्योंकि क्यों भी आसन कर दी वो इजे के थी को सिके शरीर दी बेदनी महसूस हुई तो से जो आसन से ते थी रुकनो चाहिए, क्योंकि इंदे गोई लो क्यों भी प्रकार की जोर जबरदस्ती से आंदी नहीं। तो जो योग ऐसे सिर्फ बड़ बड़े की ताइये न थी बल्कि योग ऐसे कोई भी कर सको, जय कुणिये पढ़ने वालों नहाड़ी आसो तो से भी योग कर सको, क्योंकि तेत कैसे तबे पढ़ाई का ध्यान से लागंदा रोला और जे जुन जा परीक्षा के टाइम होता तेज कैसे तनाव वो सजा भी कम होला। तो ऐसे बात सी तुम सब भी साथी जा रही थो बे तो इन दे साथी तुम्हें सब जुड़े सुनो एक बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोकगीत।

तो तुम्हें सब ये सुनाए भी सुरेंद्र सिंह ठाकुर की आवाज़ दा है एक बहुत ही बढ़िया सिरमौरी लोकगीत। और इंदे ही साथी वक्त खत्म हो जाला सिरमौरी कार्यक्रम रा। एबे तुओ सब भी सिरमौरी कार्यक्रम सुनने वाला है। मेरे राम राम।

तेजी का उंधे लागे ने निर्माणे काम तोई पेड़े कटाए। तो देखा जी जिदी भी देखी सब गौर बनाने दे लागे ने ना पेड़े दे ना देखा जे अगर हमें पेड़ काटी तो हम पेड़ लाने भी चाहिए, नहीं तो एक वक्त एनो आनो कि मारे धरती गए के पेड़ ही नहीं बचने। अगर मारे पर्यावरण संरक्षण गए ध्यान नहीं दिनो तो आने वाले वक्त देखे तापमान तो ही भी बढ़ सका। देखा जी जैसे कि आज आंदा आंदा ही आज ही इतनी गर्मी है, मौसम खराब हुआ पर तबे भी बारिश नहीं हुई। तय ही हमें ज़्यादा का ज़्यादा पेड़ लाने चाहिए, तो पर्यावरण रक्षा करने हमें संकल्प लेना चाहिए कि हमें एक ये एक पेड़ तो हमें ज़रूर लानो चाहिए अपनी जिंदगी दी। तय ही मारो जो आगो जो भविष्य है सो सुरक्षित रहो। तो जी गलबात होंगे रहनी लगी, पहले सुनी अपने एक कार्यक्रम में शुरुआत करी एक बढ़िया जलो गीता का।

आगो जो भविष्य है सो सुरक्षित रहनो। ता जी गलबात हुंदे रहने लागे, पहले सुनी अपने एक कार्यक्रम में शुरुआत करी एक बढ़िया जे लोकगीता का।

हिरे गे हिरिए हिरे हिरिए गाणें आळते अनिल शर्मा ता देखे श्रोताओं आज के वक्त दे कृषि ते बदलाव आने जरूरत महसूस होया ता स्मार्ट खेती ई केणो विचारा जुण तकनीकी नवाचारों उपयोग करया खेती ले तो इन ज़्यादा बढ़िया तो इन लाभकारी बनाने प्रयास करा। ये तो उद्देश्य ना सिर्फ उत्पादन बढ़ाना बल्कि किसान आर्थिक स्थिति भी सुधारने आ। सेंसर इस्तेमाल माटे दी नमी तापमान तो पोषक तत्व मात्रा मापना ले आ जो किसान ले सही निर्णय लेने दी मदद करा। तो इतना साथिया ड्रोनों इस्तेमाल फसलें देखभाल तो छिड़काव करना ले आ इता का वक्त बचत हो तो उत्पादने गुणवत्ता भी बढ़िया हो। कृत्रिम बुद्धियों इस्तेमाल मौसम भविष्यवाणी फसलें बीमारियों पतो चाला तो उत्पादने योजना बढ़ावना ले आ। डेटा विश्लेषण का किसान बाजार रुझान उपभोक्ताए पसंद तो फसलें मांगे बारे दी जानकारी मिला इतक सो अपनी फसलें योजना बढ़िया तरीके का बनाए सका। तो स्मार्ट खेतियों मुख्य उद्देश्य ना सिर्फ फसल उत्पादना दी सुधार करनो आ बल्कि इताले स्मार्ट कारोबार रूपा दी विकसित करनो भी आ। तो आजकल किसान अपने उत्पादन सीधे ही उपभोक्ता तई नीणाले ई कॉमर्स तो सोशल मीडिया उपयोग करा जो तिनाले बढ़िया मूल्य दिलावना दी मदद करा। तो स्मार्ट खेती का उत्पादन सप्लाई सीधे उपभोक्ता तई नीणाले बढ़िया तरीको उपयोग करे सका इतना साथी जो पर्यावरण प्रति ज़्यादा जिम्मेवार भी ओआ। तो जी स्मार्ट खेती है क्या क्या लाभ होआ जण कि इता का फसल उत्पादकता भी बढ़ी सका इतना साथी इता का किसान ले वक्त तो संसाधने बचत उन्हें जिता का तीन लागत काम होने स्मार्ट खेती का जलवायु परिवर्तनों प्रभाव काम हो सका। जब किसान ज़्यादा उत्पादक होने ता गाँव अर्थव्यवस्था मजबूत होने ता स्मार्ट खेती स्मार्ट कारोबार ना सिर्फ कृषि क्षेत्र की क्रांति आनी सका बल्कि सो गाँव विकास दे तो आर्थिक समृद्धि दे भी आगू बढ़ा। किसान ले तकनीकी नवाचार बारे दे बताओ बड़ा जरूरी है इता का भविष्य दे आने वाली चुनौती का सो सामना कर सका जो ना सिर्फ किसान ले बल्कि समाज तो पर्यावरण ले भी एक उज्ज्वल भविष्य रास्ते दे एक कदम। ता श्रोताओं जोती थोड़ी जी जानकारी ता देखा जी मारो जुण संयुक्त परिवार एक कहणो परिवार आ जित एक ही गौर दे दुई का ज़्यादा पीढ़ीए लोग रोआ तो ज़्यादा करिया एक ही वंश सदस्य जित की दादा दादी हो माँ बाप छोटू तो केबे केबे चाचो चाची तो तीने छोटू भी आ सो साथी खाना बनावा साथी रोआ। तमारी भारतीय संस्कृति दी संयुक्त परिवार ले एक जरूरी संस्था मानी इतने कई फायदे आ। तो संयुक्त परिवार दी खर्चो हमें बांडी जिता का एक ही गाय गौर के खर्चियों बोझ नहीं पड़ता खाना हुआ ठालके हुए मकान तो और जरूरती मिली बांडिया पूरी हुआ बड़े बुजुर्ग पेंशन तो नौए छोट हुए कमाए मिलिया परिवार मजबूत बना मुश्किल वक्त दी बीमारी हुई शादी पढ़ाई दी परिवार साथ साथ दिया तो परिवार सब सदस्य एक ही दूजे सहारो बना परिवार एक पहचान तो इज्जत हुआ छोटू दादा दादी तो बड़े साथी संस्कार मारे रीति रिवाज जिंदगी अनुभव सीखा ता त्यौहार कोई तो कोई भी दौर में सभी साथी मनाए जा जिता का परिवार दी एकता बढ़ा ता ऐने परिवार दे रौने आड़े छोटू मानसिक रूपा का कमज़ोर नहीं होंदे इता साथी तीना ले कि बे कौली नहीं लगदो सो ज़्यादा करिया अपने परिवार साथी वक्त बिताओनो चा जिता का सो किबे भी तनाव शिकार नहीं होंदे संयुक्त परिवार दे छोटे परवरिश अच्छी हुआ तो गौर के बड़े बुजुर्गों साथी रोने।

देणा दिलडू सोचियो मांछा गाणी आडे ते मुनीश कुमार ता श्रोताओं एवं कुछ खबर साझा हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य तो ई परिवार कल्याण मंत्रालय चिकित्सा उपकरण नियम 2017 दी संशोधन प्रस्ताव डावा ए तो उद्देश्य चिकित्सा उपकरण विनिर्माण लाइसेंस से शीघ्र जारी करनो तो ई प्रक्रिया ले आसान बनाउनो आ। प्रस्तावे अनुसार लाइसेंस जारी करने वक्त कम होनो बल्कि गुणवत्ता तो सुरक्षा मानका साथी कोई समझौतो नहीं होनो। सोलन दे राष्ट्र स्तरीय शूलिनी मेड़ियो आज अंतिम दड़ो तो मेड़िए चीए दड़े आज छेवड़िए रस्साकसी प्रतियोगितो आकर्षण मुख्य केंद्र तो इते अलावा कबड्डी प्रतियोगिते भी लोगों खूब मनोरंजन किया। राजधानी शिमला औद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान चौड़ा मैदाना दी राज्य स्तरीय महिला आईटीआई खेल प्रतियोगिता आज खत्म गई हुई। ए प्रतियोगिता दी प्रदेश 11 जिले 400 का ज़्यादा छेवड़ी खिलाड़ी अलग अलग प्रतियोगिता दी भाग ले। खत्म होने बाद उपायुक्त अनुपम कश्यप विजेता तो उप विजेता लें सम्मान दिनों तो चिट्टी विरुद्ध शपथ दिलाए। प्रदेश के राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान मुताबिक आज 5 वर्ष तई छोट वेले पोलियो खुराक लाइनी पैने इतले पूरे प्रदेश के 4,700 का ज़्यादा पोलियो आला गए हैं। यू अभियान के प्रदेश के 5,94,000 का ज़्यादा छोट वेले पोलियो खुराक पैनी लक्ष्य आ। ती चौथे खबर सार ता देख श्रोताओं सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकारे एक माठी बचत योजना जोन ज़्यादा करिया छोटी

भविष्य सुरक्षित डाणालय शुरू किया। ए योजना अनुसार 22 जनवरी 2015 ले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान दे हुए ता ए योजना उद्देश्य छोटिए शिक्षा तो शादी ले आर्थिक सहायता देने तदे कदी छोटी ले माठे वक्ता ले बचत करावा इतो कै उद्देश्य तो छोटिए उच्च शिक्षा ले पैसे व्यवस्था करा छोटिए शादी वक्ता दे आर्थिक सहायता दिया तो समाज दे लिंग अनुपाता दे सुधार आना माँ बाबा ले टैक्स बचता साथी निवेशो अवसर भी दिया जो योजना चलाना ले निम्नलिखित शर्तें पूरी होनी चाहिए जेनो कि खातों सिर्फ छोटिए नाम गए खोली सकी तो छोटी उम्र 10 वर्ष का काम होनी चाहिए एक ही परिवार दे ज़्यादा करिया दुए छोटिए नाम गए खातों खोली सकी जुड़वा छोटिए मामले दे विशेष छूट मिलने खातों माँ बाप या तेवे कानूनी जुड़ अभिभावक नावा गए खोलनो तक खातों कितनी भी खोली सकी कोई भी डाक करा दे सरकारी या तेवे निजी बैंक दे जैने कि SBI हुआ PNB हुआ HDFC हुआ ICICI बैंक तो एक्सिस बैंक दे भी खोली सकी ता इतने का जी 250 हर वर्ष ज़्यादा करे निवेश जैने कि 1.5 लाख हर वर्ष निवेश नकद चेक या तबे ऑनलाइन करे सकी खाता खोलने बाद 15 वर्ष तय निवेश करनो जरूरी है सुकन्या समृद्धि योजना दी ब्याज दर सरकार बतावा तो ब्याज दर 6 महीने बाद बदले सकी जो ब्याज दर सामान्य बचत योजना है बदले दी ज़्यादा हुआ तब ब्याज चक्रवृद्धि है आधारा गाय जोड़ा ता जी देखा जी ये जो बड़ी बढ़िया योजना तो सुकन्या समृद्धि योजना है जने छोटी है उज्ज्वल भविष्य ले एक बड़ी बढ़िया तो सुरक्षित योजना जो ना सिर्फ माँ बाबा ले आर्थिक सुरक्षा दिया बल्कि समाज आदि छोटी ले सम्मान अधिकार तो सम्मान दिलाने दिशा दे भी एक मजबूत कदम आ ता जी जो थोड़ी जी जानकारी एवं डेउंदा डेउंदा सुनी एक बढ़िया जो लोकगीत।

फाइलो रंजीत भाई से नमस्कार, राम राम जुले। जो आकाशवाणी शिमला तो जो प्रोग्राम कालपारंग कुल्लू रिले के अंदर नोच रिले हचो भाई से ज्ञान हजे सुनस्या खजाना रंग बराबर तो ज्ञान हजे सुनस्या खजाना रंग बराबर तो जुपंग हाथी खुचमो मासो के जो सौदई बोधे दो भी तो आई दो किसानू तिजोरियोज तेरेंगी शागी महाचोनियो जो बातंग रंग एके गहरीशा किनोनु रेडियो कॉनेस हाजिर तो त्रुक्सु किनोरिंग प्रोग्राम रिशेस दोग भाई से हाले स्तोज किनो से की राजिस खुशी तो चाहे जो आशा रंग की किनो से की हुन मोहन रिमरागु कामानु सुपटी नीतिज काश तदे मा जो ओमस्ता दोग त्रुक्सु प्रोग्रामो किशा गोपनाशे ते कलाकार तो श्रीमती कन्या देवी रंग पार्टी।

महान आने वैष्णव पंत स्वामी रामानंद जी पंग तो गुरु लानिम ग्या ग्या तो श्रृंगू इम्या तो ख्यांता कबीर जी स्तोक आने सोमसी हुन काशी रोक पंच गंगा रोक घाटू देन दोक लामेश बीबी तो श्रृंगू थूलन्ना जंग स्वामी रामानंद जी आने द्यारो सनान लानिम बस तो श्रृंगू हालिंगाई दोक स्वामी जीव बांगो नु हुन आया रेसु कबीर जीव डेंग दोक थानशीत आने नु खाकोच राम राम शब्दोक दोषित रिंगो कबीर जी इसली होजोई मंत्र पंग गुरु मंत्र माने ने दोक दोम्या दोक आने नु स्वामी रामानंद जी इसली आने नु हुन कबीर जी हुन वाली भक्ति पंग तांग तांग कबीर जी पंग आने सेला लाइशित बातंग मरे बाईसे संत कबीर दास आने दोक आने ख्यांता ठसी धर्म या दोक सांप्रदाय कु ठसी कोचंग आने मात तोच मरे आने भगवानु निर्गुनु आने नु रूपु दोक हुन मदे आने नु दोक मोने ने आराधना लान लान दोक आने नु ख्यांता ठसी रुवंग रंग रंग माच रिंगो हने आने मोने तोच मरे कबीर जी श्लिंशित बाई की भगवान इत तोष रिंगो राम हरि भगवान आने नु खेसी खेसी नामंगीस आने नु कशा कुछ रिंगो हरिस की ख्यांता आने नु दोक आने नु दर्शनो केंद्रोली ख्यांता इत हुन इंसान रंग इंसानियत तोच रिंगो मरे आने स्लोशित की म्यून मो जरिया सी मानी मानी कशानु मरे कशानु हुन जोरमिंगिस मानी मरे कशानु करमिस कशा महान हचित रिंगो कबीर जी ख्यांता ना दोम्यक सुम्या हुन धार्मिक उन पाखंडो नु अंधविश्वासों रंग मारी रीति गोनु सुधार शित रिंगो आने ख्यांता समाजु कोचंग वाली दोक आने बोधी योगदान आने स्रन रन समाजो ख्यांता टेख काटोसु दोक आने खिलाफ तोस आने स्लोशी तोस भाई चैमी ओ इदी भगवानु छाओ तो श्रृंगो हाथ ना टेक मास हाथ ना घाटूस मा श्रृंगो कबीर जी स्वदय मी नु कुमो एक तो भावना पंग तामो लोशीत बारंगसु दिखावा पंग शोठेठे कुमोसु पवित्रता पंग तामो आने स्पतंग ताशीत मरे बाईसी कबीर जी आम जनतो भाषो ख्यांता आने सजू बोलियो दोक उपदेश रन रन जूस ख्यांता समाजु कमजोर रंग अनपढ़ मियोनु ली आने नु समझ देशित रिंगो इत दो कबीर जीस मरे हलिंगा आने नु दोक दो हो लोशित भाई निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए बिन माटी साबुन बिना निर्मल करे सुबाए रिंगो ख्यांता यानी किशानु मोपंग मारी दोखुन ख्यांता दोक धतली मरे कशानु मरे ख्यान साबुन रंग ती माचिस दोक हरेरु से तालान निक मरे हालिंगा दोक किशानु दोक कामी पंग दोक ख्यांता कशानु जु थे सम हाथु निमाली इदिरु सिया सम्मान बाओ तामिक रिंगो हुजू बातंग ताशीद दंगसी ख्यांता आने सुन सोदाई हुन किशानु हुन वाल एम किस बाते स्मिक रिंगो एम बाता भाषा लोन्निक रिंगो जुपंग दोक रोंची दयानु दोक शांति पोरे तो रिंगो आई दो किशानु मोनंगली शांत हाचो रिंगो आई दो आने लोशित बेई काल करे सो आज करे सो अब रिंगो पल में परलय होएगी दोक बहुरी करेगा कब रिंगो हालिंगा नासम लानिक कामंगो तोरो लानिक रिंगो आई तोरो लानिक कामंगो हुनई लानिक रिंगो ठूलन्ना तंगमा वक्तु थसी भरोसा माच रिंगो दो बाईसी हजस रुंगस्या आने कबीर जीव दो हागो तोरो आई लोशमा लिख्यांता किशानु भारत देशंगु मीनू खाकु तस्मरे मानिया बाई से दोक पछता दो कशा शांता हुन मनोरंजन लीलांते रंजीत बाई से मोहन लाल ने गिजी स्लांशित जू गिथंगू।

प्रदेशों पर हजार तिशराज तिबोरी पोलियो बूथ स्थापित लानलान दिंगो जो अभियान तहत प्रदेशों गा लाख पनीस सपज तिबोरी छांगानु पोलियो खुराक तुंगमो शनो हालिया लक्ष्य धोरिंगो दंगसिख्यांता इबरंग डॉक्टरों हुन खुराक हाथी छांगो मातुंगमा तंगमा डॉक्टर देरंग ख्यांता नासोम निजो गुईरंग निजो से जून म्या किमोनो बीबी जो खुराकु तुंगमो छांगानु रानतोरिंगो दंगसी डॉक बाईसी सोलन ख्यांता राष्ट्र स्त्रीय जो शुलिनी तिवारंग आखरी द्यारो तोरिंगो तिवारों ख्यांता शुम द्यारो म्या मनरिंगजोनु रस्सा कसी जो प्रतियोजना प्रतियोगिता मदे आकर्षण खास दोक केंद्र दिगेरिंगो आई दोक जूरंग एके कबड्डी प्रतियोगिता गोली दोक ख्या ख्या मियोस वाली मनोरंजन लाइशित रिंगो दोक बजता भाई से जुता तो की तुरुक्सु खास खास खबर सार काचता दे मा दोक सांदा किशा गोपनाशे थे रंचित भाई से जुगी थंग

अभी आप सुन रहे थे किन्नौरी कार्यक्रम, आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। आइए सुनते हैं सुरेंद्र ठाकुर की आवाज़ में ये सिरमौरी लोकगीत।

0: योगेश शर्मा की आवाज में अभी आपने ये लोकगीत सुना। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।
1: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
2: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
3: सो गर्ल्स, क्या हो रहा है?
4: बिल हो रहा है।
3: चल अपना कार्ड दे। पिन दे।
5: RBI कहता है अपना पिन OTP CVV या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी भारत के लिए प्रसन्नता की बात रही है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अपील पर लोगों ने सोने की खरीद और विदेश यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल दिया। उन्होंने इस सक्रिय सहयोग के लिए देशवासियों का आभार जताया है।
7: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
6: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक स्थानों पर हुआ है। उन्होंने कहा कि भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है। मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से जल संरक्षण का आह्वान भी किया। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी सदर के कोटली क्षेत्र में करीब 12 करोड़ रुपये की विकास योजनाओं के लोकार्पण किए। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने और आधुनिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश में नई सड़कों, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं का कार्य तेजी से किया जा रहा है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार योजनाबद्ध विकास के माध्यम से पर्यटन, आधारभूत ढांचे और शहरी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। धर्मशाला में आज एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पर्यावरण संरक्षण व आपदा जोखिम न्यूनीकरण को समान महत्व देना आवश्यक है ताकि भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। धर्माणी ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए हिमाचल टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। प्रदेश भर में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक विनय कुमार ने सिरमौर जिला के संगड़ाह में पोलियो मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को पूरी तरह पोलियो मुक्त बनाए रखना है। आज खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को कल 29 और 30 जून को घर घर जाकर ये खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 5,94,000 से अधिक बच्चों को पोलियो खुराक पिलाने का लक्ष्य है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों से बिना पक्षपात के साथ सभी कार्य करने

0: का आग्रह किया है। वे आज सोलन जिला की ग्राम पंचायत डांगरी में भाजपा समर्थित प्रधानों और उप प्रधानों सहित बीडीसी व जिला परिषद सदस्यों के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करते हुए कार्य करने पर बल दिया।
1: अगले 5 साल आपकी देखरेख में, आपके नेतृत्व में इस क्षेत्र का विकास होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरो। आप जनता को वही मान सम्मान दोगे जो जनता ने आपको दिया। सभी काम करने संभव नहीं होते, लेकिन हर व्यक्ति के काम को ध्यान से सुनना और अपना यथा संभव प्रयास करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: पर्यटन विभाग ने कांगड़ा जिला की विश्व प्रसिद्ध पौंग झील में पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि पौंग झील में इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की व्यापक योजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान मिलने सहित रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
2: इको सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म बेस्ड एक्टिविटीज को इस एरिया में प्रमोट किया जाएगा, ताकि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों की डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी जो है वो यहाँ इंट्रोड्यूस की जा सके और लोगों का जो वेलबींग है वो इम्प्रूव, और जितना भी वहाँ पे मैनेजमेंट है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी जो वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर के उसको करे, और जितनी भी साइनेजेस है चाहे वो लेक में जिस तरह के कोई हादसा ना हो उसकी देखरेख के लिए जो भी नेसेसरी मैन पावर रखनी है, जो भी साइनेजेस लगानी है, वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी करेगी, ऐसा ऑलरेडी डिसाइडेड है।
0: इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 7:45 पर। नमस्कार।
3: प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली
4: सुपर फास्ट एक्सप्रेस के मोबाइल चार्ज करना,
5: दिमाग चार्ज कर अपना।
6: ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक।
5: देखा
4: पापा, रुको मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल।
6: अब क्या करोगे?
4: फ्री वाईफाई है ना।
5: बुद्धू सुधर जा।
6: पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई,
4: यानी फ्रॉड को करो बाय बाय।
6: RBI कहता है
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट।
8: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में आइए अब सुनते हैं बिलासपुरी कार्यक्रम।
9: बिलासपुरी

तो देखो जी, ये सुने तुहे लोग गीत गाया करते थे सीताराम और तिना दे साथी। अज तीन जिमें तुहानू गल कीती पे अहें तुहां कने कुछ गलबात लगानी। अज मैं गलबात लगानी तुहाने पे अज की बचत जिहड़ी से कल की सुरक्षा है। ये सिर्फ एक नारा ही नहीं आ बल्कि कामयाब और सुरक्षित जिंदगी जीवने का एक मूल मंत्र आ। अज के टाइम च अहें देखते पे बढ़ती महंगाई, बेतबारी रोजगारा च बेतबारी और अचानक आने वाली जिहड़ी समस्या तिन्हां चलते बचता रहा मातम जिहा से होर वधी आंदा। से जे माणू अपनी आमदनी रहा एक हिस्सा बचाई कने चलता से अपनी जिहड़ी आने वाली मुसीबत आईयां तिन्हां मुकाबला जिहा से डटी कने करी सकता। बचता रहा मतलब ये नहीं भई सानू पैसे ही बचाने चाहिए बल्कि अपने बेबुनियाद जिहड़े हरे खर्चे तिन्हां पर पकड़ बनाई कने चलना या तिन्हां पर पकड़ रखना जिहा से हुंदा। जरूरत अनुसार जिहा अहें पैसे जिहा तिन्हारा खर्च करिए पे किती जरूरत तिथि अहें पैसे का सही इस्तेमाल करिए। छोटी छोटी छोटी मोटी बचतां ते ही जिहा असें हरी बचत बड़ी बनी जांदी, मतलब से पूंजी वाला रूप ले लैंदी। और यही पूंजी जिही से अहां जो कियां बनानी चाहिए बालकां जो पढ़ाने लिखाने च सेती पर घर बार बनाने च मकान बनाना हो तो तिस्सू बनाने च या फिर कहीं अपना कोई नवा काम धंधा है अपने नौकरी पेशे सौगी कुछ होर चलाना हो काम धंधा तो तिस च निवेश सारे तौरा पर या फिर अमरजेंसी वाले टाइम जी से बचत सू काम आँदी। अज के टाइम में खर्चे खर्चे तो एड़े भई तिस च नवे नवे खर्चे जो जे असें अपने जो जुगती करिए सोची समझी कने करिए और बचता रहे नवे नवे ढंग जेहड़े तिना भी अहें इस्तेमाल अपनी बचता जो बधाने च करी सकते। तियां जे अहें देखते भई बैंक खातियां च बचत करती समय अवधि बचत यानी कि FDs RDs डाकघर दी बचत योजना PPF राष्ट्रीय प्रमाण पत्र या म्यूचुअल फंड तिना जो बोला है तेड़े से भी ले सकते। और सौगी अहें जे असें सरकारी निवेश जिहड़ियां योजना हुई सरकारी तिन्हां च निवेश करी कने अहें क्या कर सकते अपनी बचता जो होर जे असें मजबूत कर सकते। और तिन्हां ते क्या होना अहां जो ब्याजा रे जरिए जे असें आहरी बचत जिहड़ी से होर बधी के सानू अगे जिहड़ी से काम आउणी। बचतारा अभ्यास जे असें बचपना ते बालकां जो पाना चाहिदा। जे बालकां जो छोटी उम्रा ते ही बचतारा अभ्यास अहें पाऊ रहूंगा तां या प्रेरणा दित्तु रहूंगी या प्रेरणा देंगे तो इसते क्या होंदा फिर बड़े हुई किसे बालक जे ऐसे जिम्मेदार और सब ते वड्डी गल पे अपने उपर अपने भरोसे कुछ करने रा जे असे दम रखी सकते। टबरे रे सभी जो जे इसे बचतारा ध्यान होना चाहिए रखना चाहिए सभी जो ही बचतारे पासे ध्यान देना चाहिए। बालकां जो पैसे री अहमियतारा एहसास कराने ते बाद जे असे माँ बाप अपना जे असे अपना तिना जो इड़ा सुआरी सकते अपने माँ बाप जिहड़े से अपना कर्तव्य जे है ना सुजुगती ने तां नभाई सकते जिससे तिना नू बचतारा अभ्यास जे असे पांगे। मतलब खरे माँ बाप होने का एक जिहड़ा फर्ज आ सिख्या माणुए जो शिक्षा देना अपने बालकां जो सही शिक्षा देना तो ये सही शिक्षा च बचता रहा काम भी जे अस एक बहुत ही अहम काम आ। बचता तो ना सिर्फ अहें अपना ही भला कर सकते बल्कि अहें अपने देशा की आर्थिक प्रगति च भी अहें जे असे ध्यान देंदे। कहें भई जे माणुए जो बचता रहा अभ्यास होगा तो से एक खरे नागरिका के तौर पर ज़्यादा तो ज़्यादा बचत करता और इसते जे असें हरे बैंक और से जे हरे वित्तीय जिहड़ियां संस्थान है तिथि जे हरी बचत जो संभालने का काम चलता से जे असे खरे होंगे। और पूंजी निवेशा जो जे असे एक होर के मिला पे बल मिल जा पे अहें पूंजी किती भी पूंजी निवेश जे असे करी सकते जिसते अहें देखते पे अहारे जिहड़े बधदे उद्योग जिहड़े से उद्योग धंधे तिन्हां जो भी अहें बधाई सकते रोजगार वाले मौके अहें बधाई सकते कियां नभाई सकते पूंजी च निवेश करी कने और पूंजी आरा निवेश करी कने अहें जे असे अपने एड़े छोटे मोटे काम जे असे होर सौगी सौगी शुरू कर सकते अहें।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 6:35 होने को हैं। लीजिए पेश है लाहौली कार्यक्रम।

राउटो शुम दशमलव निजर दिशु एफ एम शिमला त स्वंगलो प्रोग्राम रेडरा दि केंद्र भत्ते दि गिप्रो मिलो तर्फे राम राम जुले जी सादी रे तोगल स्वंगलो रूठे रूठे गीत घुरेर केंद्र रेजोनी इमिना खास खास खबर ल जरूर शपोग दीरा सादे इफोगल गप्पा प्रधानमंत्री आवास योजना उपाठी त दुर्ती गे छन केंद्र भत्ते नैन की वही मुदाशु संत कबीरदास जी जयंती त दो संदेश ल दो उजाब ल हे नरमीद थल जी छी तो दुपाठी ल दो संदेश इफो कुछ जुम्बो केंदा सादे शज जुम्बोग ते सादी रे दीरा सादे सादे गलगप्पा लगो केंदा सादे नर सेवा एत नारायण सेवा शु छेरी कुछ हिंज बत्ते जे नेन दीपे चाड़े छा मोड़े सेवा छाल मस्त इच मार्ची मनु को सेवा लही सदमा सेवा लही मी बराबर शु छेरी कुजी आऊं घड़ी हिंजी आर्या गरीब टेजी दुखी मी उसाथ रंड दनी दो हिंजी मदद लादन सहित हिंजी सजे अर्थरी सदमा मनिच दनी हिंजी सदमा पूजा लादनी मनुख दु सेवा कम घ्यांगो छा गर्ज खनी में ले भत्ते भी मोड़े धर्म माने सेवा तांत ध्यान छो पुण्यो कम अर्थ हिंदी भत्ते दी ईमानदारी रा सादे तू खनिया भी जूझू कमजोरे गरीब तपकाऊ मी दु साथ रंजरी दो दु सेवा लेरी मदद लेरी हमेशा हिंदी छक्कन ब्रें जूझू छन भत्ते दा सादे दाल ही भत्ते दु सुख दुखरी रूठे मद मरी कमा भी ताँ हे नर मीर शुनी कुजी मना मी दुए मी शु आऊजी उई मार्ची मी दुबारे रूठे सोचती पर मचांसी अर गप्पा कि भई इच मी ए उई मीउ मदम लहरी मदम बख्तरी दुमियो कमरी साथ मरई छरी कुजी घ्यांगो ए थल जी त घुणर लशीमी आऊं जीव जंतुर तो दुर दुर लशीमी पर हैं जी तांत कुछ दन मा कि भई मी दू मी शु आऊं जी उई दिउ अरे मार्ची तो दुर दो दू हमेशा मदद लजा तो तांत हैं जी दी ये कौन कि भई हिंदी बाते दी आऊं मार्ची मीर तो दुर आदि हिंदू जरूरत तो दो दू थल जी दो दू रूठे थल जी हमेशा कमर तू खनी हिंदी अभी जू शु दो दू साथ हमेशा हिंदी रंजी जू शु त गलगप्पा प्रोग्राम भी जशु अलव दो प्रोग्राम मुंडरी हिंज रेरोनी रामदेव कपूर जी ए नीरू चांदनी सक्सी दी गीत

जी गीत के जरेश तनी पेरा लांदे मोचुनी लाल जिंदे मोरनी। आईने रूठे गीत के जरेश तनी त शहजदा के दसा देगी संत कबीरदास जी आऊ विचार तो दो पाठी आऊ संदेश दो है नरमी दुथल जी तो दोई है नरमी दीदी सिखाई देखी भाई मानवता भत्ते भी मोड़ीशू भत्ते मीर इच्च बराबर शूनी जादि धर्म तोजी मा तोजिर गरीब सेठो रंगियो ने आधार री मीद बीजा फर्क मशु बीजूस दोई कुरा तो की साध मा इच्छु तो दो कच्छ रेता ची पीपी मी आम ते या शुभी तरसी हे नर मीदु करम भत्ते बे मस हिंदु थल जी अहम शुभी बाहरी दिखावा उठारी री हिंदू रूठे कर में हिंदू साजे आचरण हे नर मीदु पहचान शु ते सादिरे कबीर जी हमेशा सच ईमानदारी टोई चले पिम पाठी कुरा तोई दोई गुरु आदर लेरी कुरा तोई दोई गुरु हिंदी ज्ञान रन रह रूठे आम कंड्रा मानेच दे सादे दोई उद्यू आंद्रे कमीर खंड्रिम ठारी री हेगा हे नरमी दी कुर तोई कि भाई हेगा ग्यांगो आंद्रे सुधार हावी मी हिंदी कोशिश ले जूं शु सादे दीरा सादे भत्ते दा सादे दाय दया उभावता जरी दोई कुते तात संत कबीरदास जी संदेश तो की दी खर कोई जमाना रीला आईने अहम माने सहिवा चेरी कुजी आऊँ विचार दो तो नेस लसीगा पदोई हमेशा मानवता सीख हे नरमी दी रंज दे गल गप्पा हैं जिल्हा धनी दू एक ही भई मानवता नर सेवा नारायण सेवा पाठी छेरी कुजी हर म्यू जिंदगी री अबेला ना अबेला खरी वक्त अंजा तो ध्यान री दू वक्त रि हैं जी अगर दो दू साथ रंज तर थीन सही तो दो दी सहारा खोसा तो द समाज आल दा दया भाईचारा भावना बण ही ब्रवा उई दू सेवा लजिते हैं जी दो दी तो खुशी रंज दनी रंज दनी दो दू सेम हैं जी राजी ले तरस दनी सादे हिंदू सेम रिलीज शादे ठो तसल दीशु जा तो हिंदू लसेम संग अंशु जील जा तो ते सादिरे छन दी दुनिया री हरीच मी सदमा पेज ब्रवा हिंज बात तेज ने पर असल री सदमा तो हर म्यू एनो अंतरे बसेगी शुभी दी छन दी पाठी च गा पाशा जिल जुम्बो इच रात जाशवा दोईल सदमा खोज ले मी सेमला एनो आऊँ राज्य जिम्मेवारी है जिम्मेवारी दो भी आईने मास खारे चेसा त दो एनो मुकुट लना दो भी एनो पुंजा कुर्चेसा भार चेसा ज्यारी सदमा दू डेरा लदुआ बणा दू शादी शादी ठारी दू दोई सदमा पेरा पर दो भी सेमरी तसल दी आऊँ तिगल मखोसा जोतर जोतर दुरा जाइच रवाऊ टाबरू पिपा त दोई रवाऊ ब्रेमी ठारी री रवा आऊँ पोशुआ दो टोई रवाऊ आऊँ आसन छुआ दो टोई ब्रांसी दुमी ताजा दुए भिखारी दोई ब्रह्मा ताजा आदि दो सिपाही जिदी कुजी ते तेंग देर की भाई रज जाओ सुवारी अभिलेगी तो रज जाओ सुवारी हुंज लेगी तो त देर ती खाई थबराऊ के त आप शगुन लचकेतन ध्यान रियाऊ घड़ी रज जाई दू दोर तिग नहाजा ताजा त दुमी भी दुराजा भी दिगा पशु सियाबा दो तंग निरी दिगा पावा की भाई साजे सेम जी पूजा है सेवा त मानवताऊ मीन जी ले जूं शू सेवा मार्ची मी दू गरीबे टेजी नाथपा दू ले जूं शू ताए नरो अंद्रे नारायणो दर्शन छो दो गप्पा दी एक भाई टंग ढबा मीऊ जिंदगी री छाल मायना मशवी आऊँ घड़ी तचे हिंदू अंद्रे उई मी दू थल जी दाए दया भावना।

masyuri. Tenis lasi gapa du au mi shua au garib mi shua du khan rate durat jau semri dyatro its kurma bhav aba. Agar hindu semri hindu andre marchi mi du seva lehmi bhavna tot henar latoring do kurma nata sadmau saje sevak shuni. Du et sadmau sevashu. Prani matara rasade hindi dal hejun shu uid thalzi madam sochta je uida sade rosh risho bhavna semri chittanla matas junshu. Jhari hindu phugru pidera mandara sadma enne atsapto kabir ji lukushta do ki bai mi bi hamesha eno andre khand junshu do bi ena bi eno paathi nez junshu agar it mi eno paathi dhyan tro le tarthit sait du enne eno uddhar laza bane gyo do dhyan tro gappar bichar ar agar duniya bhatte prani ji nei kerir sait di pure sansar swargo chor uthe shu jyo do mad mario sayo do ध्यान लरुठे सुखी संसार उथालजी टंग ढाबाए जूंशमाशबी दियू थाजी तो रुठे मीर शुभी जूंफी अगर इच मी एनो जिंदगी री तरक्की ले जून जात सहित दो भी एनो अंदरे मानवता जगागी दाय भाईचारा भावना हबी लेब दो हिंदी मी दी मानवता दूए ठारी तचे पिपी ले लेब तो आऊ ठारी रिहें दुसे एणस पिपलातेर कुछ मना तो मानवता भावना धोणे हिंदी तज जूंशु हिंदु सेमो अंदरे छिड़ हिंदू सेनाजल तारेर त भत्ते भी मुंडारी त हिंदी रूठे मी बने पिम कोशिश ले जूशु अगर हेनर सही मायनारी सजे मी बनेगी लिन सहित हिन जी मानवता सेवा लाजी के तनी दि संसार अच्छी डेजी उकिर तो दुर दुर बत्ते सदमा उ रूपर शुर तात हिंदी बत्ते दी मार्ची मी दू सेवा ले जूं शिशु दुरा छरिको जी सही मायनारी मी दुशु औजी उई मी दू रूठे उबारे सोचे सा छन एगे एनो छांगी भत्ते मी दी दुर रूठे शुर या धुरा मदम भत्ते दी बराबर रन रा आदुल भी जाची टन लफर्क माला जी इच्च बराबर रन रा गंगा उतील मदमे रूठे हर पाठी मी दू थलजी तो कुछ मना पूरे प्राणी मात्रो थलजी तो बूठेल बूठर पोनरारे आई दुर बूठर चीटर झुल्ला पाठी मी दी एनो फल रन रा सिलमोग रन रा सिंग रन रा तात धुआं हिंदी ल भत्ते थलजी इच्चे चीता जूशु छरिको जी मी ने रूप भले शादे शादे शू जातो पर दो दू अंदरे आऊँ तत्व शू जातो दू इच्च छोए आई दुरे इच्च बराबर शुभी गप्पा दी ये कि भई हिंदी मी दी अगर दी जिंदगी री म्यू जलम रहनर अंजी तो दी दुनिया तो नेस लासी गप्पा उई आऊँ मार्ची मीर तो दुर दुर आऊँ टे जी नाथ पर तो दुर दो दू हिंदी जरूर सेवा ले जूशु ताए हैनर मीर शुनी आई चुई गीत पुष्पो सक्सी।

जी गीत के जरेशतनी तीनन से शू जाना हो मेरा सांगा डोलुमा। प्रधानमंत्री आवास योजना उपाठी गलगप्पा शज जुम्बो भारत सरकार दी योजना तहत देशो गरीब मीदी प्रेमी थल जी पक्का घर बार बना ट्रिम पाठी कम शुभिलेगी तो टंग ढवो पाठी इफो मदद रन ट्रिमी कम शुभिलेगी तो देशो ध्यान छो परिवार अदी पक्का।

रुमा प्रधानमंत्री आवास योजना उपाठी गलगप्पा शाज जुम्बो भारत सरकार दी योजना तहत देशो गरीब मीदी प्रेमी था जी पक्का घर बार बना चिम पाठी कम शुभ लेगी तो टंग ढवो पाठी इफो मदद रन जिमी कम शुभ लेगी तो देशो ध्यान छो परिवार अदी पक्का घर बार बना चिम थल जी इफो टंग ढवो मदद रन शयुआ औंटा ब्रद पलरी साजे एगे संद मुक्ति बचिपिम थल जी एना दू पुंज प्याचिम थल जी पक्का घर बार मा कुछ मना आर्थिक रूपे कमजोर वर्ग दी पक्का घर बार बना चिम मुक्का रंजी प्रधानमंत्री आवास योजनाओं खास मकसद चू गप पदी की भई अगर आदो अपलर एनो पक्का घर बार मत सहित दोजी दी आवास योजना री आवेदन लेतर सी दी योजना ते देशो शहरीय ग्रामीण झुल्ला क्षेत्रों गरीब मी दी प्रेमी जोगे घर बार बना चिम थलजी टंग ढबो पाठी मदद लेशू दी आर्थिक राशि सरकारों तरफे सीधे लाभार्थी दुखातंग डीबीटी उजरियाई जसायुआ त दी राशि लाभार्थी दी शद शदे किस तरी खोसा छाना कांजे लेख तो दोसा दिरे की भई दी योजना जुड़ हिस्सा री फांसी तो इच ग्रामीण लाका थल जी त ऐसंग तो शहरी लाका थल जी जुड़ला क्षेत्रों में दी शद शदे आर्थिक मदद राशा युवा औ आर्थिक मदद उगा लादन हिंजी दी राशि टंग ढबो राशि राशा युवा सादे गा पदी ले की भई दी योजना फायदा दो दिमाग खोसी आउजी भारत सरकार या धुरा राज्य सरकार छा उई आवास योजना फायदा लेप चिलेगी तो दुर ता धुरा आवेदो को चूंकी इच्छल टबर छा सरकारी नौकरी री लेगी मशुबी जूस ज्याचो शर्त लते तो त वर्षोत पारिवारिक आय ले सरकारो शर्तों मुताबिक आऊँ ते दायरा तो दू दायरा अंदरे शुभी जूस ता दौर आऊँ फारम तो दुपी जिम थल जितने इसलासी गप्पा जूँ शिपा दिले बेले भी छाने हिंज गप्पा लादने आधार कार्ड तो पेन कार्ड शुई या दौरा आय प्रमाण पत्र शुई राशन कार्ड गप्पा हिंज लादनी बैंक खाता नंबर रसा दे मोबाइल नंबर तो ता दौर पासपोर्ट साइज फोटो तो कुछ मना भत्ते जूँ शी दस्तावेजर आऊँ दी योजना री फारम पी जिम बख्तरी जूँ फा दौर जरूर लगा जूँ शू सादे ऑनलाइन आवेदन ले जूंस दन सहित केंजी दियो आधिकारिक वेबसाइट आई जीते फार्म पीज तरफ होनी दिरा सादे अगर केंजी ऑफलाइन आवेदन ले जूंस दन सहित दियो थलजी मुंडरी केंदी दी आधिकारिक वेबसाइट अनी इच आवेदन फार्म डाउनलोड ले लेब दो केंदी या दुरा फार्म केंजी कचरे की कॉमन सर्विस सेंटर अनल लेपजी तरसी दो थल फार्म पिंगी जूं शिपा दे लगाते आऊँ केंदु पलरी कच्चा मुकान तो दो इच फोटो लगागी घ्यांगोल इच फोटो केंजी लगा तुनी सादे केंदु आऊँ नगरो मुखिया तो आर्थिक कुशिता दुर की भाई फलाना ठारी रीदी जमा ले लेब दो दियो सत्यापन ले लेब दो तो दुरती गिल जीते सत्यापन लजथल फार्म कचरे की ब्लॉक अशील जीते जमा ले लेबी दो थल दुरती का अधिकारी जीत पंजीकरण नंबर रमोर छऊ मदद केंजी केंदु आऊँ आवेदन तो दो स्थिति खंड तरफुनी दुल दियो आधिकारिक वेबसाइट इल जीते तांगा पल्हादनी पात्रता उपुष्टि पाठी त दीरी ग्राम सभा आईने अहम भूमिका शुभी दितोई आवास योजना पाठी फो गलगप्पा इमिना खास खास खबर रेजुनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुतो की राष्ट्र निर्माण री मीदु भागीदारी कुछ मनात राष्ट्र निर्माण री मीदु भागीदारी भारत तो थल जी राज्य शुभिम गप्पा शु आकाशवाणी नी सेम गप्पा कार्यक्रम अर्दय कुतो की वही पश्चिम एशियन लड़ाई स्थिति खनी दो अपीलरी देशो मीजी एकता कंजदुर प्रधानमंत्री कुतो की दो अपीलरी मीजी जंग चुमजिए विदेशो आखा जो इवी इफो वक्तो थलजी टालेक के तुर दोई दी सातो थलजी देशो मीदु शबस लतो ता मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखुई अधिकारी दी कांगड़ा जिला औ खरे इलाका तो बड़ा भंगाल दुर्तिक तचे सड़क बना चिमी कमर तेजी हबीमी थलजी दो दी निर्देश रन दो मुख्यमंत्री दुला का बिजली आपूर्ति बहाल लेमी बारे ल दुर्ति की मीद आए बिजली विभाग रसादे गप फासा दोई लतो मुख्यमंत्री छाना दुर्ति की आपदा अंजी प्रभावित आऊँ ला कर तो दुर दो दु निरीक्षण ला जिते अधिकारी दु दुर्चिनी प्रभावित आऊँ मीर तो दुर दीर्चिनी असर शुजी आपदा असर शुजी मीर तो दुर दो दी राहत रन रिमिये दुर या जबा साचिम काम दुल दोई जानकारी मुख्यमंत्री लेपचुदो ता खबर तो सोलना राष्ट्र सत्रो शूलिनी मेला तोग लास्ट झातुई ते तोग मेज मिदु रस्सा कस्यू आईने आऊँ रस्सा कस्यू कुर्मा
प्रतियोगिता तो ही दुआ।

आयने खंडम जोगे तो दिवेश चढ़े कबड्डी ल मी दो आयने रूठे मनोरंजन लतो। ता खबर तो पूरे प्रदेश राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान तहत तो 9 साल तच की उम्र कड़ू दी पोलियो खुराक राशा इलजा दिव थल से पूरे प्रदेश 2000 नीरा बेजमास पोलियो बूथ लगा सा इल दे। दी अभियान तहत पूरे प्रदेश 9 लख पिनिजो 7000 बेजमास कड़ू दी पोलियो खुराक रंजिम लक्ष्य तो खुराक तुम्हें नी के शाइल जी कड़ू दी मुदा निजो कुए निजो साजू नरी चुंग चुंग इल जीते खुराक राशा यो दो। ता द्वारा राजधानी शिमला आईटीआई चोड़ा मैदान छान राज्य स्तरीय मेजिम आईटीआई खेल प्रतियोगिता ल तो यो सैलजा दिरी प्रदेशों से जिला दो पीरा बेजिमस मेजमी योजाजी ते या स्पर्धारी भाग लेप चिदिर जितो इमिना खास खास खबर अर केंदु थल जी नहेंज थलमु कर रोनी कोलोंग महिला मंडलों तरफे दिगीत।

लाहौली कार्यक्रम अभी आपने सुना। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 7:05 होने को हैं। अब अंग्रेज़ी में समाचार आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से प्रसारित होंगे।

0: crashed today in the Ras Tanura on its eastern coast on the Gulf, west of the Strait of Hormuz. Aramco had resumed crude oil loadings on Friday at its Ras Tanura terminal in the Gulf after they were halted for nearly 4 months due to the West Asia conflict. And in the ICC Women's T20 World Cup, India were 11 for no loss in 11.3 overs against Australia in the final Group A match at the Lord's London when reports last came in. Winning the toss, India opted to bat first. India clinched the bronze medal at the AVC Men's Volleyball Cup in Ahmedabad today after defeating Bahrain 3-1 in the third place playoff. The victory marks India's first medal in the tournament in 40 years, capping off a memorable campaign on home soil. Earlier, India narrowly missed out on a place in the final after suffering a defeat to Indonesia in the semi-finals. And that is the end of this news bulletin.
1: एक सौ तीन दशमलव सात मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। 7:10 हुए हैं। लीजिए पेश है कृषि जगत कार्यक्रम।
2: स्वागत है सभी किसान और बागवान साथियों का उनके पसंदीदा कार्यक्रम कृषि जगत में, जिसे लेकर हाजिर हैं आपके रेडियो साथी। मैं हूँ सुरेखा।
3: और किसान भाइयों, मैं हूँ हेमलता शर्मा।
2: तो हेमलता, बताएं आज क्या कुछ खास है कार्यक्रम कृषि जगत में?
3: देखो जी, कार्यक्रम में तो हम बड़ी जानकारियां लेकर आए हैं, लेकिन किसान भाइयों, देखो गर्मी का मौसम चला है और गर्मी के मौसम में अपना पशुधन का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। आजकल देखो बारिश भी हो रही है, आपको जरूरत नहीं है सिंचाई करने की, लेकिन जहां भी बेल वाली सब्जियां हैं, जो भी आपने सब्जियां लगाई हैं, उनका विशेष ध्यान रखें, उन्हें सहारा दे के खड़ा करें और अपने आप देखो पानी गंदा आ रहा है, छान कर उबाल कर पिए और पशुधन को भी देखो दो समय पानी जरूर पिलाएं और गर्मी में उन्हें अंदर बांध दें और शाम को जैसे ही सूर्य थोड़ा ढल जाए 4-1 बजे तो आप उन्हें बाहर बांध दें।
2: जी बिल्कुल हेमलता, आपने सही कहा। और ऐसे मौसम में जो है अचानक से बीमार होने का भी खतरा रहता है, साथ ही हमारी फसलों में लगी सब्जियों में भी खरपतवार बढ़ जाता है, वहां पर भी कीट और रोग पनपने का खतरा रहता है। तो इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए आप कृषि बागवानी के कार्य निपटाएं।
3: जी किसान भाइयों, आज हम काम की बातों में बात करेंगे हरड़ की खेती और साथ में मनोरंजन करवाएंगे प्यारे से लोकगीत के साथ। जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुनाया जाएगा, जिसका विषय रहेगा सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों द्वारा पानी का सदुपयोग। अब कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हरड़ की खेती के बारे में।
2: जी तो किसान साथियों, आप सभी जानते हैं कि हरड़ एक प्रमुख औषधीय पौधा है और एक कहानी भी है हिमलता की, जो देवता थे तो उन्होंने जब समुद्र मंथन किया था तो उससे निकले अमृत का पान करते समय जो है एक बूंद जमीन पर गिर गई थी, जिससे कि हरड़ की उत्पत्ति हुई थी। और आयुर्वेद में इसको जो है सभी रोगों का नाश करने और शरीर से सभी अपशिष्टों को खत्म करने वाला रोग नाशक पौधा माना गया है।
3: जी सुरेखा, ये तो सही कहा कि देखो हरड़ की खेती कितनी बढ़िया है कि अगर हमारे किसान भाई हरड़ की खेती करें तो हमारी जो भी बीमारियां हैं वो जड़ से खत्म हो सकती है। हरड़ पूरे भारतवर्ष और म्यांमार के मिश्रित पर्णपाती जंगलों के अधिकतर हिस्सों में पाई जाती है। ये हिमालय में 1500 मीटर तथा श्रवणकोर में 1800 मीटर तक पाई जाती है। सागवन और उनके सहयोगियों के साथ साथ लैटराइट वन में भी होते हैं। लेकिन किसान भाई, यदि मध्य भारत में बात की जाए तो ये विशेष रूप से खुले वन या गाँव की भूमि में रूपांतरित चट्टानों पर मिलती है।
2: जी बिल्कुल, तो अब बात करते हैं हिमलता की इसके प्रवर्धन गुण कैसे हैं और छाया में इस पौधे की वृद्धि जो है अच्छी तरह नहीं हो सकती। सही बढ़ोतरी और इसकी विकास के लिए अच्छे से सूरज की रोशनी पर ये निर्भर करता है। और किसान साथियों, छोटे पौधे जो हैं कोहरे के प्रति भी संवेदनशील होते हैं, इसलिए एक साल के पौधों को जो है सर्दियों में आप कोहरे और पाले से जरूर बचाएं। इसके लिए पौधों को घास से ढक दें और दक्षिण दिशा से खुला रखें ताकि सूरज की रोशनी पौधों को मिलती रहे। बड़े पौधे जो है कोहरा और आग के प्रकोप तक को सहन करने की फिर क्षमता रखते हैं।
3: जी किसान भाइयों, अब बात कर लेते हैं हरड़ की किस्मों के बारे में। हरड़ की 3 महत्वपूर्ण किस्में होती है, जाच हरड़ 1, जाच हरड़ 2 और जाच हरड़ 3। पहले बात कर लेते हैं जाच हरड़ 1 की। इस किस्म को गाँव परागपुर तहसील देहरा जिला कांगड़ा में चयनित किया गया है और औसत फल की लंबाई की बात की जाए तो ब्यास तथा सूखा भार 6.53 सेंटीमीटर से 3.23 सेंटीमीटर और 10.35 ग्राम होता है और इसका

0: लंबी गर्दन व पीले रंग वाला और बहुत ही गुणकारी होता है, जिसे स्थानीय भाषा में कुंज कहते हैं।
1: अब बात की जाए जाच हरड़ दो की खासियत की, तो इस किस्म को जो है गांव कोठी हरड़ जिला बिलासपुर से चयनित किया गया है, जिसके फल की लंबाई और व्यास और सूखा भार की अगर बात करें तो इसकी लंबाई रहती है 5.43 सेंटीमीटर और व्यास 3.15 सेंटीमीटर और इसका जो सूखा भार रहता है 15.5 ग्राम और फल अंडाकार होता है, रंग लाल धारियों के साथ थोड़ा सा पीला होता है। यह हरड़ जो है अच्छी गुणकारी मुरब्बा किस्म की है।
0: किसान भाई जी, जाच हरड़ 3 की बात की जाए तो इनको गांव टंबर तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा में चयनित किया गया है। औसत फल की लंबाई की बात की जाए तो इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर 3.31 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है और 10 ग्राम तक भी हो सकता है। औसत फल की लंबाई, व्यास तथा सूखा भार 5 सेंटीमीटर 3.31 सेंटीमीटर तथा 10 ग्राम होता है। फल अंडाकार, थोड़ा पीला, अच्छा मुरब्बे वाला समझा जाता है।
1: बात करें इसके लगाने की तो प्यूंद विधि के द्वारा आप इसको लगा सकते हैं, यानी कि चिप बडिंग या फिर विनियर ग्राफ्टिंग के द्वारा। और जिस भूमि का चुनाव आप हरड़ लगाने के लिए या हरड़ का बागीचा लगाने के लिए करते हैं तो उस पर उगे हुए अवांछित पौधों, झाड़ियों, खरपतवार को आपको निकाल देना होता है और जून के महीने में बगीचे का रेखांकन करके 8x8 मीटर की दूरी पर 1 मीटर x 1 मीटर x 1 मीटर आकार के गड्ढे खोद देने चाहिए। उन गड्ढों को अच्छी तरह सड़े हुए गोबर की खाद और बाहर खोदी हुई मिट्टी से आधा भर देना चाहिए।
0: जी किसान भाई, जुलाई के महीने की बात की जाए तो पौधरोपण करना चाहिए। पौध लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि प्यूंद का जोड़ जमीन से लगभग 10 सेंटीमीटर ऊपर रहे, ठीक है ना सुरेखा
1: जी?
0: और कॉलर सड़न की संभावना से इसे बचाया जा सके। नव रोपित पौधों को दिसंबर के महीने में घास फूस से ढक देना चाहिए ताकि पौधों को कोहरे के प्रभाव से बचाया जा सके।
1: जी बिल्कुल हेमलता, हरड़ का बागीचा शुद्ध भी लगा सकते हैं। इसको कृषि वाणी की पद्धति के लिए भी अपनाया जा सकता है, क्योंकि अनुसंधानों से ये पाया गया है कि हरड़ के वृक्षों को कृषि फसलों के अंकुरण और उनकी वृद्धि पर कोई उल्टा असर नहीं डालता। तो हेमलता, बात करते हैं कि अन्य फसलों की तरह इसमें भी रोग कीट लग जाते हैं, तो किस तरह से इसमें रोग कीट लगते हैं और कैसे आप इसका निवारण करेंगे?
0: जी, समय से पहले हरड़ के पत्तों का झड़ना फफूंदी के द्वारा होता है और हरड़ की छाल का फटना और गोंद का निकलना हरड़ के पौधों की मुख्य समस्या हो जाती है, जो कि फफूंदी की पाइटोफथोरा प्रजाति द्वारा होता है। यदि हम फल की बात करें तो फल में छेद होने की समस्या कीटों द्वारा जून महीने के अंत यानी कि आजकल शुरू होती है और जो कि फल गुच्छों में होते हैं उन पर इसका ज्यादा संक्रमण होता है। सुरेखा, यदि बात करें रोग के फलों की, ये फलों को बाजार में बेचने के अयोग्य बना देता है और फल पूर्ण विकसित होने से पहले ही झड़ जाता है।
1: जी, और हिम्मता, इसके साथ साथ पत्ती थ्रिप्स रोग या फूल थ्रिप्स रोग भी लग जाता है, तो ये पत्तों और फूलों का एक प्रमुख कीट है जो कि हम जानते हैं, इसकी वजह से जो है पत्तों और फूलों पर दाने बन जाते हैं। तो इन सभी रोग और कीटों का समय रहते आप अनुमोदित मात्रा में दवाइयों का छिड़काव करके निवारण कर सकते हैं।
0: किसान भाइयों, काम की बात में बात की हमने हरड़ की खेती के बारे में, अब आपको इंतजार होगा प्यारे से लोकगीत का।
1: तो आइए सुनते हैं कृष्णलाल सहगल की आवाज में ये मधुर सा लोकगीत, हम और आप मिलकर।

0: अब हमने बात की थी जानकारीपूर्ण बातचीत की, आज का विषय है सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों द्वारा पानी का सदुपयोग।
1: जी किसान साथियों, इस जानकारीपूर्ण बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर आरएस सिपाहिया, जिनसे बातचीत कर रहे हैं रविंद्र वशिष्ठ। तो आइए सुनते हैं इस जानकारी भरी बातचीत का पुनः प्रसारण।
2: किसान भाइयों नमस्कार, आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर आर एस सिपाहिया। आज हम बात करेंगे सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों द्वारा पानी का सदुपयोग विषय पर। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका आकाशवाणी परिवार में।
3: धन्यवाद और सभी सुनने वालों को नमस्कार।
2: जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जल प्रबंधन क्या होता
3: है। जी देखिए, आज जो सबसे महत्वपूर्ण विषय है वो है कि हम पानी का सदुपयोग कैसे करें।
2: जी
3: तो उसके लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो है जल प्रबंधन, क्योंकि हमें सबसे पहली चीज जो है वो तो जल होना चाहिए हमारे पास।
2: जी
3: अब कई किसान बागवान भाई हमारे खुशकिस्मत हैं जिनके पास जल होता है, लेकिन हिमाचल प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे बारिश तो काफ़ी होती है, लेकिन फिर भी किसान भाइयों को 7 से 8 महीने पानी की तंगी से जूझना पड़ता है।
2: जी
3: और इसका कारण ये है क्योंकि जो ज़्यादातर बारिश होती है वो हमें हमारे बरसात के मौसम में होती है, जो 3-4 महीने होते हैं उसी में ही हमारी 70-80% बारिश हो जाती है, और जो बाकी 20% या 30% बारिश बचती है वो पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूट होती है।
2: जी
3: तो उससे जो हमारा पानी जितना आता है वो बारिश के मौसम का तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना पानी हमारा बह के नदियों के साथ और उनके साथ उपजाऊ मिट्टी भी हमारी नीचे प्लेन्स में जाती है।
2: जी
3: और हमारा जो सबसे पहला मकसद होता है वो होता है उस पानी को हम इकट्ठा करें।
2: जी
3: जितना पानी हमारे खेत में पड़ रहा है कम से कम वो हम खेत में ही रखें और उस पानी का वहीं खेत में रोक के फिर उसका हम सदुपयोग करें। तो ये हमारा सबसे पहला स्टेप होना चाहिए। और ये आप और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा है कि जैसे जैसे

0: मौसम परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं
1: जी
0: और सुनते हैं, हम पढ़ते हैं
1: जी
0: कि धीरे धीरे मौसम में बदलाव हो रहा है,
1: जी
0: और सबने महसूस भी किया होगा किसान भाइयों ने कि पहले जो टेम्परेचर होता था उसके मुकाबले अब 2-4 डिग्री टेम्परेचर ज़्यादा रहता है।
1: जी जी
0: बारिश जो है वो पहले जैसे बरसात के मौसम में आती थी तो हमें पता है बारिश कब आएगी, अब ऐसा हम अंदाजा नहीं लगा पाते हैं
1: जी
0: कि कब बारिश आ रही है। कभी हमारी फसल खड़ी है उसके बीच में भी बारिश आ जाती है,
1: जी जी
0: जबकि हमारे पूर्वजों ने जो मौसम सेट किए थे कि हम इस टाइम सोइंग करेंगे, इस टाइम हार्वेस्टिंग करेंगे, तो बीच में बहुत कम चांसेस होते थे कि बारिश आती थी।
1: जी
0: लेकिन अब हर साल हम देख रहे हैं कि बारिश का आने का कोई समय नहीं रह गया है। कभी भी बारिश आती है, कभी फसल को नुकसान हो जाता है, कभी और या फिर हमारी मिट्टी को बहा के ले जाती है।
1: जी
0: तो हमारा जो सबसे पहला मकसद है वो होना चाहिए कि जो खेत में हमारा पानी गिर रहा है हम उसको खेत में ही रखें और उसका जल संग्रहण करें,
1: जी
0: और अगर हम वो पहला स्टेप करने में कामयाब हो जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि हमारा 50% काम सफल हो जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, बहुत खूब। डॉक्टर साहब, जल संरक्षण की आपने बात की, तो मैं जानना चाहूँगा कि जल संरक्षण की कौन कौन सी ऐसी विधियाँ हैं, कौन कौन सी ऐसी तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल कर हमारे किसान और बागवान भाई बहन सिंचाई के लिए जल संग्रहण कर सकें।
0: जी देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसलिए हो जाती है क्योंकि जब हम जल संग्रहण की बात करते हैं तो कई विधियां हैं हमारे को सब तरफ से मिलता है, सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि आप ये वाले पॉन्ड बनाइए, आप ये वाले तालाब बनाइए। तो मेरा तो जो सबसे पहला मानना है कि हमारे जो पूर्वज करके गए, हम अगर हम याद करें, किसान भाई और सभी जो श्रोता हैं अगर वो याद करें, तो जब हम
1: जी
0: गांव में जाते थे या गांव में रहते थे तो पहले एक तालाब होते थे हर एक गाँव
1: जी
0: में।
1: जी जी
0: कांगड़ा में उसे टोबा बोलते थे, कहीं
1: जी
0: उसको खेतड़ी बोलते थे, कहीं उसको डिग्गी बोलते
1: कहीं
0: हैं,
1: खाल बोलते
0: खाल
1: हैं।
0: बोलते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: तो वो जो चीज़ है वो कहीं ना कहीं समय के साथ हमारे जो परिवर्तन आया है, हमारे हम ज़्यादा बिजी हो गए हैं और जो हमारे पानी घर घर पहुंच गया है उससे भी हमने उन उन सब चीज़ों को जो ध्यान रखना छोड़ दिया है।
1: छोड़ दे जी
0: तो उससे क्या हो गया है कि वो जो एक पानी का स्रोत होता था एक पूरे गांव में, कम्युनिटी टैंक जिसको हम बोल सकते हैं,
1: जी
0: वो एक बहुत अच्छा स्रोत होता था। उससे आपके जो पानी का जल स्तर है वो ठीक रहता था,
1: जी
0: आपके गांव में पशुओं के लिए पानी हो जाता था और अलग से आपके कई जगह तो उसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करते थे अगर
1: जी
0: वो साफ़ सुथरा है।
1: जी
0: तो वो जो चीज़ें हम पीछे छोड़ दिए हैं, तो
1: जी
0: मेरा तो सबसे पहला मानना है कि वो पंचायत लेवल पे और अपने लेवल पे हम शुरुआत करें कि जो हमारे गाँव में या जो हमारे कम्युनिटी में जो ऐसे टैंक थे उनमें अब मेरे को लगता है ज़्यादातर कीचड़ से भर गए होंगे या फिर
1: जी
0: उनके ऊपर कुछ कंस्ट्रक्शन हो गई होगी किसी न किसी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि उसका ध्यान नहीं रखा गया।
1: जी
0: तो मुझे लगता है कि सबसे पहला स्टेप तो है कि हमें उनको दोबारा जीवंत करना चाहिए,
1: जी जी
0: उनके हम दोबारा स्टार्ट करें ताकि
1: जी
0: वो पानी आए, जो भी बारिश होती है वो उसमें इकट्ठा होना शुरू हो,
1: जी
0: तो आपकी आधी समस्या वहाँ से हल हो जाती है।
1: जी
0: दूसरा है कि हम और ज़्यादा जो खेतों में पानी गिर रहा है उसको हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, तो उसके लिए 2-3 विधियाँ हैं। एक तो है आप सीमेंटेड टैंक बना सकते हैं,
1: जी
0: रेन वाटर हार्वेस्टिंग जिसको हम कहते हैं, वर्षा जल संचयन से हम पानी इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, टैंक बनाने की एक विधि होती है जिसको हम पॉलीथीन लाइन टैंक या पॉलीथीन जड़ित जलाशय कहते हैं।
1: जी
0: तो वो जो ये जो दोनों तरीके हैं, दोनों तरीके बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनमें फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि पॉलीथीन जड़ित जलाशय जो होता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है,
1: जी
0: आपके जो कंक्रीट टैंक हैं पानी के टैंक जो बनते हैं
1: जी
0: उनके मुकाबले कम से कम 3 से 4 गुना सस्ता पड़ता है।
1: जी
0: और दूसरा, इसका उपयोग सबसे बड़ा ये है कि एक बार जो ये पॉलीथीन जड़ित जलाशय हैं ये बहुत सस्ते इसलिए भी होते हैं क्योंकि इनको आप रिपेयर कर सकते हैं।
1: जी
0: इसमें शीट लगती है, काली पॉलीथिलीन की शीट लगती है,
1: जी
0: फिर आजकल नीली शीट भी आती है
1: जी
0: वो भी लगा सकते हैं। तो बस उसमें जो जितना बड़ा हमारा जलाशय होगा उसमें अगर अब शीट फट जाती है तो आपको सिर्फ एक शीट चेंज करनी है तो
1: जी
0: आपका जलाशय दोबारा एक नया जैसा बन जाता है। लेकिन जो कंक्रीट टैंक होते हैं उसमें जो एक बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसमें क्रैक आ जाए, क्योंकि हम एक पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं
1: जी
0: तो हमने देखा है कि यहाँ पे भूकंप के झटके छोटे मोटे हम सहते रहते हैं, आते
1: जी
0: रहते
1: जी
0: हैं। तो अगर कोई थोड़ा सा भी ज़्यादा रिक्टर स्केल का अगर झटका आ जाता है तो अगर जो सीमेंटेड टैंक्स हैं उनमें ज़्यादातर चांस होते हैं कि क्रैक आ सकता है,
1: जी
0: और एक बार क्रैक आ जाए तो वो टैंक फिर उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता।
1: जी
0: तो वो उसको अगर आपने रिपेयर करना है तो पूरा का पूरा आपको दोबारा सारा बनाना पड़ेगा, उतना ही खर्चा करना पड़ सकता है।
1: जी
0: तो उसके लिए, लेकिन जो प्लास्टिक वाला टैंक है उसमें सिर्फ आप शीट बदलेंगे तो आपका टैंक बिल्कुल नया हो सकता है। एक उदाहरण दूँ मैं, आपका जो 50,000 लीटर का या 50 क्यूबिक मीटर का टैंक जो होता है उसमें अगर हम देखें तो वो एक जो सीमेंटेड टैंक है वो कम से कम आपका

0: 2-3, 2-2.5 लाख रुपए का बनेगा।
1: जी
0: लेकिन जो ये जो पॉलीथीन जड़ित जलाशय है, ये आपका कम से सिर्फ 30 से 40 हज़ार रुपये में बन जाता है। इसमें
1: जी
0: जो शीट लगती है वो सिर्फ 8 से 10 हज़ार रुपये की लगती है। तो
1: जी
0: आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आप शीट फटेगी तो आपको एक शीट किसी वजह से डैमेज हो सकती है,
1: जी
0: या तो जानवर जा सकता है, या फिर किसी पत्थर गिरने से, या किसी वजह से हो सकती
1: जी
0: है।
1: जी
0: लेकिन अगर वो सिर्फ एक 7-8 हज़ार चेंज करके आप पानी जो टैंक है आपका बिल्कुल नया जैसा बन सकता है। और दूसरी बात, एक और इसमें हम अगर हम इस जलाशय को मजबूत करना चाहें तो मैं मेरा सुझाव ये रहेगा कि आप ईंटों से इसे कवर कर दीजिए। इसमें सीमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ढलानदार टैंक होता है चारों तरफ से, जिसको हम ट्रेपिजोइडल बोलते हैं, ढलानदार होता है।
1: जी
0: तो इसमें आपने सिर्फ ईंटें बिछानी है,
1: जी
0: सीमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ईंट सीमेंट सिर्फ ऊपर के आधे 1 मीटर में आप लगा दें, ताकि कोई पाँव रखे तो ईंटें ना खिसके।
1: जी
0: और अगर आपने शीट बिछाने के बाद उसके ऊपर ईंटें बिछा दी, तो मेरा दावा है कि आपका ये टैंक कम से कम 50-100 साल कहीं नहीं जाता है।
1: जी
0: क्योंकि हम आप नौणी विश्वविद्यालय में हमारे सॉयल साइंस डिपार्टमेंट में आके देख सकते हैं, वहाँ पे हमने टैंक बनाए हैं, तो कम से कम 20 साल तो दो टैंक हैं हमारे पास
1: जी
0: जिनके ऊपर हमने ईंटें लगाई हैं, तो 20 साल हो चुके हैं और उनको अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और
1: जी
0: बिल्कुल मैं समझता हूँ कि अगले 30-40 साल भी कुछ नहीं होगा। इसमें सिर्फ एक रिस्क है कि आपका पेड़ आसपास नहीं होना चाहिए,
1: जी
0: कि जिससे कि वो जड़ें नीचे जाके आपकी शीट को फाड़ सके।
1: जी
0: तो ये जो दो उपयोग हैं, दो सुझाव हैं कि आप कोई भी टैंक बनाइए, ये इससे आप जो वर्षा का पानी आपका खेत में गिरता है उसको आप वहीं पे रोक सकते हैं। और दूसरा है कि आप जो आपकी बिल्डिंग्स के ऊपर या फिर आपके घरों के ऊपर जो पानी गिरता है उसका भी आप संग्रहण करें इन्हीं टैंकों के द्वारा। तो
1: जी
0: इससे जो जितना भी पानी आप इकट्ठा कर सकते हैं, वो आपके जो ड्राई पीरियड होता है, सूखा समय जिस टाइम बारिश नहीं हो रही होती और आपकी
1: जी
0: फसल को पानी चाहिए, तो उसका उपयोग उस टाइम कर सकते
1: जी यानी कि किसान और बागवान भाइयों
0: हैं।
1: की आर्थिक स्थिति के अनुसार विभाग के पास दो तरह तकनीकें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल हमारे किसान बागवान भाई बहन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि ये तो बात हुई जल संग्रहण की, कि जल संग्रहण कैसे करें, कौन कौन सी विधियां हैं, किस प्रकार के टैंक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपके माध्यम से मैं जानना चाहूंगा कि जल का सदुपयोग कैसे करें, यानी कि जो जल हमने उस टैंक में संग्रहण कर दिया है, इकट्ठा कर दिया है, उसका हमारे किसान और बागवान भाई बहन अपनी सिंचाई व्यवस्था के लिए किस तरह से उसका सदुपयोग कर सकते हैं।
0: जी देखिए, अब जो अगला स्टेप जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप है इसमें, वो यही है कि जो हमने पानी इतनी मेहनत से खर्चा करके इकट्ठा किया है,
1: जी
0: उसका हम सदुपयोग करें। और इसके लिए जो सबसे अच्छी तकनीकें हैं वो हैं सूक्ष्म सिंचाई हम जिसे कहते हैं, या
1: जी
0: माइक्रो इरिगेशन जिसे कहते
1: जी
0: हैं, वो हम अपने खेतों में लगवाएं, ताकि जितना भी पानी हमने इकट्ठा किया है उसका 100% उपयोग हो सके।
1: जी
0: अब इसमें 100% हम इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम नॉर्मली जो पानी देते हैं, जिसको हम फ्लड इरिगेशन या फिर जिससे हम खेतों में पानी भरते हैं, जो
1: जी जी
0: नॉर्मली हमारी तकनीक है,
1: जी
0: उसमें क्या होता है कि हमारा जो पानी होता है वो 50 से 60% पानी बर्बाद जाता है। आधर वो वाष्पीकरण से चला जाएगा,
1: जी
0: इवेपोरेशन से, या
1: या
0: फिर वो ज़मीन के नीचे चला
1: रिसाव
0: जाएगा,
1: के माध्यम से।
0: रिसाव के माध्यम
1: जी
0: से चला जाता है।
1: जी
0: और जो पौधे को पानी मिलता है वो बिल्कुल 30 से 40% पानी
1: जी
0: जो है उपयोग करता है पौधा,
1: जी
0: और बाकी सारा पानी वेस्ट चला जाता है।
1: जी
0: तो इस चीज़ को रोकने के लिए हम हमेशा ये सुझाव देते हैं कि आप सूक्ष्म सिंचाई तकनीकें लगवाएं। अगर आप सब्जियां लगाते हैं तो सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आप स्प्रिंकलर इरिगेशन या फव्वारा
1: जी
0: सिंचाई
1: जी
0: लगवाएं, क्योंकि ये टेक्निक जो है थोड़ी सस्ती है।
1: जी
0: जो दूसरी टेक्निक है वो है ड्रिप इरिगेशन या टपक सिंचाई
1: टपक
0: विधि
1: सिंचाई।
0: जिसे कहते
1: जी
0: हैं, लेकिन ये थोड़ी, क्योंकि इसमें पाइपें ज़्यादा लगती हैं
1: जी
0: और जो ड्रिपर्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा मात्रा में लगते हैं, तो इसका जो खर्चा होता है वो बढ़ जाता है।
1: जी
0: तो क्योंकि अब अगर हम सब्जियां लगा रहे हैं तो उसके ऊपर फव्वारा सिंचाई जो है सबसे उपयुक्त रहती है।
1: जी
0: और इसमें ये चीज़ का ध्यान हमें रखना पड़ता है कि जो हमारा फव्वारा सिंचाई हमने ली है
1: जी
0: या फव्वारा लिए हैं, नोजल्स जिसे हम कहते
1: जी
0: हैं स्प्रिंकलर इरिगेशन में,
1: जी
0: वो आपके खेत के साइज के अनुसार हो।
1: जी
0: ऐसा ना हो कि आपका जो खेत है बहुत छोटा है
1: जी
0: लेकिन आप किसी के बहकावे में आके या फिर अपने अनजान अनजान
1: जी
0: उसकी वजह से आप बड़ा नोजल ले लें जिसका पानी जो है आपके खेत को कम, दूसरे के खेत को ज़्यादा सिंचाई करें।
1: जी जी
0: और दूसरी बात यह कि आप कौन सी फसल लगा रहे हैं। अगर आपकी फसल ऐसी हैं जो फूल जिनमें बनते हैं और काफ़ी कोमल टाइप के फूल होते हैं जो आसानी से झड़ सकते हैं, उसमें भी आप ऐसे स्प्रिंकलर या फवारे ना लगाएं जिनका पानी का बहाव बहुत ज़्यादा हो,
1: जी
0: जो बहुत तेज़ी से पानी फेंकते हों, ताकि वो आपके जो फूल हों उनको भी झाड़ दें या फिर आपके जो फ्रूट लग रहे हैं उनको भी झाड़ दें।

0: तो इस चीज़ का हमारे को स्प्रिंकलर लगाते हुए ध्यान देना पड़ता है। ड्रिप इरिगेशन जो है, नॉर्मली हम कहते हैं कि जब आपके फलदार पौधे हैं तो उसमें आप लगाएं तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन इसमें बस यही चीज़ हमने जो ध्यान देने वाली बात ये होती है कि जितना भी सिस्टम लगाते हैं हम ड्रिप इरिगेशन का या स्प्रिंकलर इरिगेशन का, इसको हमने ज़मीन के नीचे दबाना है। जो आपकी मेन पाइप होगी, जो आपकी सब मेन होंगी, वो सारी और लेटरल भी ज़मीन के नीचे होनी चाहिए। सिर्फ जो आपके जो ड्रिपर्स होते हैं वो सिर्फ आपके जो फलदार पौधे के जो तौलिया होता है उसके ऊपर ने आने चाहिए,
1: जी
0: बाकी सारा सिस्टम आपका जमीन के नीचे होना चाहिए। इस सिस्टम को लगाते हुए एक और जो ध्यान रखना है कि आपने जो आपका सिस्टम होगा वो बिल्कुल पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कंप्लीट से मेरे बोलने का मतलब है कि आपका जो फिल्टर्स पूरे होने चाहिए,
1: जी
0: इसमें कम से कम दो फिल्टर्स लगाएं,
1: जी
0: एक सैंड फिल्टर जरूर लगवाएं और दूसरा डिस्क फिल्टर या स्क्रीन फिल्टर लगता है, ये जरूर हो। साथ में कि ड्रिप इरिगेशन का एक और जो बहुत बड़ा फायदा है वो ये होता है कि आप इसमें खाद भी साथ में दे सकते हैं,
1: जी
0: जिसे हम फर्टिगेशन कहते हैं।
1: जी
0: तो इसमें आपको खाद अलग से तौलियों में छिड़कने की या फिर खेतों में छिड़कने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप सिर्फ पानी में खाद मिलाइए तो वेंचुरी लगती है इसके साथ, वो उसके साथ आपका जो सिस्टम के साथ खाद मिलके सीधा पौधे की जड़ों में जाता है। तो इससे आपकी जो पानी है वो बर्बाद नहीं होता, जो आपकी खाद है वो बर्बाद नहीं होती है, और सारा का सारा जो है वो पानी और खाद पौधा लेता है। तो
1: जी
0: इसलिए जो इसकी उपयोगिता है वो कम से कम 80 से 90% आगे गई है।
1: जी डॉक्टर सिपाहिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के लिए आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। निश्चित रूप से हमारे किसान और बागवान भाई बहन इससे लाभ उठाएंगे। एक बार पुनः आकाशवाणी परिवार की तरफ से मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद
2: किसान भाई, ये तो सुनी आपने जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण, जिसका विषय था सूक्ष्म सिंचाई तकनीकों द्वारा पानी का सदुपयोग।
3: तो अब चलते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की तरफ और सुनते हैं मधुर सा लोकगीत समूह स्वरों में।

0: किसान भाइयों, ये तो सुना आपने लोकगीत।
1: अब तो कार्यक्रम का समय संपन्न हो चला है। जाने से पहले आपको बताकर जाएंगे, कल का कृषि जगत कार्यक्रम आपके लिए सुनना क्यों जरूरी है। जी हाँ, कल साय प्रसारित होने वाले कार्यक्रम कृषि जगत में रहेगा बहुत कुछ खास।
0: काम की बातों में बात करेंगे सुभाष पालेकर, प्राकृतिक खेती के सिद्धांत, साथ में मनोरंजन करवाएंगे प्यारे से लोकगीत के साथ। जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुनाया जाएगा, जिसका विषय रहेगा गुठलीदार फलों की सस्योत्तर प्रौद्योगिकी। इसी के साथ हमारा आज का कृषि जगत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज्ञा चाहते हैं। नमस्कार।

कृषि जगत कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी सुना जा सकता है। प्रादेशिक समाचार प्रसार भारती की रेडियो DTH सेवा और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर भी सुने जा सकते हैं।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
3: अच्छा, इसमें क्या होगा?
2: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
3: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
2: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
3: अच्छा,
2: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राकेश शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले आज के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान राष्ट्रहित में की गई अपील पर एकजुटता दिखाने के लिए देशवासियों का जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति की बदहाली का लगाया आरोप। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में पिलाई गई पोलियो रोधी खुराक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जनता की भागीदारी भारत के लिए प्रसन्नता की बात रही है। आकाशवाणी से आज मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए उनकी अपील पर देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी अपील पर लोगों ने सोने की खरीद और विदेश यात्राओं को कुछ समय के लिए टाल दिया। उन्होंने इस सक्रिय सहयोग के लिए देशवासियों का आभार जताया है।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की चर्चा करते हुए कहा कि इस बार ये आयोजन 2500 से अधिक स्थानों पर हुआ। उन्होंने कहा कि भारत में योग दिवस में करोड़ों लोगों ने भागीदारी की है। उन्होंने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार देश के करोड़ों परिवारों को दुर्घटना बीमा दे रही है।
1: सरकार देश के करोड़ों परिवारों तक सुरक्षा का कवच पहुंचा रही है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत केवल एक साल के 20 रुपये का प्रीमियम, उस पर 2 लाख रुपये तक का दुर्घटना बीमा मिलता है। उसी प्रकार से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना भी उतनी ही अहम है। ये योजना व्यक्ति की दुखद मृत्यु होने पर उसके परिवार को 2 लाख रुपये का बीमा कवर देती है। इसका वार्षिक प्रीमियम सिर्फ 436 रुपये है।
0: मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से प्रधानमंत्री ने एक बार फिर लोगों से जल संरक्षण का आह्वान भी किया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देने वाला जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने आज सोलन जिला में कंडाघाट क्षेत्र में सकोड़ बूथ पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम देशवासियों को राष्ट्र निर्माण में सहभागी बनने की प्रेरणा देता है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने पंचकुला में मन की बात कार्यक्रम को सुना। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। क्षेत्र के दौरे के दौरान उन्होंने इस सड़क में प्रत्येक किलोमीटर के लिए अलग अलग निविदाएं आमंत्रित करने और कार्य को प्राथमिकता के आधार पर आगे बढ़ाने पर बल दिया। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति बहाल करने के संबंध में स्थानीय लोगों व विद्युत विभाग के साथ चर्चा की। मुख्यमंत्री ने इलाके में आपदा प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों से प्रभावितों के राहत व पुनर्वास

0: काश्तकारों की जानकारी भी ली। उन्होंने किसानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने और न्यूनतम समर्थन मूल्य योजनाओं का लाभ उठाने का आग्रह किया। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह चरमरा गई हैं। एक बयान में उन्होंने कहा कि विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के बड़े बड़े दावे करने वाली कांग्रेस सरकार के राज में स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह वेंटिलेटर पर आ गई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि IGMC में लिफ्ट खराब पड़ी है, जिसके कारण आपातकालीन स्थिति में मरीजों को कंधों पर उठाकर ले जाना पड़ रहा है, जो बेहद चिंताजनक है। उन्होंने कहा कि IGMC शिमला सहित प्रदेश के कई बड़े अस्पतालों में भी अव्यवस्था के कारण मरीज व तीमारदार परेशान हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज मंडी सदर के कोटली क्षेत्र में करीब 12 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं के लोकार्पण किए। उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क संपर्क को सुदृढ़ करने और आधुनिक आधारभूत ढांचे के विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश में नई सड़कों, पुलों और अन्य आधारभूत ढांचा परियोजनाओं का कार्य तेजी से किया जा रहा है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNews_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा है कि खेल गतिविधियां युवाओं को नशे जैसी सामाजिक बुराई से दूर रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिमला जिला में जुब्बल उपमंडल की धार पंचायत में आज एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि नशे की बढ़ती प्रवृत्ति समाज के लिए गंभीर चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इससे निपटने के लिए समाज के सभी वर्गों को मिलकर प्रयास करने की ज़रूरत है। रोहित ठाकुर ने कहा कि सरकार खेल अधोसंरचना को सुदृढ़ करने और खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाई गई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष व विधायक विनय कुमार ने सिरमौर जिला के संगड़ाह में पोलियो मुक्त अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि अभियान का मुख्य उद्देश्य भारत को पूरी तरह पोलियो मुक्त बनाने रखना है। शिमला जिला में 50,000 से अधिक बच्चों को खुराक पिलाई गई। आज खुराक पीने से वंचित रहे बच्चों को कल 29 और 30 जून को घर घर जाकर ये खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान के तहत प्रदेश भर में 5,94,000 से अधिक बच्चों को पोलियो रोधी खुराक पिलाने का लक्ष्य है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि सरकार योजनाबद्ध विकास के माध्यम से पर्यटन, आधारभूत ढांचे और शहरी सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। धर्मशाला में आज एक संगोष्ठी में उन्होंने कहा कि विकास कार्यों में पर्यावरण संरक्षण व आपदा जोखिम न्यूनीकरण को समान महत्व देना आवश्यक है, ताकि भविष्य की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से सामना किया जा सके। धर्माणी ने कहा कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाते हुए हिमाचल टिकाऊ विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने जनप्रतिनिधियों से बिना पक्षपात से सभी कार्य करने का आग्रह किया है। वे आज सोलन जिला की ग्राम पंचायत डांगरी में भाजपा समर्थित प्रधानों और उप प्रधानों सहित BDC व जिला परिषद सदस्यों के सम्मान समारोह में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। अनुराग ठाकुर ने विकास के लिए जनप्रतिनिधियों से अधिकारियों के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करते हुए काम करने पर बल दिया।
1: अगले 5 साल आपकी देखरेख में, आपके नेतृत्व में इस क्षेत्र का विकास होने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है आप जनता की उम्मीदों पर खरा उतरो। आप जनता को वही मान सम्मान दोगे जो जनता ने आपको दिया। सभी काम करने संभव नहीं होते, लेकिन हर व्यक्ति के काम को ध्यान से सुनना और अपना यथासंभव प्रयास करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है।
0: पर्यटन विभाग ने कांगड़ा जिला की विश्व प्रसिद्ध पौंग झील में पर्यटन गतिविधियों को विस्तार देने की प्रक्रिया तेज कर दी है। विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि पौंग झील में इको टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने की व्यापक योजना पर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे क्षेत्र में पर्यटन को नई पहचान मिलने सहित रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे।
2: इको सेंसिटिविटी को ध्यान में रखते हुए टूरिज्म बेस्ड एक्टिविटीज को इस एरिया में प्रमोट किया जाएगा, ताकि एम्प्लॉयमेंट के साथ साथ लोगों की डाइवर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट है वो भी जो है वो यहाँ इंट्रोड्यूस की जा सके और लोगों का जो वेलबींग है वो इम्प्रूव, और जितना भी वहाँ पे मैनेजमेंट है वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी जो वाइल्ड लाइफ विंग ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसके साथ मिलकर के उसको करें, और जितनी भी साइनेजेस हैं चाहे वो लेक में जिस तरह के कोई हादसा ना हो उसकी देखरेख के लिए

0: जो भी नेसेसरी मैन पावर रखनी है, जो भी साइनेजेस लगानी है, वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन सोसाइटी करेगी, ऐसा ऑलरेडी डिसाइडेड है।
1: राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में राज्य स्तरीय महिला खेल प्रतियोगिता आज संपन्न हो गई। इस प्रतियोगिता में प्रदेश के 11 जिलों की 400 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लिया। समापन अवसर पर उपायुक्त अनुपम कश्यप ने विजेता व उपविजेता टीमों को सम्मानित किया और चिट्टे के विरुद्ध शपथ दिलाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के दौरान राष्ट्रहित में की गई अपील पर एकजुटता दिखाने के लिए देशवासियों का जताया आभार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल तक सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति की बदहाली का लगाया आरोप। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में पिलाई गई पोलियो रोधी खुराक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20।

0: सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कांग्रेस कार्यकाल में प्रदेश की स्वास्थ्य स्थिति की बदहाली का लगाया आरोप। और राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत आज प्रदेश भर में पिलाई गई पोलियो रोधी खुराक। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें, अधिकार जाने।
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी के हमीरपुर धर्मशाला केंद्रों और FM शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर भी सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। रोजगार समाचार सुनिए। हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार जल शक्ति मंडल नालागढ़ में पैरा स्टाफ पदों की भर्ती हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। जल शक्ति मंडल नालागढ़ द्वारा जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु पैरा स्टाफ के विभिन्न पदों को अंशकालिक आधार पर भरा जाना है। पदों का ब्यौरा इस प्रकार से है। पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद, पैरा फिटर के 3 पद और मल्टीपर्पज वर्कर के 25 पद, यानी कुल 40 पदों हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। प्रार्थी की आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित आवेदन पत्र सहित अपने आवेदन दिनांक 30 जून 2026 सायं 5 बजे तक जल शक्ति मंडल नालागढ़ में जमा करवा सकते हैं। रोजगार समाचार समाप्त हुए। हम आकाशवाणी के शिमला केंद्र से बोल रहे हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ FM शिमला। हंसने हंसाने, आपको गुदगुदाने और कुछ गुनगुनाने के लिए
5: हमको मोहब्बत करेगा, दुनिया से नहीं डरेगा, चाहे ये जमाना कहे हमको दिव...

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। आइए आपको बता दें, एफएम शिमला पर रात्रिकालीन सभा में आप कौन कौन से कार्यक्रम सुन सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद यानी 8 बजे आप सुनेंगे भूले बिसरे गीत। 8:30 का समय रहेगा फिल्म संगीत का। एक फिल्म से कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे छलिया फिल्म के गीत 9:15 पर। ईमेल बेस्ड कार्यक्रम दिल की आवाज़ भी सुन आप सुन सकते हैं 9:30 पर। दस बजे आप सुनेंगे गज़लें और सदाबहार नगमे आप सुन सकते हैं 10:30 पर।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एफएम शिमला पर। हमारी स्टूडियोज़ की घड़ी में 8 बजे हैं। एफएम शिमला पर वक्त है भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का। दोस्तों, भागदौड़ भरी इस ज़िंदगी में हम जाने कितना आगे निकल आए हैं, लेकिन कभी कभी पीछे मुड़कर देखना, उन पुरानी गलियों को याद करना और उन गीतों को गुनगुनाना कितना सुकून देता है जिन्होंने कभी हमारे दिलों को धड़काना सिखाया था। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में मेरे सनम फिल्म का गीत, गीत के बोल मजरूह के संगीत ओपी नैयर का।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। जब बात पुराने दौर की हो तो उस दौर की सादगी और वो मासूम सा इश्क याद आना लाजमी है। तब प्यार आंखों की हया में, खतों की खुशबू में और चुपके से की गई मुलाकातों में हुआ करता था।

लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में जन्म जन्म के फेरे फिल्म का गीत अभी आपने सुना। गीत के बोल भरत व्यास के, संगीत SN त्रिपाठी का। FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में राजकुमार फिल्म का ये गीत।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो? अरे भाई, खुशी तो होगी।
1: अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम। लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज में सफर फिल्म का गीत, गीत के बोल इंदिवर के संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

ज़िंदगी में सिर्फ बहारें और मुलाकातें ही नहीं होती, कभी कभी कुछ अधूरेपन, कुछ यादें और थोड़ी सी तन्हाई भी होती है। पुराने गीतों की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि वे हर जज्बात को इतनी शिद्दत से बयां करते थे कि रोता हुआ दिल भी मुस्कुरा उठे।

0: मुकेश की आवाज़ में आनंद फिल्म का गीत अभी आपने सुना।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दे सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
0: लीजिए सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज़ में किस्मत फिल्म का गीत, गीत के बोल एस एच बिहारी की, संगीत ओपी नैयर का।

0: भूले बिसरे गीत कार्यक्रम अभी आपने सुना। आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण।
1: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला का प्रसारण। 8:30 हुए हैं। लीजिए पेश है फिल्म संगीत। लीजिए सुनिए कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में गोपी किशन फिल्म का ये गीत।

फिल्म संगीत में आज बस इतना ही। सुनते रहिए FM शिमला का प्रसारण। 8:45 होने को हैं। अब आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगी समाचार संध्या और रात्रि।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जनभागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को खारिज किया। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी, फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। वहीं पुरुष क्रिकेट में भारत को आयरलैंड से 155 रन का लक्ष्य मिला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो और जहां साझेदारी आकार पर नहीं बल्कि परस्पर सम्मान और विश्वास पर आधारित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत का दृष्टिकोण हिंद महासागर को संभावनाओं का सागर बनाना है।
1: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इनटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
0: बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी है। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। उन्होंने कहा कि दोनों देश अपने उद्योगों के लिए नई संभावनाओं की तलाश जारी रखेंगे। दोनों पक्षों ने कृषि, वित्त, अंतरिक्ष और स्वास्थ्य सहित कई क्षेत्रों में समझौतों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
1: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल्स के साथ साझा करेंगे और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल्स में लागू करने के लिए MOU किया जा रहा है।
0: सेशल्स के राष्ट्रपति हर्मिनी ने कहा कि हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण बनी हुई है। दोनों देशों ने समुद्री डकैती, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध मछली पकड़ने और सीमा पार अपराध का मुकाबला करने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी ने प्रधानमंत्री मोदी को ये प्रतिष्ठित सम्मान प्रदान किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री ने ये सम्मान पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन से संघर्षरत देशों को समर्पित किया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण विश्व, विशेष रूप से द्वीपीय राष्ट्र, जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित हैं। उन्होंने निष्पक्षता, उत्तरदायित्व और समानता के साथ जलवायु कार्रवाई का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि यही जलवायु न्याय का मूल तत्व है। श्री मोदी ने डिजिटल नवाचार के क्षेत्रों में भारत सेशल्स सहयोग को मजबूत करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि भारत छोटे द्वीपीय विकासशील देशों की चिंताओं पर सेशल

0: के साथ काम करना जारी रखेगा।
1: सेशल एंड इंडिया बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर डेवलपमेंट इज मोर इंक्लूसिव। वी बोथ सीक अ वर्ल्ड वेयर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस रिफ्लेक्ट कंटेम्पररी रियलिटीज। वी बिलीव दैट अवर शेयर्ड फ्यूचर मस्ट बी शेप्ड कलेक्टिवली इंक्लूसिवली एंड फेयरली।
0: प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीपराष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। श्री बिरला ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये सम्मान प्रधानमंत्री के जलवायु कार्रवाई, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के दृष्टिकोण को परिलक्षित करता है। गृहमंत्री ने कहा कि ये सम्मान दुनिया में भारत के बढ़ते प्रभाव को दिखाता है। श्री जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान जलवायु परिवर्तन और सतत विकास को बढ़ाने में श्री मोदी की नेतृत्वकारी भूमिका को दर्शाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सम्मान श्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मिनी के बीच हुई वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा हुई है। श्री मिश्री ने विक्टोरिया में संवाददाताओं को आज बताया कि दोनों नेताओं ने स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमता निर्माण, डिजिटल परिवर्तन, सतत विकास, सामाजिक अवसंरचना, नवीकरणीय ऊर्जा, समुद्री सुरक्षा और रक्षा क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी की शक्ति भारत की सबसे बड़ी ताकत है। श्री मोदी ने आज आकाशवाणी से कार्यक्रम मन की बात में राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि ये भावना उस समय एक बार फिर दिखाई दी जब उन्होंने पश्चिम एशिया में युद्ध जैसी स्थिति को देखते हुए नागरिकों से कुछ निश्चित उपाय अपनाने को कहा।
1: पश्चिम एशिया में बनी युद्ध की स्थितियों को देखते हुए मैंने देशवासियों से कहा था कुछ समय के लिए सोना खरीदने से बचें, लोगों से कहा था कि विदेश में छुट्टियां मनाने से बचें, लोगों से कार पुलिंग को भी बढ़ावा देने की अपील की थी, किसानों से केमिकल मुक्त खेती के लिए, खेत बचाने के लिए और प्राकृतिक खाद का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल का आग्रह किया था। मेरी अपील का उन्होंने न सिर्फ समर्थन किया बल्कि हर तरफ से उसमें अपना सहयोग कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में मानवीय रचनात्मकता का संरक्षण करने के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि नालंदा विश्वविद्यालय ने इसे हासिल करने का समाधान खोज लिया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार योजनाएं बनाने के साथ साथ ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध है कि उनका लाभ प्रत्येक जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचे। कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को साकार करने में गांव की केंद्रीय भूमिका का उल्लेख किया है। नई दिल्ली में आज राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि ग्रामीण श्रमिकों की

0: जीविका सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए ग्रामीण विकास में तेजी लाने के लिए विकसित भारत ग्रामीण योजना के अंतर्गत राज्यों के हिस्से सहित 1,51,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है।
1: इस साल बजट प्रावधान है 1,51,282 करोड़ रुपया केंद्र और राज्य का मिला के, ये 1,50,000 करोड़ से ज्यादा रुपया मजदूरों को मजदूरी देने में तो काम आएगा ही। इससे आप गांव की हालत पूरी तरह से बदल सकते हैं। 5 साल में 7,50,000 करोड़ लगभग लगे, 2,86,000 पंचायत है, एक पंचायत के हिस्से में कितना पैसा आएगा आप कल्पना कीजिए।
0: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत देश को स्वस्थ और नशा मुक्त बनाने का आह्वान किया है। वे आज बेंगलुरु में राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की

0: ज्ञान विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह और नशा मुक्त भारत अभियान कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिन की जम्मू कश्मीर यात्रा पर आज श्रीनगर पहुंचे। अपनी यात्रा के दौरान वे कश्मीर घाटी में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। मुख्य निर्वाचन आयुक्त चुनाव प्रक्रिया की जमीनी स्तर पर विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा भी करेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी का कहर जारी है। फ्रांस, जर्मनी और चेक गणराज्य सहित कई देशों ने सप्ताहांत में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि बुधवार से अब तक भीषण गर्मी के कारण लगभग 1000 लोगों की मौत हो गई, जिनमें 85% बुजुर्ग थे।
1: फ्रांस के स्वास्थ्य विभाग ने आज एक बयान में कहा कि सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में इले डी फ्रांस, नोवेल एक्विटाइन, ब्रिटनी, सेंटर वॉल डे लोइरे, नॉर्मैंडी और पेस डे ला लोइरे शामिल हैं। फ्रांस के कुछ हिस्सों में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। पेरिस में भीषण गर्मी के कारण एफिल टावर और लूवर संग्रहालय को भी शाम को जल्द ही बंद कर दिया जा रहा है। जर्मनी और चेक गणराज्य में भी तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच गया है। भीषण गर्मी के कारण कुछ हिस्सों के जंगल में आग लगने से आपातकालीन सेवाओं पर दबाव बढ़ा है। हंगरी में डेन्यूब नदी में बढ़ते तापमान से एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र प्रभावित हुआ है, जिससे कुछ रिएक्टरों के संचालन पर असर पड़ा। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: फ्रांस के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आज एक विमान दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। आपात सेवाएं घटनास्थल पर पहुंच गई हैं और दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है। सऊदी अरब की तेल कंपनी अरामको से संबंधित एक हेलीकॉप्टर आज हॉर्मूज जल डमरू मध्य के पश्चिम में स्थित रास तनूरा में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुर्घटना में 14 लोगों की मौत हो गई। असम के धेमाजी जिले में लगातार कई दिनों से हो रही तेज बारिश और अरुणाचल प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति और अधिक गंभीर हो गई है। सिमेन नदी में आए उफान के कारण लगभग 60 परिवार बेघर हो गए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: असम के धेमाजी जिले में सिमेन नदी की उफनती धारा ने एक महत्वपूर्ण रेलवे पुल के हिस्से को बहा दिया है, जिसे क्षेत्र की रेलवे संपर्क व्यवस्था पूरी तरह बाधित हो गई है और रेल सेवाएं ठप हो गई है। राज्य आपदा मोचन बल SDRF की टीमें दिमो पंचायत के अंतर्गत उज्जवलपुर गांव में राहत और बचाव अभियान चला रही है, जहां फंसे 60 परिवारों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। अब तक किसी के हताहत होने या जानहानि की सूचना नहीं है। हालांकि बाढ़ से संपत्ति और पशुधन को भारी नुकसान पहुंचा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने एक ओवर पर 9 रन बना लिए हैं। उधर बेलफास्ट में आयरलैंड के साथ दूसरे T20 क्रिकेट मैच में जीत के लिए 155 रन के जवाब में भारत ने बारिश के कारण खेल रोके जाने तक 8 ओवर में 4 विकेट पर 54 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हर्मनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। कहा, भारत का लक्ष्य हिंद महासागर को अवसरों का सागर बनाना है। प्रधानमंत्री मोदी को सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में कहा, राष्ट्र निर्माण में जन भागीदारी भारत की सबसे बड़ी ताकत है। यूरोप में भीषण गर्मी का कहर जारी। फ्रांस में 1000 से अधिक लोगों की मौत। और महिला T20 विश्व कप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 171 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi holds delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria, says India's vision is to make Indian Ocean an ocean of opportunity. Prime Minister Modi honored with Seychelles'

फिल्म की ओर, जिसमें प्रेम है, बिछड़न है, त्याग है और देश के विभाजन का दर्द भी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छलिया फिल्म की। इस फिल्म का निर्देशन मनमोहन देसाई ने किया है। फिल्म में राज कपूर, नूतन, प्राण और रहमान ने मुख्य भूमिकाएं निभाई है।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं एक फिल्म से कार्यक्रम, और आज हम आपको छलिया फिल्म के गीत सुनवा रहे हैं। फिल्म की कहानी कुछ इस तरह से शुरू होती है। शांति यानी नूतन और केवल यानी रहमान का विवाह हो

मिलता है। विभाजन के बाद दोनों परिवार लाहौर से दिल्ली आते हैं, लेकिन भीड़ में शांति पीछे छूट जाती है। शांति को अफगान डाकू अब्दुल रहमान यानी प्राण बचा लेता है। 5 साल बाद जब वो अपने बेटे के साथ भारत लौटती है, लेकिन समाज और उसका पति केवल उसे स्वीकार नहीं करता।

शारीरिक और भावनात्मक रूप से टूट चुकी शांति अपने बेटे अनवर को सुधार गृह में छोड़कर आत्महत्या करने की कोशिश करती है, लेकिन छलिया यानी राज कपूर उसे बचा लेता है। छलिया एक खुश मिजाज, नेक दिल और बेफिक्र इंसान है जो दूसरों के दुख को अपना समझता है। धीरे धीरे वो शांति से प्रेम करने लगता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि शांति विवाहित है तो वो अपने प्रेम का त्याग कर उसके टूटे हुए परिवार को फिर से जोड़ने का निर्णय लेता है।

अनेक संघर्षों और गलत फहमियों के बाद सच्चाई सामने आती है और केवल को अपनी भूल का एहसास होता है। अंत में शांति और केवल का परिवार फिर से एक हो जाता है। छलिया अपने प्रेम का बलिदान देकर चुपचाप उनकी खुशियों से दूर चला जाता है।

छलिया केवल एक प्रेम कहानी नहीं बल्कि इंसानियत, त्याग और विश्वास की कहानी है। ये फिल्म बताती है कि परिस्थितियां इंसान की परीक्षा ले सकती हैं, लेकिन सच्चा प्रेम और सच्चाई हमेशा जीतते हैं।

फिल्म के गीत कमर जलालाबादी ने लिखे हैं, जबकि संगीतकार जोड़ी कल्याण जी आनंद जी ने अपने मधुर संगीत से इसे अमर बना दिया। एक फिल्म से कार्यक्रम में आज बस इतना ही। सुनते रहिए FM शिमला

103.7 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला का प्रसारण। रात्रि के 9:30 हुए हैं FM शिमला पर। वक्त है दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम का।

इस कार्यक्रम में आप भी शामिल हो सकते हैं और सुन सकते हैं अपनी पसंद के गीत। आज जो फिल्में हम आपके लिए लेकर आए हैं वो हैं ममता, आरजू, दूध का कर्ज, जुनून और सड़क। फिल्मों के नाम एक बार फिर सुन लीजिए, सड़क, जुनून, दूध का कर्ज, आरजू और ममता। इन फिल्मों से गीत सुनने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आईडी है airfmshimlamusicmail@gmail.com। जल्दी से कीजिए मेल और सुनिए अपनी पसंद के गीत एफएम शिमला के साथ।

पहला मेल हम तक पहुंचा है उत्तम नगर दिल्ली से। भेजने वाले हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश। मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप का मेल हम तक पहुंचा है। साथ ही कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज हमें मेल कर रहे हैं। बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया का मेल हम तक पहुंचा है। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहान, अजहर और अजीम खान हमें मेल कर रहे हैं। पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूना राम और कृष्णा देवांगन का मेल हम तक पहुंचा है।

अगला मेल हम तक पहुंचा है मजनू कटीला से, भेजने वाले हैं कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और साथ में मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक का मेल हम तक पहुंचा है। धाड़ी नांदूरा महाराष्ट्र से श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे और अमूल्य बाठे हमें मेल कर रहे हैं। पुराना तालाब डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, अस्मा नाज और शबनम बानो का मेल हम तक पहुंचा है। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता हमें मेल कर रहे हैं और सुनना चाहते हैं आरजू फिल्म का कोई सा भी गीत। आकली दीवान मध्य प्रदेश से रामलाल चंद्रवंशी, कृष्णा, मीनाक्षी, काजल और दिलीप कुमार चंद्रवंशी का मेल हम तक पहुंचा है। कनेरिया मोहल्ला पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम, निहारिका, हार्दिक और वंश बत्ता हमें मेल कर रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से हमें मेल कर रहे हैं। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति शाह, सुरभि, अश्वनी, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह का मेल हम तक पहुंचा है। राज पैलेस भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति वर्मा, कार्तिक आयन वर्मा का मेल हम तक पहुंचा है। साथ ही हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार हमें मेल कर रहे हैं। मल्लापुर दाखा से राजेश जैन, बिट्टू जैन, संजीव और गोटना जैन का मेल हम तक पहुंचा है। आप सभी के लिए हम सुनवा रहे हैं आरजू फिल्म का ये गीत।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम। अगला मेल हम तक पहुंचा है सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से, भेजने वाले हैं गजानंद येले, नवदीप येले, और अकोला से आदित्य दामोदर और अरुणा दामोदर। गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह हमें मेल कर रहे हैं। मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ का मेल हम तक पहुंचा है। वडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का मेल हम तक पहुंचा है। अनारकली बाजार

ग्राउंड से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्य मल्होत्रा और जयपाल यादव का मेल हम तक पहुंचा है और ये सुनना चाहते हैं ममता फिल्म का कोई सा भी गीत। इसी फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। सूरज रेडियो श्रोता संघ छत्तीसगढ़ से गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेम प्रभा, पुष्पराज और सूरज राजपूत का मेल हम तक पहुंचा है। मेन रोड तेलहारा से प्रकाश नर्मदा और कुमारी सुजाता हमें मेल कर रहे हैं। आदर्श नगर मलौत पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, निवान शर्मा, मैंडी, सौरभ शर्मा और साइना शर्मा का मेल हम तक पहुंचा है। पूर्णा जंक्शन मस्तपुरा से अनंत भगत, अरुणा सुलोचना, चेतन भगत का मेल हम तक पहुंचा है। ऊपरकोट मोहल्ला बुलंदशहर से मोहम्मद सैयद अब्बासी, निगत परवीन, शहनवाज, सरफराज फरदीन, सुहान अरजान, अबान अब्बासी का मेल हम तक पहुंचा है। कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी राय और जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय हमें मेल कर रहे हैं। जिला कासगंज उत्तर प्रदेश से योगेंद्र नायक, गीता नायक, निहारिका और सुशांत नायक का मेल हम तक पहुंचा है। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी का मेल हम तक पहुंचा है। जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह हमें मेल कर रहे हैं। कस्बा बिलराम से इरशाद अहमद शाह, जहां बेगम और मरियम जैनब हमें मेल कर रहे हैं। गुरप्रीत सिंह, जसवीर कौर और महकप्रीत कौर के साथ शहजाद प्रीत सिंह जिला माहौली पंजाब से हमें मेल कर रहे हैं। आप सभी के लिए हम सुनवा रहे हैं ममता फिल्म का ये गीत।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम। अगला मेल हम तक पहुंचा है सुनाम पंजाब से। भेजने वाले हैं अनिल शर्मा, इंदु शर्मा, ऋचा शर्मा, दर्पण शर्मा, लवदीप शर्मा, नैन्सी शर्मा और दिव्याना शर्मा। शगुप्ता अंजुम और एसएम जावेद गुमला झारखंड से हमें मेल कर रहे हैं। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता और दीपा गुप्ता का मेल हम तक पहुंचा है। छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस और यशस्वी वर्मा हमें मेल कर रहे हैं। चिरमिरी कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे का मेल हम तक पहुंचा है। नांदेड़ महाराष्ट्र से नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़ का मेल हम तक पहुंचा है। चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, सुरेश जोशी और प्रभा जोशी का मेल हम तक पहुंचा है। छत्तीसगढ़ से शंकर देव जाधव और राधिका जाधव हमें मेल कर रहे हैं और ये सुनना चाहते हैं दूध का कर्ज फिल्म का कोई सा भी गीत। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत और मयंक भाटिया का मेल हम तक पहुंचा है। बोरखेड़ा जिला उज्जैन मध्य प्रदेश से विनोद मूणत, नेहा जैन, दीपक, मयंक मूणत और चेतन नाहटा का मेल हम तक पहुंचा है। अगला मेल भेजने वाले हैं अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और मधु नायक। ये हमें पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से मेल कर रहे हैं। नाभा जिला पटियाला पंजाब से सोमदत्त, कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर का मेल हम तक पहुंचा है। जलालाबाद वैसे सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित हमें मेल कर रहे हैं। अगला मेल हम तक पहुंचा है एकता कॉलोनी रोहतक से। भेजने वाले हैं सीताराम कांगड़ा, बबीता बोध, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। आप सभी के लिए हम सुनवा रहे हैं दूध का कर्ज फिल्म का ये गीत।

अगला मेल हम तक पहुंचा है गांव संदोआ तहसील सुन्नी जिला शिमला से। भेजने वाले हैं डोलाराम, सुमित्रा, ईश्वर और दीक्षित। ये सुनना चाहते हैं जुनून फिल्म का कोई सा भी गीत। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो का मेल हम तक पहुंचा है। दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से बसंत कुमार।

सिन्हा, रेखा देवी, अजय कुमार, रिम्मी, तनुश्री, अबिका का मेल हम तक पहुंचा है। अगला मेल हम तक पहुंचा है राहट कैंप अमरावती महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं हर्षा रामेकर, दिलीप रामेकर, अक्षय रुद्र रामेकर और रुचिका रामेकर। कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका और पूनावले पुणे से अजय सो।

कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता दले, अनिकेत दले, रोहिणी दले, ऋषिकेश दले, जीविका और पूनावले, पुणे से अजय सोनवने, कृष्मा और अविका का मेल हम तक पहुंचा है। चुपाड़ी रोहड़ू से लोबाराम गुंजेटा, जमिता गुंजेटा, भजन देवी गुंजेटा और तारा सिंह गुंजेटा का मेल हम तक पहुंचा है। देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश कमलेश, गन्नू लाल रजक और मुरली क्षत्रिय का मेल हम तक पहुंचा है। ततरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, वनीता और रुद्र वर्मा हमें मेल कर रहे हैं। साथ ही सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम, ज्योति और शिवांश वर्मा का मेल हम तक पहुंचा है।

कहते हैं कि जब लफ्ज़ कम पड़ जाते हैं तो शायरी जन्म लेती है, और जब शायरी संगीत का दामन थामती है तो वो गज़ल बन जाती है। ये दिल की वो धड़कन है जो सीधे रूह तक पहुंचती है। लीजिए सुनिए चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल।

0: दिल की आवाज़ भी सुन कार्यक्रम आपकी सेवा में प्रस्तुत किया आपके रेडियो दोस्त कुलदीप सिंह ने।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
0: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला का प्रसारण। रात्रि के 10 बजे हैं, लीजिए पेश है गजलें। महफिल ए गज़ल के इस खास सफ़र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है।

FM शिमला पर आप सुन रहे हैं गज़लें। लीजिए सुनिए आशा भोसले और तलत अजीज़ की आवाज़ों में ये गज़ल।

अपना ख्याल रखिए, अपनों से मोहब्बत करते रहिए और सुनते रहिए FM शिमला। गज़लें अभी आपने सुनी।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला का प्रसारण। रात्रि के 10:30 हुए हैं। एफएम शिमला पर वक्त है सदाबहार नगमे कार्यक्रम का। कार्यक्रम में लीजिए सुनिए लता मंगेशकर की आवाज़ में जब जब फूल खिले फिल्म का गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में 2 और 2 5 फिल्म का गीत, गीत के बोल अनजान के संगीत राजेश रोशन का।
1: तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं, दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किसी में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे, मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं, जाना है तो माना नहीं, मुझे पहचाना नहीं। दुनिया दीवानी मेरी, मेरे पीछे पीछे भागे किस में है दम, यहाँ ठहरे जो मेरे आगे आना नहीं, देखो टकराना नहीं, किसी से भी हारे नहीं हम।

एफएम शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम। मुकेश की आवाज़ में लीजिए सुनिए हिमालय की गोद में फिल्म का गीत, गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत कल्याण जी आनंद जी का।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: FM शिमला पर आप सुन रहे हैं सदाबहार नगमे कार्यक्रम। किशोर कुमार की आवाज़ में लीजिए सुनिए नमक हराम फिल्म का गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के, संगीत आर डी बर्मन का।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लीजिए सुनिए राज फिल्म का ये गीत।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में आज बस इतना ही। सुनते रहिए FM शिमला का प्रसारण। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब आकाशवाणी की दिल्ली केंद्र से आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत ऐसे हिंद महासागर की परिकल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी सुनिश्चित हो। श्री मोदी विक्टोरिया में सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमीनी के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।
2: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है, भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। आवर विजन इज टू मेक इंडियन ओशन इंटू एन ओशन ऑफ अपॉर्चुनिटी।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और सेशल्स की रक्षा और सुरक्षा एक दूसरे से जुड़ी हैं। श्री मोदी ने कहा कि भारत डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना में अपने अनुभव को सेशल्स के साथ साझा करेगा। प्रधानमंत्री ने सेशल्स में UPI भुगतान प्रणाली लागू करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने पर प्रसन्नता व्यक्त की।
2: हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत के सफल अनुभवों को सेशल के साथ साझा करेंगे, और मुझे प्रसन्नता है कि आज UPI को सेशल में

0: लागू करने के लिए एमओयू किया जा रहा है।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में नेतृत्व के लिए सेशल्स के सर्वोच्च सम्मान गार्जियन ऑफ द ब्लू होराइजन से सम्मानित किया गया। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने सेशल्स की नेशनल असेंबली को संबोधित किया। प्रधानमंत्री मोदी पूर्वी अफ्रीकी द्वीप राष्ट्र सेशल्स की 3 दिवसीय यात्रा पर कल वहां की राजधानी विक्टोरिया पहुंचे। सेशल्स यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन चंद्र राम गुलाम से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच चल रहे सहयोग पर चर्चा की। उन्होंने भारत द्वारा दिए गए विशेष आर्थिक पैकेज को लागू करने में हुई प्रगति की भी समीक्षा की। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर की पायलट परियोजना का शुभारंभ किया। ये एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म जन्म पंजीकरण संख्या या आभा आईडी से जुड़ी एक विशिष्ट आईडी का उपयोग करके गर्भावस्था से लेकर 18 वर्ष की आयु तक लाभार्थियों के स्वास्थ्य पोषण और शिक्षा पर नजर रखेगा। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण बदलाव हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद के 16वें सम्मेलन में समग्र शिशु बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार ये कार्यक्रम जन्म से 3 साल तक के बच्चों की बेहतर देखभाल के लिए शुरू किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत बच्चों को घर और समुदाय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी। कार्यक्रम में प्रसव के बाद माताओं के मानसिक स्वास्थ्य की जांच, बच्चों के शुरुआती विकास पर नजर और डिजिटल माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की निगरानी भी की जाएगी। भारत ने कराची में हुई हालिया घटना के संबंध में पाकिस्तान के लगाए आरोपों को स्पष्ट रूप से खारिज करते हुए उन्हें निराधार बताया है। मीडिया के सवालों के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज कहा कि दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय पाकिस्तान को आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और अपने क्षेत्र में मौजूद आतंकी ढांचे के खिलाफ ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आतंकवाद को अपनी राज्य नीति के साधन के रूप में इस्तेमाल करने की प्रवृत्ति से छुटकारा पाना चाहिए। पाकिस्तान के कराची में सिंध रेंजर्स के कंपाउंड पर आतंकवादियों के एक बड़े हमले में पैरामिलिट्री फोर्स के जवान मारे गए थे। महिला 2020 क्रिकेट विश्व कप में लंदन के लॉर्ड्स मैदान में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 6 विकेट से हरा दिया है। भारत के 171 रन के लक्ष्य को ऑस्ट्रेलिया ने 19 ओवर में 4 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Amrit Bhushan. Prime Minister Narendra Modi today said India envisions an Indian Ocean where maritime security is ensured alongside economic prosperity and where partnership is based not on size but on mutual respect and trust. He said India's vision is to make the Indian Ocean an ocean of opportunity.
0: मेरी सेशल की यात्रा का संदेश स्पष्ट है। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चले। Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity.
2: Mr. Modi was addressing the joint press meet after delegation level talks with Seychelles President Patrick Hermini in Victoria. During the meeting, the two leaders reviewed the full spectrum of bilateral cooperation and exchanged views on regional and international issues of mutual interest. The two countries exchanged several agreements in a range of fields, including agriculture, finance, space and health. On the occasion, Prime Minister Modi was conferred with the Guardian of the Blue Horizon, Seychelles' highest distinction for leadership in environmental conservation and sustainable development. The Seychelles president conferred the prestigious honour on Prime Minister Modi.